0: रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर गरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन। ये कार्यक्रम आपने स्वर रंजनी के अंतर्गत सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व

को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 6:10 और ठीक 15 सेकेंड, और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आज आपके साथ इस कार्यक्रम में शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से भजन से। दोस्तों आज मंगलवार का शुभ दिन है, और आज के जो दिन है ना वो हनुमान

जी को समर्पित है। संकट मोचन भक्त वत्सल और अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व माना गया है आज। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई हनुमान जी की उपासना जीवन के भय कष्ट और बाधाओं को दूर कर मन में साहस आत्मविश्वास और सकारात्मकता लाती है और उसी ऊर्जा का संचार करती है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोही, हरु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए तथा हमारे समस्त कष्टों और विकारों का नाश कीजिए।

इसी के साथ आज का ये वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर।

0: बात सुमित्रा नंदन पंत के बचपन की है। एक बार वे घर से दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक सहपाठी अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। सहपाठी को देख वो रुका और अपनी माँ से कहा, अम्मा ये गुसाई है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, बहुत होशियार है, मुझे इसके साथ बैठना खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है, और गुसाई ये मेरी अम्मा है, अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए सहपाठी ने कहा। यहाँ क्यों बैठे हो बेटा, इस सुनसान और एकांत जगह में, सहपाठी की माँ ने पूछा। अम्मा ये इसकी आदत है, स्कूल में भी खेल घंटी के समय ये पेड़ों के नीचे बैठा रहता है, सहपाठी ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी माँ से कहा। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती बेटा, सहपाठी की माँ फिर बोली। सहपाठी फिर बात काटते हुए बोला, इसकी माँ नहीं है अम्मा। सहपाठी की माँ को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी, उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और घर तक छोड़ कर आई। उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी गांव में 20 मई 1900 के जन्मे पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया था। शिशु का लालन पालन दादी ने किया, लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त रखा गया। नाम प्रिय नल लगने के कारण बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1918 में वे काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने लगे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर रहकर हिंदी संस्कृत बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। सन 1926-27 में उनकी पहली पुस्तक पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात पंत अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए और इसी दौरान वे मार्क्स और फ्रॉयड तथा उनकी विचारधारा के प्रभाव में आए। सदा अकेले शांत एकांत में रहने वाले पंत को ये प्रकृति इतनी प्रिय लगी कि उसे ही पंत ने अपनी माँ और पूरा जीवन समझ लिया। आजीवन इसी के बीच जीते रहे और जुड़े रहे। सुख दुख भी आजीवन उनके जीवन से जुड़े, पर उनके बीच से वे सदा एक नई राह बनाते रहे। अपनी एक कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौली खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जाए सुख दुख से ओ सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन, ये सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चीरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस के बालकांड का भाग 116।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: अभी आप रामचरितमानस के बालकांड का भाग 116 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायां स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां 15 भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात वियतनाम विमान यान सेवया मुंबई नगरम अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्याम दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय

राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। 1 पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 7:10 और ठीक 17 सेकेंड। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रीति सुशील की आवाज़ में भजन। तबले पर संगत कर रहे हैं ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

साथ आज का संगीति का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने प्रीति सुशील की आवाज़ में भजन। तबले पर संगत कर रहे थे ऋतु मिश्रा और सितार पर रईस अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

सुबह के समय मन को नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरने का होता है। ऐसे में यदि दिन की शुरुआत श्रद्धा, शांति और मधुर संगीत से हो तो पूरे दिन का एहसास ही अलग हो जाता है। और वाकई में बहुत ही प्यारा भजन, यूँ कहें कि गीत सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज़ में फिल्म केदारनाथ से, और ये हमेशा हमारे दिल को छूता है। तो आज किस नए दिन और नए उत्साह से भरे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा यानी शोभा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ दोस्त आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, हर सुबह में नया अवसर देती है, एक नया मौका देती है कल की गलतियों से सीखने का, नए सपने देखने का और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाने का। जिंदगी की राह में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हौसला, मेहनत और आत्मविश्वास से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और बहुत सारे गीत होंगे इस कार्यक्रम में जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करेंगे बल्कि आपको प्रेरणा भी देंगे। और सुबह का समय तो है ना कि पूरा का पूरा जोश से भर जाए। तो चलिए, अगला गीत बहुत ही प्यारा सुखविंदर सिंह की आवाज़ में।

सुबह की ताजगी, हल्की सी हवा और खुला आसमान, ऐसे माहौल में मन भी चाहता है कि थोड़ी मस्ती हो, थोड़ी मुस्कान हो और दिन की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ हो। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे लिए भी एक, कहें कि आपके लिए भी एक प्यारा सा गीत हमने रखा हुआ है, पूरी मस्ती वाला, और आपके दिल को ज़रूर जीत लेगा। ये गीत हमें ज़िंदगी को बेफिक्र होकर जीने और हर पल का आनंद लेने का संदेश भी देता है।

दोस्तों, ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है जब हम अपने सपनों को खुलकर जीने की हिम्मत रखते हैं। कभी-कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वह सफ़र होता है जो हमें खुद से मिलवाता है।

तो सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास हो। रास्ते में मुश्किलें आएं तो उन्हें मंजिल की ओर बढ़ने का एक और कदम समझिए, क्योंकि हौसले ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

इन्हीं प्रेरणादायक सुरों के साथ आज के गीतों भरे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो गया है। उम्मीद है कि आज के गीत ने गीत जो है आपने सुनवाए उनसे आप में नई ऊर्जा, नई उत्साह और सकारात्मकता का संचार हुआ होगा। जीवन की राह में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हौसला, उम्मीद और मुस्कान साथ हो तो हर मंजिल आसान लगती है। और इसी विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए और जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहें। कार्यक्रम में साथ देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभा आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स

0: आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने

0: नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first

0: उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुसावी मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के क्याम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 क्याम अमन मिशन्स में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज़्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ क्याम अमन मिशन्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज़ फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नज़दीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मेलुकिन के जसद खाकी को होचिनमिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राबते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजामात में तावुन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में तावुन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज़ रफ्तार कश्ती जुमे के रोज़ फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दिगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार राबता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज़ कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से DNA मिलाप के लिए अहले खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये की इमदाद देने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मछली पकड़ने वाली ये कश्ती FB माँ काली मशरकी मिदनीपुर के दीघा शंकरपुर माहीगीरी बंदरगाह से 2 जुलाई को 15 माहीगीरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई को इस कश्ती से राबता मुनक़ता हो गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड, बहरिया और रियासती एजेंसियों की जानिब से कई दिनों तक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई। बिलाखिर शनिचर की दोपहर को जनूबी 24 परगना के काकद्वीप साहिल के करीब इसका पता लगा लिया गया। इमदादी टीमों ने कश्ती के कैबिन से 9 फरसुदा लाशें बरामद कर ली हैं, जबकि 6 माहीगीर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के पानी में तलाशी की कार्रवाई ताहाल जारी है। मगरबी बंगाल के माहीगीरी के वजीर राजेश महतो ने सोगवार खानदानों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। DNA की तस्दीक और कानूनी जाब्ते मुकम्मल होने के बाद लाशें उनके मुतल्लिका लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। कोलकाता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी

0: स्टाइल नुमाइश भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन से मुतासिर भारत टैक्स 2026 का मकसद इस कारोबार, सरमायाकारी, खाम माल की फराहमी, इख्तिरात, पॉलिसी साजी की बातचीत और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इश्तराक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये 4 रोज़ा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात, सरमायाकारी और बैनुल अक्वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी ख़रीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैनुल अक्वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनिंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदोबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमरीका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका ने मुसलसल 3री रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तजारती जहाज़ों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को ख़त्म किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाक़ नतांज के करीब ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर एलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। तफसील हमारी नामा निगार से।
2: अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% चार्ज आयद करेगा ताकि समंदरी सिक्योरिटी के खराजात पूरे किए जा सके। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उन जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी, चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दिगर ममालिक के तजारती जहाज़ों को आज़ादाना आमदोरफ्त की इजाज़त बरकरार रहेगी। अमरीकी फ़ौज ने यह भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाज़ किया किसी भी सूरत में अमरीका को आबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज़ डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 टैंकरों पर आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिसाइलों के हमले के बाद भारतीय हमले का 1 रुकन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। UAE की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुम्बासा और अल बाहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाला अमले का रुकन मुम्बासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में 6 भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के 2 शहरी हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूसियों के मुताबिक ये हमला यमन के सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है, क्योंकि कई बरस कबल सऊदी अरब क़यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान

0: में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत की 21 साल तक की उम्र की जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने अपने बरतानिया दौरे के आखिरी मैच में आज इंग्लैंड में लेलशाल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 की शानदार जीत के साथ वापसी के बाद भारतीय टीम इस दौरे का अख्तितम जीत के साथ करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की छह सुर्खी है, भारत और जापान ने आज़ाद खुले और कवानीन पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के लिए अपनी अहदबस्तगी का एदा किया। अखबार इनकलाब की छह सुर्खी है, गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम तजुर्बात का मियाबी के साथ मुकम्मल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, पार्लियामानी कमेटी लखनऊ पहुंची। दौरे का मकसद सियासी जमातों, सरकारी अफसरान और दीगर फरीकों से तजावीज़ हासिल करना है। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय तलबा को मुबारकबाद दी। अखबारात ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के इस बयान को नुमाया किया है कि खवातीन की खुदमुख्तारी विकसित भारत का संग बुनियाद बन चुकी है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुप्रिया मैत्र से ध्रुपद गायन, राग है अहीर भैरव।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुप्रिया मैत्र से ध्रुपद गायन, राग था अहीर भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्किल्स यानी कौशल का होना बेहद जरूरी है। आज के समय में नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई स्किल्स सीखना, स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कौशल विश्वविद्यालयों का विचार सर्वप्रथम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में प्रस्तावित किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रवेश दुदानी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिग्री और रोजगार के बीच में अंतर दिख रहा है, और जब सीखने की प्रवृत्ति में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे एक भय भी है कि ये शायद रोजगार को छीन लेगा या कम कर देगा भारत जैसे बहु जनसंख्या वाले देश में। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्किल्स की जरूरत है और स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो किस तरह का होना चाहिए?
2: मैं लास्ट 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोजगार अलग अलग नहीं चलना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, लेकिन अगर डिग्री विदाउट इंडस्ट्री या डिग्री विदाउट स्किल्स अगर है तो वो आज हमारे युवाओं को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उनको इम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को जोड़ते हैं तो ही वो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकता है कि उनका जीवन, उनका करियर किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। जैसे AI की जो आपने बात करी, लास्ट 2 सालों में AI ने पूरा का पूरा जॉब का जो सिनेरियो है, मार्केट है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लोग ये भी बात करते हैं कि शायद जॉब्स कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। एक ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होती है हर एक चीजों में, वो चीज कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको पूरा खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो आज ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसपास में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, ऐसी क्या सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रगति हो, इन चीजों को सोचना और डिजाइन करना में ज्यादा लोग अपना समय लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल डे टू डे बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोडिंग बहुत लोग सीखते थे जिसमें काफी टाइम लगता था, इसीलिए पूरे देश में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन आज के दिन में जो काम कोडर्स 1 महीने में करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 1 घंटे में कर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इंजीनियर्स जो कंप्यूटर साइंस को AI की नजर से सीखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?

0: कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम आउटडेटेड हो गया है। वो जिस तेजी से इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके साथ नहीं चल पा रहा है करिकुलम।
1: तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, क्या उसमें आपका कहना है कि उसमें और सुधार की जरूरत है?
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पूरी गेम चेंजिंग, एक बहुत बड़े बदलाव लाने का शक्ति के साथ उसको लाया गया 2020 में, और जिसमें एक सबसे बड़ा पहलू था कि स्किल्स, यानी कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल सेट और वोकेशंस चाहिए वो हायर एजुकेशन के साथ चलना चाहिए। इसके पहले तक स्किल और वोकेशन, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या आपकी ITI एजुकेशन हो, उसको उच्च शिक्षा से हमेशा अलग रखा गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको साथ कैसे लेके चले, एक ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को दोबारा ट्रेनिंग ना करना पड़े उनकी। आप ये भी देखें कि आज पूरे हमारे इंडिया में, आज अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जो जितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं उसमें से कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, उसमें से हर 4 में से सिर्फ 1 बच्चा ही उच्च शिक्षा में एनरोल करता है।
1: निश्चित रूप से, खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ये कहना है कि अनुसंधान में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वो बीच में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात आती है, आपने IIT खड़गपुर से एक इंजीनियरिंग डिग्री ली और उसके बाद आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना में और एक एकेडमिक लीडरशिप में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समावेश करके एक यूनिवर्सिटी को बनाए?
0: जी, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मैं IIT खड़गपुर से 2008 में ग्रेजुएट हुआ, 5 साल मैंने वहाँ BTech और MTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था, और मुझे अपने उस 5 सालों में सिर्फ 4 महीने के आसपास मौका मिला इंटर्नशिप करने का, जो कि कॉलेज के द्वारा दिलवाया गया था। तो उन 5 सालों में मेरी एजुकेशन ज्यादा थ्योरेटिकल थी, नॉलेज बेस्ड थी, और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि इस नॉलेज का मैं इंडस्ट्री के अंदर कैसे अप्लाई करूंगा ताकि कोई मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, कोई मैं उनके लिए जाते ही कोई चीज बना पाऊं। फिर निकलने के बाद जब हम लोग इंडस्ट्री में गए तो हमें हर चीज शुरुआत से सिखाई गई जो उनको जरूरत था, और जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी वहां पर रेलेवेंस कम था, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आया, और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पूरे इंडिया में युवा क्या करते हैं कि क्योंकि ये डिग्री प्रधान देश, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते जब तक वो डिग्री ना ले
1: लें। बिल्कुल,
0: और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री लें और एक सिक्योर जॉब, यानी कि ऐसी नौकरी लें जो कभी उनकी सिक्योर हो जाए, सरकारी जॉब हो या कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो। लेकिन आज का युवा को ये चाहिए कि आज की पढ़ाई में जो वो समय और पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसको उसमें वापस मिलेगी, कितनी तेजी से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल आज के युवा में रहते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ, क्योंकि डिग्री भी करनी है तो बच्चे BCom BSc कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको प्रोफेशनल कोर्स करना है क्योंकि नौकरी चाहिए। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि लोग डिग्री भी करते हैं साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी कि कोई अकाउंटिंग टैली सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, या तो कोई कोचिंग कर रहा है कि भाई मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट दूं, क्योंकि उसको डिग्री भी चाहिए,
1: बड़ा इंडस्ट्री है,
0: कंपटीशन की तैयारी करता है, या उसको कोई वोकेशनल यानी कि कोई ऐसा स्किल सीखता है जिससे उसकी इमीडिएट नौकरी लग सके। आज अगर कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो हमारे हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। यही नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है कि कैसे लोगों को एम्पावर करें एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौशल और उसके अंदर वो कैरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए। एक स्किल यूनिवर्सिटी होने के नाते, जो कि एक बहुत इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के स्किल सर्टिफिकेशंस को साथ में जोड़ के पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्किम में एलाइड हेल्थ केयर, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं पूरे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं, एग्जाम क्लियर कर पाते, वो एलाइड हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट या डायलिसिस टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़ते हैं एज अ स्किल यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरे इंडिया में बहुत जगह हो रही है, लेकिन हमारा अप्रोच ये रहा कि हम इंडिया की सबसे बड़ी जो डायलिसिस सर्विस देती है नेफ्रो प्लस, उनके साथ हम जुड़े, MOU किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे कैंपस के अंदर अपना एक डायलिसिस सेंटर खोलें जो लोकल लोगों को भी सर्विस दे और उसको हमारे बच्चे और हमारे फैकल्टी चलाएं, और हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस मिल सके कि डायलिसिस एक्चुअली एक हॉस्पिटल में या एक डायलिसिस सेंटर में कैसे होती है।

0: तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि काम करते करते सीखना पे हमारा बहुत उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि वो बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाता है और उसको ये मोटिवेट करता है, उसको भी वो सारे चैलेंजेस सिखाता है। जैसे हमारे कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयर के यहाँ पर इंटर्नशिप करना, काम को सीखना इंटर्नशिप के थ्रू, अप्रेंटिसशिप के थ्रू, ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू, ये एक कंपल्सरी और 30-50% तक आपके पूरे प्रोग्राम में, यानी कि 3 साल में आपको 1 से 1.5 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और ये हमने इसका फायदा देखा, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में हमने टाई अप करके वहां पर उनको पहले साल में ही डाला कि आपने थ्योरी पढ़ी 1 साल, अब आप दूसरे तीसरे साल आप होटल के अंदर रह के काम करिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, हमारी फैकल्टी वहां जाके उनकी सुबह सुबह क्लास भी लेती है, बाकी 5-6 घंटे वो काम भी करते हैं। तो जब वो निकले तो हर होटल वाले ने ये बोला कि इन बच्चों की क्वालिटी बाकी के जो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जो बच्चे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने काम करते करते चीजों को सीखा है। और दूसरा, जब बच्चों को ग्रेजुएशन में जल्दी काम करने का एक्सपोजर दिया जाता है तो उससे वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी यानी कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी है उसका बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस आता है, और वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा और आगे मेहनत करेगा कि वो आगे बढ़ सके काम में।
1: आपका मूल मंत्र क्या है लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का, रोजगार परक बनने का, यूनिवर्सिटी का एक या आपका अपनी तरफ से ऐसा कुछ मूल मंत्र आप लोगों को बताते हो या उस पे काम करते हो?
0: मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्रोत है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो एज अ स्किल यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम करिकुलम्स को उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जैसा इंडस्ट्री को जरूरत है, और उसमें 4 चीजों पे फोकस करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको हम काम कराते कराते पढ़ाते हैं। दूसरा है कैरेक्टर, कि हम कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, उनको क्लब्स में करना, उनको एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, बाहर के जगहों पे इंडस्ट्री में इमर्जन कराना, उनको ऐसे टफ सिचुएशन में डालना, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगाना, तो इन सभी से उनका चरित्र डेवलप होता है जो कि आज बहुत ज्यादा जरूरी,
1: ताकि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहे।
0: और नवाचार इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये ना सोचेंगे कि आपके आसपास की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम का जो बैच होता है वो एक गांव से आसपास के जुड़ा हुआ है, जहां पर उनको प्रोग्राम के तहत उस गांव में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका वो सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि आज AI है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। पहले लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके फोन में है, ग्रीन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नॉलेज को यूज करते हुए अगर आप आसपास की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट करता है, इनोवेशन सिखाता है, और रोजगार पे सारा फोकस कि भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपने काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे रोजगार में, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना शिक्षा देते हुए, ये एक यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी फर्ज बनता है।
1: तो क्या ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में भारत उभरने वाला है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आप लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना और विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत हमारा सबसे यंग देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं और 30 साल से कम उम्र के करीब 50% से ज्यादा लोग हमारे यंग पॉपुलेशन है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारा इंटरनेशनल पाथवे का प्रोग्राम चलता है जिसमें आज जर्मनी, जापान जैसी कंट्री जहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, जहां पर एवरेज एज बहुत बढ़ गया है क्योंकि वहां पर यंग लोग कम आ रहे हैं, तो पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को हेल्प करना, वहां पर चीजें बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नर्स, जेरियाटिक केयर यानी कि बूढ़े लोगों को जो सपोर्ट नर्सेज होती हैं, इन तरह के लोग कम पड़ गए हैं। तो आज भारत और जर्मनी जैसे देश का ऐसे MOUs हैं जहां पर यहां से लोग वहां जा रहे हैं, उसमें हमने भी अपना रोल कर रहे हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। इसी में मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक बच्चा हमारा केरला से जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की महीने की 20,000 रुपए की नौकरी करता था, उसको हमने साल भर में जर्मन लैंग्वेज सिखा के उसका एग्जाम पास करवा के उसको जर्मनी भेजा, मर्सिडीज बेंज में उसकी नौकरी लगी और वो 3 लाख रुपए मैंने इंडियन रूपी के हिसाब से कमा रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि न कि सिर्फ उसकी जिंदगी बट उसके पूरे परिवार की और आने वाले जनरेशन, पूरे पीढ़ी का एक अप्रोच बदल जाएगा, एक रूप

0: बदल जाएगी जो मुझे लगता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप है कि यहाँ के युवा बाहर के देशों में जाके अच्छा काम करें, क्योंकि वहां पर हाथ से काम करने वालों की कमी होते जा रही है और हमारे यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
1: प्रवेश दुदानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए, खास करके जो किताबी ज्ञान से आगे एक नौकरी दिलाने वाली शिक्षा या प्राप्त करने वाली शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय में सारी चीजों का समावेश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत के स्वप्न में अपना रोल अदा कर सकें, इसके साथ ही आपने AI के दौर में युवाओं के लिए किस तरह की चैलेंज को स्वीकार करना और अपनी निपुणता को डेवलप करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा की, जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की अवधारणा और महत्व पर श्री प्रवेश दुदानी, संस्थापक और कुलाधिपति मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय सिक्किम से भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दिलीप झा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े हुए हैं। सुबह के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असी सुणांगे कविता पाठ ते इस तो इलावा कुछ गीत भी सुनवाए जाणगे। पर इस तो पहलां गल करदे आं सदाचार दी। सदाचार दा साडी जिंदगी च बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सदाचार वह गुण है जिस नूं जिंदगी च अपना के असी सच दे रस्ते ते चल सकते हाँ ते दसां नौहां दी किरत कमाई करके अपना ते अपने परिवार का गुजारा करदे हाँ। सदाचार सानू समाज च रहिंदे होए की सही है ते की गलत है इस दे विच फर्क समझण दी सोझी देंदा है। यही नहीं, जे तुसी सदाचार दे नियमां दा पालन करदे हो तां तुहाडे दिल च इंसानां दे नाल नाल होरना जीव जंतुआं प्रति दया भाव पैदा हुंदा है ते हर किसी का दुख तुहानू अपना दुख लगता है। इस दे नाल ही सदाचार दा गुण अपनाउण वाले इंसान हमेशा निरस्वार्थ भाव दे नाल लोकां दी मदद लई अग्गे आउंदे ने। उहनां च सेवा भावना, वड्डियां प्रति सत्कार ते छोटियां नाल प्यार ते हर किसी नूं आदर माण देण दी भावना हुंदी है। सदाचारी इंसान वैर विरोध दी भावना नहीं रखदा ते उस नूं कुल लोकाई ही अपना परिवार लगदी है। निम्रता, हलीमी, खुश मिजाजी ते सच्चाई ते प्यार उस दी शख्सियत तों झलकदे ने ते हर भजन मानवी किसे नाल अखियां ला के किस तरह दा महसूस कर रहे ने, आओ सुनदे हाँ इस गीत च। जदों अखियां ने अखियां तकियां, अखियां कुछ भी समझ ना सकियां। गीत दे बोल लिखे ने बाबू सिंह मान ने ते संगीतबद्ध कीता है जयदेव कुमार ने।

0: अपने असूलों ते कायम रहिंदा ऐ। तुहाडी शख्सियत चों सदाचार झलकदा ऐ ते तुहानू वेख के होर लोग भी प्रभावित हुंदे ने ते उस तरह का बनन की कोशिश करते ने। ते ए बहुत वधिया गल ऐ कि तुसी किसे दे लई चानण मुनारा साबित हो रहे हो। कुछ शख्सियत अपनी लेखनी दे राही भी समाज डूंगा असर छड़दियां ने। ते आओ फिर सुनदे आं कविता पाठ रजनीश गोयल तो।
1: अज लैके आए हाँ कुछ पंजाबी गीत। पहला गीत प्रस्तुत करदी हाँ

पिज गई कुर्ती ढेर पसीना, पिज गई कुर्ती ढेर पसीना, पिज गई कुर्ती ढेर पसीना। हुण प्रस्तुत करदी हां दूसरा गीत, ये भी प्यार मुहब्बत का गीत है।

कोशिशां बेकारगर मन्ने ना ओ सोनिया, रब रजा सोच जरा सुन लै ओ सोनिया। कोशिशां बेकारगर मन्ने ना ओ सोनिया, रब रजा सोच जरा सुन लै ओ सोनिया।

इस तो बाद एक गीत मां दे चरणा विच समर्पित कर दिया। एक गीत मां हर कर दी नीम है हुंदी उसनु कदे रुलाई ना, मां हर कर दी।

0: मापे की हुंदे है,
1: मापे हुंदे घर दी रौनक बिन ताले रखवाले ने, उत्थे ही सब भाग बर

0: एक कविता होर पेश करदी हाँ धियां ते। रब दी सोहनी दात ने धियां, रब दी सोहनी दात ने धियां, समझो ना यह रात ने धियां। चानण ने जे पुत्र घर दा, चानण ने जे पुत्र घर दा, घर रौनक सौगात ने धियां, घर रौनक सौगात ने धियां। लेंदे ने जे मोह पुत्र तां, लेंदे ने जे मोह पुत्र तां, निघी जही है जात ने धियां, निघी जही है जात ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। चलन छम छम करके वेड़े, चलन छम छम करके वेड़े, इं जापे ज्यों साज ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। मां सिन ने ठंडक पा दिंदियां, मां सिन ने ठंडक पा दिंदियां, प्यो दे सिर दी शान ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। कम दे विच ने हथ वटावन, कम दे विच ने हथ वटावन, सवार दियां कई काज ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। करदियां ना गल बाहर घर दी, करदियां ना गल बाहर घर दी, ढिड विच रखदियां राज ने धियां, ढिड विच रखदियां राज ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। मंग दहेज बेकदर ना करियो, मंग दहेज बेकदर ना करियो, आप ही हुंदियां दाज ने धियां, आप ही हुंदियां दाज ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। बचपन सोना छड पेक्या कर, बचपन सोना छड पेक्या कर, सौरियां दा सरताज ने धियां, सौरियां दा सरताज ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां। हौसला करो बुलंद इन्हां दा, हौसला करो बुलंद इन्हां दा, बिन पंख भरन परवाज ने धियां, बिन पंख भरन परवाज ने धियां, रब दी सोहनी दात ने धियां, रब दी सोहनी दात ने धियां, समझो ना ए रात ने धियां।
1: रजनीश गोयल तो कविता पाठ तुसीं सुन रहे सी। ते आओ हुण सुणदे हाँ बब्बू मान दी आवाज़ च ये गीत, तेरे बिना नींदरां नहीं आउंदियां।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: Peacekeeping has been a crucial element of many...
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Nina Rakel. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council UNSC for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: It is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful, and equitable world.
4: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President, Vice President and Prime Minister have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. The event aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy, dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. In Odisha, the sacred Navajovana Darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after the fortnight-long Anusara period. United States launched strikes on Iran for third consecutive

0: of night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. U.S. Central Command, CENTCOM, said the strikes will continue imposing a heavy cost of Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and commercial shipping in the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump threatened to destroy Pickaxe Mountain, a deeply buried nuclear site near Natanz, where Western intelligence suspects Iran is building an undeclared enrichment facility, a report.
1: U.S. President has announced that the United States will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. In a post on Truth Social, President Trump said the blockade would apply only to Iranian ships and vessels trading with Iran. He added the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. He assured that commercial traffic from other countries would continue to have free passage. The U.S. military said it will resume the blockade of Iranian ports from tonight. Iran has rejected the U.S. move, asserting its authority over the Strait of Hormuz. Tehran said that it will not, under any circumstances, allow the U.S. to interfere in the management of the Strait of Hormuz. Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
0: India junior women's under 21 hockey team will take on Belgium today. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर श्रोताओं आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं और ये समय है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जिसे आप भेज सकते हैं अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर। और इसका ईमेल एड्रेस है ipradiodaily@gmail.com, ip यानी इंद्रप्रस्थ। तो इस ईमेल पर आप अपनी फरमाइश ज़रूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका आपकी पसंद का गाना नहीं बजा पाए तो आपका नाम किसी न किसी गीत में शामिल हो जाए। लेकिन एक निवेदन और है, जिन श्रोताओं के बहुत सारे मेल आएंगे उनका मेल तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, इसका मतलब है कि वो सुन नहीं रहे, सिर्फ मेल करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक मेल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के मेल लिए जा सकें। आगे बढ़ें और शुरू करें कार्यक्रम का सिलसिला, उससे पहले ये संदेश आइए सुनते हैं।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी हाँ श्रोताओं, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार जितनी सुविधा हमें इंटरनेट और मोबाइल या जो आज की दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया है उससे मिली है, उससे ज़्यादा चुनौतियाँ भी साथ में आई हैं। तो सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और सरकार द्वारा इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, जागरूकता के कैंपेन चलाए जाते हैं, उनको ज़रूर ध्यान से सुने और फॉलो करें। जो हेल्पलाइन नंबर हैं, ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी जहां पर संभव हो साझा करें। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला आपकी फरमाइश का। बहुत ही प्यारा सा गीत पहला कार्यक्रम का, इसे सुनेंगे। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये गीत किसकी आवाज़ में सुनने जा रहे हैं। ये गायक कलाकार का नाम है यशुदास और संपर्क फिल्म से इसे हमने लिया है। और सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता मित्र राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। मेरठ उत्तर प्रदेश से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और जीवयम जैन ने हमें मेल किया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का ईमेल मिला।

खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू, खरगोन मध्य प्रदेश से ही अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु और मुकेश जगताप, भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा और जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत तथा कमल सहानी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा गीत संपर्क फिल्म का यशोदास की आवाज़ में सुना, और कार्यक्रम का अगला गाना यशोदास के ही स्वर में आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन संगीत इसका तैयार किया रविंद्र जैन ने। बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी है, और ये नाव से जुड़ा हुआ है, और इस फिल्म का नाम भी नैया है। और इस समय बारिश का मौसम है, तो नैया नदी पतवार और बारिश की बूंदें और जो हरियाली है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, ये भी आकर्षित कर रहा है। लेकिन कई जगहों पर अभी इस बार मॉनसून कमज़ोर है, तो लोगों को निराशा भी हो रही है। आप अपने क्षेत्र में कैसा मौसम हो रहा है इसके बारे में भी बताएं। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप एक ही मेल करें ताकि आपका मेल शामिल हो पाए, और जो ज़्यादा मेल कर रहे हैं इसका मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, और वो सिर्फ मेल करना चाहते हैं ताकि उनका नाम लिया जाए। तो अगर आप कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं तो मेल ना करें, और मेल अगर कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक ही मेल भेजें। और अगला जो गीत अब सुनवाने जा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने किया, नैया फिल्म से, यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन टुकटुक, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित ध्वनि गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, और इरशाद अहमद शाह जहां बेगम और मरियम जैनब, आपने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप मेल करें तो अपने ज़िले और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कस्बे, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो कई बार लोग नहीं जानते हैं, तो ये लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। और अगला नाम है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका सिक्का का। तो आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं ये गाना, और इसके बाद कुछ और बातें करेंगे।

ये गीत आपने सुना येसुदास की आवाज़ में, और कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों और आप सभी के ईमेल शामिल कर रहे हैं और बहुत सारे मित्र इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए एक ही मेल उन्होंने किया है तो हमने आपका नाम भी शामिल किया है। और किन श्रोताओं के नाम शामिल हो रहे हैं अगले गीत में? कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया। लुधियाना पंजाब से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव और गोटना जैन। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी, अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। सूरत सिटी से अल्पा जैन और अदिति जैन। राकेश जैन ने भी ईमेल किया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, विदित गोयल। रोहिणी दिल्ली से सुन रहे हैं कार्यक्रम और चाहते हैं अपनी पसंद का गाना, तो माफ़ी चाहता हूं आपकी पसंद का गाना भले न सुना पाऊं लेकिन आपका नाम शामिल कर रहा हूं इस गीत में, अगले गीत में। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, आप सभी की पसंद पर हम सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे लिया है जीवन और मृत्यु फिल्म से। जीवन मृत्यु नाम है फिल्म का और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, लता मंगेशकर के साथ आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, बहुत ही प्यारा सा गीत, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, ये गीत साहिर का है, आनंद बख्शी का गीत। अगला होगा जो आप सुनेंगे जीवन मृत्यु फिल्म से, ये इज्जत फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

है ना दोस्तों, कितना प्यारा सा गाना। और अगला गीत जिसका डिटेल मैंने बताया था आपको इस गाने के लिए, वो गीत आपको सुनवाऊंगा इस अगली पंक्ति में, कतार में जो अगला गाना है। और इसके लिए आप सभी श्रोताओं के नाम भी पहले पढ़ ले, किशन, वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, आप सभी ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें ईमेल किया। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने ईमेल किया। हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़बाल, सुखबीर, काजल, लकवीर, रानो कृष्णा, सुमति छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला और निशांत तथा अनमोल ने ईमेल किया। और संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से ईमेल किया। साथ ही जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम और विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित ने ईमेल किया। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु रिधान खुराना, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जा रज्जक रज्जाक मोहम्मद।

क्षमा चाहूँगा रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान ने ईमेल किया, और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास और कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके जो इतने सारे मेल आ रहे हैं वो मेल आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाऊँ, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश यानी आपकी पसंद का। तो आपकी पसंद के गीत हो और आपकी नाम हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में एक बार फिर से आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

दोस्तों, बारिश का मौसम है और इस समय देश में खेती का जो खरीफ खेती का जो समय है वो बहुत चरम पर है। हर किसान, हर खेतिहर मजदूर लगातार खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन आसमान से जब बादल सिर्फ दिखें और बरसे नहीं, या आसमान में इस समय धूप दिखाई दे तो निराशा होती है। हम जानते हैं कि बारिश इस बार कम होने वाली है, मॉनसून कमज़ोर रहेगा, मौसम विभाग ने बताया है। तो उन किसान साथियों और उन सभी श्रोताओं से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई सुविधा है जहाँ पर आप बारिश जब हो उसका पानी संग्रहित कर पाएँ, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन कर पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उस दौरान काम आएगा जब बारिश नहीं हो रही होगी। और कुछ और विधियां हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके आसपास टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, तो दो और विधियां हैं जिनसे आप कम पानी में खेती कर सकते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन, यानी जितने पौधों को जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो पानी आप कम जहाँ पर है वहाँ पर भी आप खेती कर सकते हैं। और साथ में स्प्रिंकल, यानी ऊपर से छिड़काव होता है, तो इन विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वर्षा जल संचयन करके भी खेती का काम आप कर सकते हैं। और आइए पढ़ लेते हैं मेल उन श्रोताओं के जिनके लगातार आ रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और गर्वी तथा हिमाक्ष चौहान। गाजियाबाद से शीशपाल अकेला और एसपी अकेला। मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, रईसा नाज, मुजक्किर बाबू, रईसा मजाहिर, मजहर असीम और सुमैया महक। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, कृष्णा कॉलोनी हाजी से सुभाष योगी, सुशील योगी। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। और जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा तथा भाई सच्चा सिंह पाठक। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं दर्दे दिल। ये धुन सुन रहे हैं आप पीछे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कर्ज फिल्म से ये हमने गाना लिया है, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बारिश का मौसम हो तो हम सीधे हिंदी में महीनों की बात अगर आती है तो सावन के महीने से समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बरसात हो रही, इसका मतलब सावन का महीना है। आम जनमानस में यही रहता है। ज्येष्ठ जो गर्मी तप रही होती है, उसके बाद आषाढ़ का महीना आता है, तब से बरसात शुरू होती है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और उसके बाद अश्विन जो चौथा महीना मानसून सीजन का है, सितंबर, उस समय तक मानसून की बारिश होती है। तो अगला जो गाना है वो सावन के महीने पर ही केंद्रित है। देशवासी फिल्म से लिया है, अनुराधा पौडवाल के स्वर, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये गाना। मोहम्मद रफ़ी की खूब सारी खूबसूरत और मधुर आवाज़ें हमें सुनाई दी अलग अलग गीतों में।

दोस्तों, सावन का महीना खुशियों का प्रतीक भी है और खुशियों को प्रतिबिंबित भी करता है। तो कैसे कोई अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सावन के महीने की बारिश से जोड़कर उसे देखता है। इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के खत हमने शामिल किए आज के इस कार्यक्रम में। मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़ी और विजया तायड़ी, जिगांव विदर्भ से वसंत राव भोजने, सुनंदना भोजने, गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दर्जी सिंह गिल, राजदीप सिंह गिल और गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह तथा शुभदीप सिंह। आप सभी की पसंद पर हम सुन रहे हैं ये गाना अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में।

हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नांदे, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे, कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अन्विका तनुषी गुप्ता। आप सभी की पसंद पर सुन रहे हैं गुरु फिल्म का ये गाना श्रेया घोषाल की आवाज में।

उदय मजुमदार और श्रेया घोषाल की खूबसूरत प्रस्तुति, श्रेया घोषाल की मधुर आवाज़। और अगला गाना और कार्यक्रम का आखिरी गाना पूर्व और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, जिसमें भारत की वो क्षमता, भारत की वो प्रतिभा जो प्राचीन काल से सदियों से विश्व को एक तरह से कहें कि मार्गदर्शक बनी हुई है विश्व के लिए।

0: दोस्तों क्षमा चाहूंगा, ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पाऊंगा, लेकिन कुछ श्रोताओं के नाम जरूर बता दूं। जैन मंदिर वाली गली, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ और मोहम्मद फैज वारसी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा, कालका से सुमजन बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, आप सभी की पसंद पर ये गाना हम सुन रहे थे। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न करना चाहता हूँ। बहुत प्यारा गीत है, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहा हूँ। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2,00,000 रूपये और घायलों को 50-50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे।

शुभा मुद्गल के स्वर में ये गीत आपने सुना और सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत अगला और आखिरी जो गाना या गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दलेर मेहंदी और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं।

दलील मेहदी और साथियों की आवाज़ में इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर। आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस चैनल पर अगला जो कार्यक्रम है वो है शास्त्रीय संगीत का। 11:30 हुए हैं तो आइए सुनते हैं सुरमंजरी के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विदुषी शाश्वती मंडल का गायन। आप अपना गायन प्रस्तुत कर रही हैं राग जोगिया में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे विदुषी शाश्वती मंडल का गायन। आप अपना गायन प्रस्तुत कर रही थी राग जोगिया में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी, जहां पर आप इंटरनेट और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आकाशवाणी के तमाम चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं, तमाम चैनल्स के प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरम मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का यह अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the four-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of Bharat Tex 2026 is witnessing participation of around 7,000 buyers and over 20,000 textile products. International exhibitors from 14 countries are participating in the event. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
4: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
3: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group PDG in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building and vocational training. The death toll from a huge fire in a Bangkok music bar has increased to 30. Bangkok city officials today said more than 70 people remain hospitalized, with 24 of them in critical condition. Police said an investigation into the cause of the fire and whether the bar was following safety regulations is ongoing. It added that most of the people who were killed were found trapped in windowless bathrooms where they may have sought to escape the flames. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's central command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, U.S. tonight. The match is

हर आंगन। हम लोगों ने बचपने से एक कहावत सुनी है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा अपनी बचपन को याद कीजिए। क्या सचमुच नाम में कुछ नहीं रखा होता? घर में दादा दादी के पुकारने का नाम, माँ की आवाज में घुला कोई प्यार भरा निकनेम, भाई बहनों की शरारतों से मिला कोई नया नाम, ये सिर्फ नाम नहीं होते, ये हमारी जिंदगी की सबसे मीठी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। नाम तो बस एक पहचान है, अपनापन तो उस पुकार में छिपा होता है जिसे सुनते ही बरसों पुराना बचपन चुपके से मुस्कुरा उठता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन, और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आज घर आंगन का सवाल आप सबसे ये है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था, और आज भी क्या घर में कोई उसी नाम से आपको बुलाता है? अपने जवाब हमें जरूर भेजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा निकनेम या छोटा सा प्यार का बुलाने वाला नाम हमारे दूसरे श्रोताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इंतजार है आपके प्यारे प्यारे नामों का।

0: द फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर और इसमें आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना। तो हमारा आज का सवाल आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये है कि आपका बचपन का पुकारने वाला नाम क्या था, यानी आपका निकनेम क्या था, और अभी भी कोई आपको इस नाम से बुलाता है? तो देखिए, बुलाने से मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर आवाज़ दे रही हूँ हमारी सहयोगी, हमारी साथी रश्मि जी को
1: जी।
0: और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: एक नाम और जुड़ गया है निकनेम्स के साथ, और नाम की बात की है तो रश्मि कुकरेती आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ, और सोनाली।
0: बिल्कुल, हमारा नमस्कार एक बार फिर हमारे दोस्तों को,
1: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोनाली तुम्हें भी नमस्कार।
0: नमस्कार रश्मि जी, तो हम बात कर रहे थे नामों की, है ना, और जब हम बात करते हैं नाम की तो एक बचपने की बातें हो रही हैं, तो मुझे मशहूर शायर निदा फाजली की दो पंक्तियां याद आ गई हैं।
1: जी।
0: बाट की अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, है ना।
1: सुंदर ख्याल और क्या खूबसूरत बात। सचमुच सोनाली, माँ अचानक माँ तो नहीं बन पाती, सबसे पहले वो एक लड़की होती है।
0: हाँ,
1: भी तो अपने सपने होते हैं, अपनी सहेलियों, अपनी शरारतें और उसके मन की छोटी छोटी इच्छाएं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, जैसे जैसे जिंदगी बदलती है ना रश्मि जी, घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वही चंचल लड़की सबकी फिक्र करने वाली माँ बन जाती है, और ना सबकी पसंद याद रखती है लेकिन कई बार अपनी पसंद ही भूल जाती है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है लेकिन अपने लिए समय निकालना टालती रहती है।
1: हाँ, तो जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कभी अपनी माँ से ये पूछा था कि उन्हें कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, या वो कौन सी जगह पर फिर से जाना चाहती हैं, या ऐसा कोई शौक जिसे वो आज भी जीना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, देखिए, कभी पुराने एल्बम निकाल कर देखिए, उनमें आपको सिर्फ अपनी माँ नहीं मिलेगी, एक हंसती खिलखिलाती सपने देखने वाली लड़की भी निकलेगी, है ना
2: जी। और सोनाली, मैं सच बताऊं, हर लड़की के चेहरे में

0: फिल्म नरम गरम में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में बहुत प्यारा सा गीत
1: जी। और सोनाली, वाकई जो गीत के बोल भी थे ना, वो बहुत दिल को छू लेने वाले गीत थे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे में माँ का चेहरा छुपा है ना, ऐसे एक लड़की जी, जीती है ना।
0: मतलब माँ को सच में अगर कोई मिस करता है, अगर कमी महसूस होती है, तो जिस तरह से इस गाने में बयां किया ना रश्मि जी,
1: हाँ,
0: माँ की साड़ी पहन लेना या माँ के जैसे ही तैयार होना, वो हर लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज से जोड़ सकती है।
1: तो मुझे लगता है ये गीत जो भी सुन रहे हैं हमारे सुनने वाले, उनको कहीं ना कहीं अपनी माँ की जरूर याद आ गई।
0: बिल्कुल आ रही होगी।
1: और तुमने वापस आते हैं, निक नेम पूछा था सबसे और बड़े प्यारे प्यारे निक नेम्स आ गए हैं। प्रदीप दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन उनका निक नेम था लालू।
0: देखिए, और ना एक चीज और भी है यहाँ पे ना, नवीन भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि दादी जी और माता जी उन्हें राजू कहकर बुलाती थी।
1: हम सब श्रोताओं को बचपन में लिए जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और निकनेम कुछ समय तक साथ चलता है और कभी वो फेड भी हो जाता है, लेकिन याद तो रहती है ना।
0: और रश्मि जी, आपने महसूस किया कभी, अक्सर ना हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं
1: जी,
0: वो हमें उसी नाम से बुलाते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बहुत ना मेरे कजिन्स का असली नाम पता ही नहीं होता है।
1: अच्छा, भूल जाती हो।

0: याद रहते हैं उनकी।
1: जी डॉक्टर डी राजेश्वर राव कह रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया को परी बुलाता हूँ, हालांकि उसका नाम है सुगंधावा, पापा की परी है वो।
0: बिल्कुल है। और देखिए चरणदास जी लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं चौधरीवास हिसार से, लिख रहे हैं राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी कि बच्चों के प्यार करते वक्त हम तोतली भाषा में बात करते हैं और इसी भाषा में नए नाम अपने आप निकल आते हैं, सभी उसी नाम से पुकारते हैं। मेरा पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा वो एक चुटकुला भी लिख रहे हैं जी। रेलगाड़ी में पास बैठे यात्री से पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कालका प्रसाद वासी। जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा आज का प्रसाद ताज, आज का प्रसाद दीजिए, मतलब इस तरह का कुछ। अच्छा। उसने कहा। तो कुछ इस तरह का था
1: जी। जी और एक और मेल मेरे पास आया है विवेक विहार से, आप कह रहे हैं कि मेरा घर का नाम था गब्बर, क्योंकि बचपन में मैं सबको डराता नहीं हंसाता था। अच्छा। तो बहुत प्यारा नाम है गब्बर। अच्छा जबर नेम है गब्बर।
0: क्या बात है, सच में जबर नाम है। अच्छा देखिए हमारे संग कामायनी जुड़ी है लक्ष्मी नगर से
1: जी,
0: और वो कह रही है कि आज का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और मेरे तो बहुत सारे निकनेम हैं। घर में सब प्यार से बिट्टू बुलाते थे, मेरी फ्रेंड्स कली बोलती थी और कुछ फ्रेंड्स कामायनी बुलाते थे, क्योंकि मुझे कविताएं पसंद हैं और जयशंकर प्रसाद जी मुझे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम। अच्छा क्या
1: अच्छा,
0: बात
1: है, वाह क्या बात है,
0: कामायनी इसीलिए नाम है।
1: हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ खिला के शीतल छा,
0: क्या
1: वाह, कितनी खूबसूरत कविताओं की पंक्तियां याद आ गई। हाँ। प्रसाद जी की। तो आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल। तो हम ना हर माँ के भीतर एक लड़की की बात हमने की है ना, और कई बार वही लड़की ना जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी लड़ रही होती है रश्मि जी।
1: जी
0: और ऐसी ही एक महिला है जिनकी कहानी ना आज हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। इन्होंने अपने दुख को सिर्फ अपना दुख बनाकर नहीं रखा बल्कि उसे हजारों लोगों की उम्मीद में बदल दिया।
1: जी आप मुझे लगता है बात कर रही हैं पश्चिम बंगाल की सुभाषिनी मिस्त्री की कहानी बताना जा रही है, और वो उनकी कहानी जो है वो कुछ ऐसा संदेश देती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा साधन नहीं बल्कि बड़ा हौसला चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए उन्होंने यही किया था ना कि सब्जियां बेची, मेहनत मजदूरी की, घर चलाने के लिए उन्होंने तमाम काम किए रश्मि जी।
1: जी
0: और वो सिर्फ ना एक ही उनका सपना था, गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाना।
1: और लंबे संघर्ष के बाद सोनाली उनका ये सपना सच हुआ और पश्चिम बंगाल के जो हंसपुकुर में उनकी ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की स्थापना हुई, जो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज की सुविधा वहां मिलती है। और यह अस्पताल सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना बल्कि एक स्त्री के साहस, संघर्ष और सेवा की नींव पर खड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल। और ना समाज सेवा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
1: वाह,
0: है ना। और इसीलिए तो कहते भी हैं कि इरादे अगर इंसान से बड़े हो जाएं तो राह की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं।
1: जी क्योंकि सुभाषिनी मिस्त्री जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी हमें चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा हमसे ले, लेकिन अगर हमारे भीतर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा मौजूद हो तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है।
0: बिल्कुल। और जीवन तो नाम ही चलने का है।
1: जी
0: चलते रहना ही है।

0: फिल्म सफर में आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घर आंगन में। और आज आपके साथ हम हैं, यानी मैं हूँ सोनाली और मेरे साथ हैं
2: रश्मि कुकरेती। और सोनाली, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं मेरा नाम बचपन का था गुप्ता, और जितेंद्र चौरसिया कह रहे हैं कि मेरा नाम था पप्पू और सरदार भी मुझे कहते थे।
0: सच में।
2: और मास्टर अशोक कुमार भी देखो फरमाइशी गीत लिख रहे हैं। अशोक जी से मैं कहूंगी कि आप अपना नाम बताएं, बचपन का क्या नाम था। और एक और सुशील जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और सचिन पठानिया और चंदा पठानिया नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और फिर वही फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे दोस्तों, ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, घर आंगन है। और हमारा सवाल था कि आपका बचपन का नाम यानी निक नेम क्या था, वो जल्दी से लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर।
0: बिल्कुल। और देखिए ना, मेरे साथ भी एक यहाँ पर एक मैसेज है, वो है रेखा देवी चौधरी वास हिसार हरियाणा से
2: जी।
0: लिख रही है मेरे बेटे का नाम विवेक है और बेटी का नाम प्रियांशी है। मेरे ससुर ने बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम चिक्की रखा है, और हम लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं।
2: बहुत सुंदर नाम है।
0: बिल्कुल। और फिर सुदर्शन मुखी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हैं सिमरन मुखी और अनीता मुखी। वो लिख रहे हैं हमारी बिटिया का निकनेम है सीमू
2: जी।
0: वैसे हमारी बिटिया का नाम है सिमरन मुखी जी, वो तो हमें पता ही है। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए
2: जी। और सोनाली, मैंने देखा है जो बंगाल में तो निकनेम बहुत बोला जाता है और ज्यादातर, और बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं, पर ज्यादातर जो है ये जो घर में प्यार के दुलार के नाम होते हैं उनसे पुकारा जाता
0: जी,
2: है।
0: और शायद तभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत बार अपने कजिन्स का असली नाम नहीं पता होता।
2: आपका निकनेम क्या था ये बताओ।
0: मेरा निकनेम बताऊंगी, उसके पहले मैं आपका निकनेम भी जानना चाहूंगी। देखिए, अब हमारे साथ जो कामायनी है ना, वो क्या लिख रही है, हाँ उनकी मम्मी उन्हें बहुत अजीब नाम से बुलाती है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। वो लल्ला तो कभी लाली भी बोलती हैं और पापा जी ध्रुव बोलते हैं।
2: वाह
0: वाह, नानी मुझे कृष्णा बुलाती है
2: जी। मैं अपना निकनेम बता दूं सोनाली तुम्हें। मुझे मेरे पापा प्यार से झांसी की रानी करते थे।
0: क्या बात है, देखिए पिताजी ने आपका नाम बिल्कुल झांसी की रानी है, क्या बात है। देखिए,
2: और क्योंकि मैं बचपन में से ना, बचपन में सुनती सुनती नहीं थी किसी की, बस अपने मन की करती थी, तो वो बस ऐसे ही कहते थे कि झांसी की रानी है, भाई ये किसी की नहीं सुनने वाली, अपने मन की करेगी।
0: क्या बात है।

0: देखिए इसके
1: तो
0: पीछे
1: अब
0: भी
1: अपना नाम भी बता दो। देखो मैंने तुम्हें बताया तो कुछ तुम्हें भी बताना पड़ेगा।
0: मेरा घर का नाम, वैसे तो सब मुझे सोना ही बोलते हैं
1: जी, मुझे
0: सोनाली
1: लग रहा था कुछ ऐसा ही गोल्डन नाम होगा
0: नहीं,
1: तुम्हारा।
0: सोनाली रखने के पीछे भी यही था कि नानी मुझे सोना सोना बुलाती थी मेरे नाम नहीं रखने के पहले
1: जी,
0: तब मैं उनको शायद जवाब देती थी, ऐसे मेरी माँ कहती है, तो वो मुझे सोना बोलती थी तो मैं बोलती थी तो उन्होंने मेरे नाम ही सोनाली रख दिया।
1: तो आज बहुत सारे सीक्रेट्स आउट हो गए सोनाली, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोचक जानकारी हम लेकर आए हैं अपने सुनने वालों के लिए।
0: बिल्कुल, देखिए हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चीज को हर दिन लिखते हैं मतलब, और उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसा होता है ना
1: जी,
0: है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिन कोड क्या है तो आप मुझे बिल्कुल एकदम बता देंगे, है ना रश्मि
1: बता
0: जी?
1: देंगे जी।
0: और लेकिन अगर ये पूछो कि उन 6 अंकों का मतलब क्या है तो यहाँ पर आप रुक जाओगे, है ना। तो पिन का मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर
1: जी।
0: और इसकी शुरुआत ना 15 अगस्त 1972 को भारतीय डाक विभाग ने की थी। उस समय देश में कई शहरों और कस्बों के नाम एक जैसे थे, तो शायद उसी को अलग अलग पहचान देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी।
1: और इस व्यवस्था को भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्रीराम भिकाजी वेलणकर ने विकसित किया था। उनका उद्देश्य ये था कि देश के किसी भी कोने से भेजी गई जो चिट्ठी है वो बिना किसी भ्रम के बिल्कुल सही पते तक पहुंच जाए।
0: हाँ, और ना देखिए अब इसके पीछे जो है ना कि पहला अंक जो होता है इसका वो भारत के किस डाक क्षेत्र से है वो बताता है,
1: और दूसरा अंक जो है वो क्षेत्र के उपक्षेत्र की पहचान कराता है,
0: और इसी के साथ ना जो तीसरा है ना वो जो छटाई का केंद्र होता है ना, यानी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो उसका नंबर होता है,
1: और आखिरी जो 3 अंक होते हैं उस विशिष्ट डाकघर की पहचान होते हैं जहां से आपकी डाक आगे आपके अपने घर तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात है ना। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भले ही इंटरनेट और मोबाइल के हम दौर में रह रहे हों लेकिन पिन कोड की जो अहमियत है ना वो जरा भी कम नहीं हुई है, है ना। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, बैंकिंग कर रहे हों, कोई भी सरकारी दस्तावेज की बात हो, पार्सल हो, डिलीवरी हो, सभी पिन कोड के वजह से एकदम सही तरीके से आप तक पहुंच जाते हैं
1: जी,
0: है ना।
1: तो कभी किसी लिफाफे या पार्सल पर अपना पिन कोड लिखते समय एक बार जरूर सोचेगा कि इन 6 अंकों के पीछे भारतीय डाक विभाग की दशकों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो हर दिन करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।

0: रामपुर का लक्ष्मण। इस फिल्म में आप सुन रही थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
1: हाय राम और हाय राम। सुशील पठानिया जी दोबारा जुड़ गए, कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि क्या आपका सवाल था, और अब बता रहे हैं कि मेरा जो निक नेम है वो टिंगू है, जो मेरे नाना जी ने रखा था पता नहीं क्यों, हालांकि मुझसे बड़े इसी नाम से पुकारते हैं। हालांकि मेरे बच्चे अभी जॉब में हैं, लेकिन कई बार मेरी लाइफ यानी मेरी वाइफ ऐसे ही पुकार लेती है, अगर ध्यान कहीं और हो। भाई ये तो बड़ा प्यारा सा,
0: कितना प्यारा है ना ये चीज़।
1: और एक और संदेश आया है हमारे पास, आप हैं राजीव विवेक विहार से, आप कह रहे हैं कि मुझे ऑफिस में सब प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि मुझे ज्ञान देने की बहुत आदत है।
0: देखिए और कितने प्यार से उसको मान भी रहे हैं कि मुझे ज्ञान देने की आदत है। और इसी तरह से हमारे संग ना योगसेन यादव जी जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं हमें नमस्कार लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनका नाम यही है, मतलब उग्रसेन ही नाम है उनका, और लेकिन वो एक तारीफ भी कर रहे हैं कि प्रोग्राम और एक क्वेश्चन उन्हें बड़ा दिलचस्प लगा है।
1: जी तो भाई जो घर आंगन की जो प्रस्तुत करता है वो रोज रोज आपके लिए बड़े मजेदार से सवाल लेकर आती हैं, कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं जानकारी मिलती है, और कहीं बस यूं ही बातें होती है। और जब बातों की बात होती है सोनाली, तो भाई आजकल लोगों को मोबाइल पर बातें करने की बहुत आदत है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर भाई मोबाइल के बारे में अगर कुछ नया फीचर तुम बताने जा रही हो तो मैं इंतजार कर रही हूँ।
0: बिल्कुल रश्मि जी, ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल का इस्तेमाल बातचीत से लेकर बैंकिंग और खरीदारी तक लगभग हर काम के लिए करते हैं, है ना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल खरीदते समय उसके कैमरे, स्टोरेज और बैटरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं जिनकी अहमियत मुश्किल समय में समझ आती है।
1: एक ऐसा ही फीचर है इमरजेंसी SOS का। भाई आजकल जो अधिकांश स्मार्टफोन होते हैं ना, उनमें ये सुविधा पहले से ही मौजूद है, और भाई किसी दुर्घटना, अस्वस्थता या आपात स्थिति में ये फीचर आपके द्वारा पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन और मदद का संदेश भेजने में सहायता कर सकता है। तो जो अलग अलग मोबाइल कंपनियां होती हैं उसमें इसे शुरू करने की का जो तरीका है वो भी अलग होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में ये सुविधा मौजूद है।
0: हाँ, और इसी की तरह ना इसी तरह से मेडिकल आईडी फीचर भी होता है। हाँ, इसमें हम अपना नाम, अपना रक्त समूह, अपनी एलर्जी और जो भी हम नियमित दवाइयां ले रहे हैं ना उसकी जानकारी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट साथ में दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी बिना फोन अनलॉक किए भी देखी जा सकती है, जिससे मदद करने वालों को आवश्यक जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है।
1: तो हम तो यही कहेंगे भाई अभी सुनने वालों को कि अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में ये दोनों सुविधाएं सेट नहीं की हैं तो आज ही कुछ मिनट निकालिए और इन्हें जरूर देखिए, हो सकता है जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन तैयारी तो हमेशा काम आती है, तो मैं तो ये कसम अब ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, सभी को ये कसम लेनी चाहिए।

0: तो ये गाना था फिल्म तेरे मेरे सपने का, और लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गाना था
1: जी। और देखिए, जब कसम की बातें होती हैं तो हम तो ये कहेंगे आप कसम लें या ना लें, लेकिन अपनी जो छोटी छोटी आदतें हैं और छोटे छोटे फैसले हैं ना, ये जरूर लेते रहें और सही फैसले लें और सही आदतें लें, है ना।
0: अब जब आपने छोटी छोटी आदतें और फैसलों की बात की है ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अलग सी जानकारी आई है
1: जी।
0: और ये बात जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये खेती पर भी लागू कर सकते हैं वैसे, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: क्योंकि खेती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की जाए तो उसका लाभ सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। तो हमारे भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पूरी खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है।
1: जी बिल्कुल, और ये राज्य है सिक्किम। वर्ष 2016 से सिक्किम को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया, और ये उपलब्धि सोनाली एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे कई वर्षों की योजना, किसानों का सहयोग और प्रकृति के पीछे गहरी प्रतिबद्धता भी थी।
0: क्या बात है। और देखिए, ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती
1: जी,
0: ये एक ऐसी खेती है जिसमें हमने जहां आपको बताया केमिकल और कीटनाशक यहां पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि प्राकृतिक तरीकों से यहां पर खेती की जाती है। तो सिक्किम ने यह साबित किया कि विकास और पर्यावरण

0: साथ साथ चल सकते हैं। आज वहां की जैविक खेती ने स्थानीय किसानों को नई पहचान दी है और देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया है।
1: सोनाली, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, शायद इसीलिए उसकी देखभाल करना भी हमारी साझा जिम्मेदारी बनती है।
0: धरती हमें विरासत में नहीं मिली, इसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है ना।

0: फिल्म हरियाली और रास्ता। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों आपको बता दें, हमारा आज का सवाल है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था और आज भी क्या आपको घर पे कोई उसी नाम से बुलाता है।
1: और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए कि आपका प्यार से बुलाने वाला नाम क्या था। और एक प्यार से बुलाने वाला नाम मेरे पास आ गया है। आप हैं विवेक, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है घर में सारे मिस्टर हंसमुख कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ बस हंसाता ही हूँ। भाई बहुत प्यारा नाम है और आपके अंदर ये जो गुणवत्ता है ये बहुत प्यारा गुण है। किसी को हंसाना वाकई बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है। और ये गुण और ये बात हर एक के अंदर होती नहीं है,
1: हाँ।
0: है
1: ना? और सुर भी कह रही है कि मुझे कहते हैं मिस लेट लतीफ, क्योंकि मैं कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती। आप मयूर विहार से हैं। भाई सुर भी ये तो नहीं होना चाहिए, समय से निकलना चाहिए। देखिए हमारे आकाशवाणी में तो ये बिल्कुल स्वभाव है, जितने समय पर कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है और उसी

0: होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में तीज, हरियाली, अमावस्या, कजरी तीज जैसे पर्व मनाए जाते हैं। भाई कहीं पेड़ों पर झूले पड़ रहे हैं तो कहीं लोकगीत गूंज रहे हैं तो कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों के मन को तरोताजा कर देती है।
1: और शायद यही वजह है कि पहली बारिश की बूंद गिरते ही हमारे मन में भी कुछ बदलने लगता है ना
0: जी।
1: और बस तो बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोती, कई बार यह मन की धूल भी धो जाती है।
0: और सोनाली, भारतीय संगीत में और भारतीय साहित्य में बारिश का तो अपना अलग ही स्थान है। संस्कृत के जो महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर लोकगीतों और हिंदी फिल्मों तक बरसात को प्रेम, विरह, मिलन और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्योंकि सोनाली, जब बारिश का मौसम आता है, भाई हम इस समय तो दिल्ली में थोड़ा सा चाह रहे हैं बारिश हो जाती, इस गर्मी से छुटकारा मिल जाता, बल्कि हम कहेंगे पूरे देश में, हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में संतुलित बारिश हो, सब जगह पानी पहुंचे और खुशहाली और अन्न धन का भंडार भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और हम तो ये कहेंगे जब बारिश चलती है तो हवाएं ही बदल जाती है। कैसी हवाएं हो जाती है सोनाली?
1: वो हो जाती है ऐसी

0: अभी आप सुन रहे हैं ये फिल्म है अनोखा दान और इसमें आप सुन रहे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। रश्मि जी घड़ी इजाज़त नहीं देती कि बातों को और आगे बढ़ाएं, लेकिन चलते चलते आपको बता दें हमारे साथ इदरीस सैफी जी जुड़े हैं और सब उन्हें सैफी नाम से बुलाते हैं।
1: हाँ, और इसी के साथ लेते हैं इजाज़त रश्मि कुकरेती को
0: और सोनाली को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन

0: कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: उन्होंने दुनिया कहा के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The comprehensive economic

0: And trade agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh today inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of the Prime Minister Narendra Modi. He said it is now an international event, and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. He said this year over 60,000 buyers and exhibitors from 130 countries are participating in the event. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are also benefiting the textile sector.
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं।
2: Buyers from around 130 countries are participating in the event. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India now has free trade agreements with 56 countries. We are competing in global markets with a large number of exhibitors taking part. We are delighted that nearly 90% of the participants are MSMEs. We hope this year's expo will witness a record-breaking turnout of buyers.
1: इस बार जो बायर आ रहे हैं, ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
0: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity-building and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. Iran responded with attacks targeting Bahrain, Jordan and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. In men's cricket, the Indian team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series in Birmingham at 3:30 p.m. today. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US, tonight. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. Domestic equity benchmark indices traded lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं संदेश।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1 लाख दो बन जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से, जहां आपको सुनहरे दौर की उन फिल्मों से हम रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। आज की महफिल सजी है एक ऐसी कालजयी फिल्म के नाम जिसकी कहानी, संगीत, अदाकारी और नजाकत आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1960 में प्रदर्शित एक खूबसूरत सी फिल्म की। ये फिल्म गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। निर्माता थे गुरुदत्त, निर्देशन किया था एम सादिक ने और कहानी और पटकथा समीर उस्मानी ने लिखी थी। संगीत दिया था रवि ने और गीतों को अपनी शायरी से सजाया था शकील बदायूनी ने। तो इसके बाद तो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि आज हम 1960 की कौन सी फिल्म आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। इस गीत को सुनने के बाद तो आपका अंदाजा 100% पक्का हो जाएगा और फिर आप हमारे साथ अपने जवाब के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे तक जवाब पहुंचाने का जो तरीका है वो मेल है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आपको बता दूं, आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूँ।

जी हाँ, आज हम आपको लेके चलेंगे 1960 के उस दौर में जब पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने ना केवल लोगों का दिल जीता बल्कि गुरुदत्त साहब की किस्मत भी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म चौधरी का चांद। इस फिल्म में ऐसा जादू था कि वो जादू आज भी बरकरार है। 1959 में गुरुदत्त ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म कागज़ के फूल बनाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। गुरुदत्त साहब इस कदर टूट गए थे कि वो भारी कर्ज में डूब गए। उनका प्रोडक्शन हाउस भी बंद होने की कगार पर आ गया। तब उनके गहरे दोस्त और लेखक अबरार अलवी ने उन्हें सलाह दी कि गंभीर सिनेमा से हटकर एक ऐसी कमर्शियल फिल्म बनाई जाए जो आम जनता को पसंद आए। अबरार अलवी ने लखनऊ के बैकड्रॉप में एक मुस्लिम शोषण ड्रामे की कहानी लिखी। गुरुदत्त ने जोखिम उठाया और फिल्म बनने का रास्ता साफ हो गया। कागज़ के फूल की नाकामी से गुरुदत्त इतने हताश थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब वो अपनी अगली फिल्म बनाएंगे तो उसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन खुद नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने चौधरी के चांद के निर्देशन की कमान अपने दोस्त अबरार अलवी को सौंप दी। ये अबरार अलवी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म के कुछ गाने और मुख्य दृश्यों में गुरुदत्त की अनोखी जो अनूठी निर्देशन शैली है, जो एक टच था उनका, वो साफ दिखाई देता है। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म की जान यानी सबसे खूबसूरत सा गीत, और आपको बताएंगे कि वो गीत भी किस तरीके से बना था।

महताब हो। चौहद्वी का चांद हो आज भी प्यार का सबसे बड़ा तराना माना जाता है। संगीतकार रवि ने जब इस गाने की धुन बनाई तो शकील बदायूनी ने के लिखे शब्दों को अमर करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को चुना गया। शकील साहब ने वहीदा रहमान की खूबसूरती को बयां करने के लिए ऐसे शब्द लिखे जो इतिहास बन गए। सिनेमेटोग्राफर बी के मूर्ति ने इस गाने को जिस तरीके से शूट किया वो कमाल था। और असल में ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन इस टाइटल ट्रैक को टेक्निकलर यानी कि रंगीन में शूट किया गया था। और जब सिनेमा घरों में अचानक स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हुई और वहीदा रहमान की लाल जोड़े में खूबसूरत सी जो छवि थी वो नजर आई तो दर्शक दीवाने हो गए थे।

फिल्म चौधरी का चांद। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों गुरुदत्त और रहमान की इर्द गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक ही लड़की वहीदा रहमान से प्यार कर बैठे हैं। फिल्म में रहमान ने नवाब का किरदार निभाया है। पर्दे पर दोनों दोस्तों के बीच का त्याग और गलतफहमियों को इतनी शिद्दत से दिखाया गया कि थिएटर में बैठे लोग रो पड़े थे। जॉनी वॉकर की कॉमेडी ने फिल्म में हल्के फुल्के पल जोड़े, जिससे फिल्म का संतुलन बेहतरीन बन गया था। चौधरी का चांद रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई है फिल्म, और इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि गुरुदत्त साहब का सारा कर्ज उतर गया और उनका प्रोडक्शन हाउस फिर से फलने फूलने लगा। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत पसंद किया गया। चौधरी का चांद सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये गुरुदत्त की कला, अबरार अलवी की दोस्ती और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का वो गुलदस्ता थी जिसकी खुशबू आज 60 से भी ज्यादा सालों बाद वैसी ही बनी हुई है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

इस फिल्म में एस डी बर्मन के स्थान पर फिल्म की जो संगीत देने की जिम्मेदारी थी वो रवि को दी गई और उन्होंने ऐसा संगीत रचा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और 1960 की सबसे सफल फिल्मों में ये शामिल हुई। चौधरी का चांद केवल एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि लखनऊ की नफाजत, उर्दू अदब, दोस्ती की मिसाल और मधुर संगीत का ऐसा संगम है जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाता है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं, अब उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन जी हैं, लिख रहे हैं कि आज हम फिल्म चौधरी का चांद फिल्म के बारे में जानकारी मिल रही है हमको और हमें अच्छी लग रही है, शुक्रिया आपका। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत संचित प्रथमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं। सोन सिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरनूल गुरलाल, लोहगढ़ ठाकुरवाला गांव से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। अजीत भापसर जी वीरन गांव गुजरात से, प्रमिला भापसर सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं और ढेर सारी जानकारी हमेशा की तरह उन्होंने हमसे साझा की है। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, सार्थक आदर्श हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान जी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी जुड़े हुए हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश, सुबेदार अमर सिंह जी का आया हुआ है और ये संदेश हमारे पास सुनील पाठक कमला जी ने अनारकली बाजार जगराव पंजाब से भेजा है। जीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पोचल कला दुर्ग से हमारे साथ संजय कुमार साहू, सुजाता जी जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुख्य अनीता, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं। सुरेश राठौर मंजुला गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं। और भी संदेश है, उनको भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत जो आप सभी का इंतजार कर रहा है।

जालंधर से ज्योति मन्नत और भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस पिंकी लवली जी हमारे साथ हैं।

हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर जी। लिखते हैं कि आज की एक ही फिल्म में चौधरी का चांद की जानकारी और गीत पसंद आ रहे हैं। लखनऊ की सरजमी पर ये बनी है फिल्म है। लखनऊ की शान और शौकत नज़ाकत इस फिल्म में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये संदेश हमारे पास बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत ने नागर कोला जिला राजरन गाँव छत्तीसगढ़ से भेजा है। इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवानगन चंपा जी हमें सुन रहे हैं। और ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा साहिल जी जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हमारे

साथ हैं मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, सनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव जी, कवि, रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से एम एस अब्बासी जी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। बटिंग रोड मंडी डबरवाली से राजेंद्र नारंग अंजू जी जुड़े हुए हैं। ततरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का आया है। बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं और आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया और हमसे भी वो जानकारियाँ शेयर करी जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। कुछ और संदेश भी हम तक पहुँचे हैं। नेहरू चौक पैठन सूरज जाधव अनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालगुरी गोस्वामी हेमलता हिना रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएच नवानकर निर्वला विशाल जी हमें सुन रहे हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले दुखनी सदक जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमें सुन रहे हैं और बबलिश पवार जी ने एक और हमें बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी जी हमें सुन रहे हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आर्दर्श और आलोलिक जी हमें सुन रहे हैं और आप सभी का हम एक बार और दिल से आभार करते हैं और सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

तो ये थी दोस्तों 1960 की वो खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम है चौदहवीं का चांद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म से जुड़ी जानकारी और गीत ज़रूर पसंद आए होंगे, और हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और देख लीजिए इस खूबसूरत सी फिल्म को। फिलहाल अब वक्त मुझे कह रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर आएंगी प्रीति त्यागी, और 3 आपकी और मेरी मुलाकात होगी। जानते हैं प्रोग्राम का नाम क्या है? अब आप समझ गए हैं, मैटिनी मेलोडीज। तो हम फिर मिलेंगे 3, तब तक इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारत

0: जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहदा रुकनियत के लिए फ़िलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दो रियासती हल की एक बार फिर तायीद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुम्बासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के आठ अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें छह भारतीय और दो यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। चार जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वामे मुत्तहदा में फ़िलिस्तीन की मेंबरशिप और दो रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फ़िलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फ़िलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फ़िलिस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी हैं और सेहत, तालीम, सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और आवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरक अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसीशुदा तजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार, मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और आटोकल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% तक टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इससे बरतानिया की मार्केट में भारतीय बरामदात की मुसाबकती सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टेक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल-अक़वामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आज़ाद तजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 100

0: दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़े गए।
1: इफ्तिदाई तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वज़रा और टेक्सटाइल के वज़ीर ममलिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी और बैन अल्कवामी तजारत के शोबों में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप को भी दिखाया जा रहा है। पार्लिमानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोल्ड की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना ज़रूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफ्जान सेहत इदारों को कोल्ड की बीमारी के हर तशखीस शुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर, जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल्कवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल्कवामी सीरीज में शिकस्त के बाद इसे एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आबनाए हुरमुज में हाली हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक्वामी मुत्तहदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ODI में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. New Delhi strongly condemns attack on 2 vessels carrying 30 Indian seafarers in Strait of Hormuz. Says violence disrupting free and safe navigation through international waterways. India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel. comprehensive economic and trade agreement between

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से, और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे हुर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा,

0: इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
4: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने

0: करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही कलाकार और कलाकार जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आज की तारीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई। आज वो दिन है जो कि भारतीय सिनेमा और संगीत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसकी चमक कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज सुरों के उस मसीहा की पैदाइश का दिन है जिन्होंने अपनी धुनों से न जाने कितने दिलों को धड़कना सिखाया। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ को, जिन्हें हम सभी अदब और मोहब्बत से सिर्फ रोशन के नाम से जानते हैं। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, हम भी क्या मिसाल दें रोशन साहब के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुजरे दौर के फिल्मी गलियारों में रोशन साहब को रागों के राजा के रूप में माना जाता था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि

शास्त्रीय संगीत में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि जब वो किसी राग को फिल्मी गीत में ढालते थे तो सीधे सुर दिल में उतर जाते थे। ऐसे संगीत बनाने वाले रोशन साहब का जन्म 14 जुलाई सन 1917 को गुजरावाला में हुआ था और दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से, जी हाँ, यही आकाशवाणी में उन्होंने एक मैंडोलिन और इसराज वादक के रूप में अपने सफर की थी शुरुआत। और यही दिल्ली की आबोहवा उनके संगीत में हमेशा रची बसी रही। लेकिन दिल्ली से उन्होंने सफर किया मुंबई तक का। मुंबई में जाकर वहाँ पर उनका जो शुरुआत थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और तब कहीं बहुत से स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्म मिली 1950 में आई फिल्म बावरे नैन, और इस फिल्म ने उनकी तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्म में राज कपूर और गीता बाली के ऊपर फिल्माया गया एक खूबसूरत सा गीत जो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गाने ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि ये जो नया सितारा बॉलीवुड के आसमान पे चमकने के लिए आया है वो ऐसे ही नहीं है बल्कि चमकेगा और बहुत खूब चमकेगा। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म बावरे नैन से ये गीत गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ में।

जी दोस्तों, रोशन साहब के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी। उनके गानों में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का शोर नहीं होता था, बल्कि उनके गानों में अल्फाजों और गायकी को निखरने का पूरा मौका मिलता था। और शायद यही वजह थी कि साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और शैलेंद्र जैसे महान गीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने जो जादू जगाया वो वाकई में बेमिसाल था। और भाई दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं रोशन साहब की, तो कव्वालियों को हम कैसे भूल सकते हैं। फिल्म बरसात की रात की वो खूबसूरत सी कव्वाली आज भी इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन कव्वालियों में शामिल है। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, सुधा मल्होत्रा और लता मंगेशकर की आवाज़ को उन्होंने जिस तरह से एक धागे में पिराया, वो उस काम सिर्फ और सिर्फ रोशन साहब ही कर सकते थे। तो लीजिए सुनते हैं वो खूबसूरत सी कव्वाली।

भाई वाह, वाकई में मज़ा आ गया इस कव्वाली को सुन के। क्या खूब कव्वाली! और शायद यही वजह है कि रोशन साहब को शुरू कर राजा कहा जाता था। क्या खूब कव्वाली की! वैसे रोशन साहब के से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा आपको बताती हूँ। बात है साल सन 1964 की। फिल्म बन रही थी चित्रलेखा, और इस फिल्म में एक गाना था जिसे राग यमन कल्याण पर बनाना था। रोशन साहब ने धुन बनाई और साहिर साहब से ने बोल लिखे थे, और वो बोल थे मन रे तू काहे ना धीर धरे। और जब ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो खुद रफ़ी साहब ने कहा था कि रोशन भाई इस गाने ने मुझे अमर बना दिया। और वाकई में उनकी कही हुई ये बात सच हुई, क्योंकि BBC के एक सर्वे में इस गीत को हिंदी सिनेमा का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सॉन्ग चुना गया। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

वाकई में अमर गीत अमर संगीत। आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं सुरों के राजा रोशन साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोतागण जिनके संदेश भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफरा नाज, बेबी चाहत के साथ। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हमसे शेयर की रोशन साहब के बारे में। लिखते हैं कि रोशन साहब ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत और सरोद की शिक्षा ली और अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें मुंबई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उनके शुरुआती गीत बहुत शानदार थे, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें लंबे समय तक पहचान नहीं मिल पाई थी। और भी बहुत सी जानकारी उन्होंने हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु हमारे साथ जुड़े हैं। इशक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। वर्डिन खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं। अजीत जी लिखते हैं कि जिस तरह से शोले फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी कमाल कर गई, उसी तरह इंद्रप्रस्थ पर अंजू पांडे जी और प्रीति त्यागी जी की जोड़ी कमाल प्रस्तुति का अंदाज। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। खुश ये अगला संदेश भेजा है गुरमीत सिंह मीता जी ने साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल जी का। अगला संदेश हम तक आया है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांश जी का, ग्राम ममना, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है उसको पहुंचाने वाले अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से। ये संदेश हम तक आया चिरमिरी कुरासी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे के साथ। गाँव की टोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन।

मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मरहरा दरवाज़ा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी। अगला संदेश हम तक आया है, उसको सुनवा उसको भेजने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। दोस्तों अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो ने। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी जी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से और हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से। दोस्तों ये थे वो संदेश जो हम तक पहुंचे, और भी बहुत से संदेश आए लेकिन अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, वाकया खूब कव्वाली रही। वाकई में जी चाहता है कि वक्त थोड़ा सा और आगे खिसके और हम इस कार्यक्रम को और लंबा करें, लेकिन वक्त की जो सुइयां हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और आज इस सफ़र में हमने रोशन साहब के बारे में कुछ बातें की। वाकई में रोशन साहब के करियर का वो सुनहरा दौर था 60 का दशक, जहाँ उन्होंने एक से बढ़कर एक नायाब हीरे तराशे। ताजमहल, आरती, बहू बेगम, भीगी रात, ममता और अनूठा बंधन, कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनमें से ताजमहल के सदाबहार संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1959 में, महज 50 साल की उम्र में, जब वो अपने करियर के शिखर पे थे, एक दिल के दौरे ने इस महान फनकार को हमसे छीन लिया और वो बहुत जल्द चले गए। लेकिन संगीत की जो विरासत वो छोड़ के गए हैं वो वाकई में अमर है। और आज उनकी इस विरासत को उनके बेटे राकेश रोशन, मशहूर संगीतकार राजेश रोशन और उनके पोते ऋतिक रोशन पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रोशन साहब, आपकी बनाई हुई जो उनकी धुनें थी वो धुनें हमारे सुनेपन की साथी हैं। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के वक्त, जाते वक्त, मैं वही खूबसूरत सा गीत छोड़े जाऊंगी जो वाकई में हमारे जो दिल की भावनाएं हैं जो हैं उन सबको पूरी तरह से खरा उतरता है। जाते जाते उस अमर कृति की, इस प्यारी सी कृति को छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए। तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, और जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम लेकर आ रही हैं आप सभी की पसंदीदा अंजू पांडे। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

धन्यवाद प्रीति, और खूबसूरत सी प्रस्तुति आपने दी, और आप भी हमारे श्रोताओं के दिल में हमेशा ऐसी ही समाई हुई रहेंगी। फिलहाल वक्त हो गया है, दोपहर के 3 बज चुके हैं, और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है, मैजिनी मेलोडीज। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे उस दौर को जिसे भारतीय सिनेमा का गोल्डन एरा यानी कि 60 का दशक कहा जाता है। वो दौर जब रोमांस हवाओं में था, शायरी गानों में थी और गानों में एक रूह हुआ करती थी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का सफ़र बेहद हसीन होने वाला है, और आप भी इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बन सकते हैं। जानते हैं ना कैसे? मेल के ज़रिए। मेल भेजने के लिए आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप और मैं एक ही सफ़र में लंबे उस फिल्मी सफ़र तक चलेंगे जहाँ पर खुशियाँ हैं, रोमांस है, प्रेम है और खूबसूरत से नगमे हैं।

सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 की उस ऐतिहासिक फिल्म से जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी। जी हाँ, बात कर रहे हैं के आसिफ की शाहकार फिल्म मुगले आजम। इस फिल्म का एक गाना तो आप सबको याद ही होगा, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक गाने को फिल्माने के लिए डायरेक्टर के आसिफ ने जो शीश महल सेट बनवाया था उसे बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। बेल्जियम से कांच मंगवाया गया। जब शूटिंग शुरू हुई तो कैमरामैन परेशान हो गए क्योंकि लाइट कांच से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के लेंस पर पड़ रही थी। आखिरकार बहुत सूझबूझ के साथ शीशों पर हल्का मोम यानी कि वैक्स लगाकर उस चमचमाते गाने को शूट किया गया। तो फिलहाल इस गीत को तो नहीं सुनवा रहे, लेकिन लता जी की आवाज़ में ही इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत है, उसको आप सुनिएगा।

60 का दशक और उसमें हम देव आनंद साहब की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। उनका स्टाइल और उनका रोमांस, तभी तो वो स्टाइल और रोमांस के किंग हुआ करते थे। उनकी सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और पफ वाले बालों का स्टाइल हर लड़का कॉपी करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव साहब के काले कोच के दीवाने इस कदर थे कि कोट को भी बीच में आना पड़ गया। हुआ ये था जनाब कि जब देव आनंद साहब काला कोच पहनकर सड़कों पे निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखने के लिए छतों से कूदने को तैयार हो जाती थी। दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से कोर्ट ने देव आनंद साहब को सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। है ना कमाल का क्रिस। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म काला पानी से ये खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, आपने भी इस गीत पर ठुमके मारी लिए। अब बात करते हैं 60 के दशक की डाकुओं पर बनने वाली फिल्मों के लिए, क्योंकि ये साल डाकुओं पर बनाने जो फिल्में थी उनके लिए भी जाना जाता है। 1963 में एक फिल्म आई थी मुझे जीने दो, इसमें सुनील दत्त साहब ने एक डाकू का किरदार निभाया था। और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसकी शूटिंग किसी स्टूडियो में नहीं हुई थी बल्कि चंबल के असली बिहड़ों, जो घाटी होती है चंबल की, वहाँ हुई थी। और उस वक्त चंबल में असली डाकुओं का आतंक था। सुनील दत्त साहब ने खुद असली डाकुओं के गैंग से मुलाकात की, उनसे परमिशन ली और उनकी मौजूदगी में शूटिंग की। डाकू भी सुनील दत्त के इस हौसले और व्यवहार से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान फिल्म की क्रू की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। तो बात जब इसी फिल्म की है तो सुनते हैं इसी फिल्म से ये गोल्डन सॉन्ग।

बीच धारे जो जाओ तो जय पे करो उस पारी।

आपको कोहिनूर फिल्म याद है और इस फिल्म का गाना जो आज भी शास्त्रीय संगीत के शौकीनों की पहली पसंद है, मधुबन में राधिका नाचे रे। इस गाने में दिलीप साहब को स्क्रीन पर सितार बजाना था। कोई भी आम एक्टर होता तो बस उंगलियां हिलाकर एक्टिंग कर देता, लेकिन दिलीप साहब तो दिलीप साहब थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक मैं सच में सितार बजाना नहीं सीख जाता, मैं ये गाना शूट नहीं करूँगा। उन्होंने पूरे 6 महीने तक उस्ताद हलीफ जफर खान साहब से बकायदा सितार बजाने की ट्रेनिंग ली। नतीजा, जब आप आज भी ये गाना देखते हैं तो उनकी उंगलियां सितार के तारों पर बिल्कुल सही जगह बैठती हैं। चलिए सुनते हैं कोहिनूर फिल्म से ही ये रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत।

तो दोस्तों, रात तो अभी नहीं है, काफी वक्त है रात होने में, लेकिन ये गीत इतना खूबसूरत था कि हमारा दिल करा कि इस गीत को हम आप तक पहुंचा दें। और अब हम बात करते हैं फिल्म संगम की, राज कपूर साहब की फिल्म संगम। और

राज कपूर साहब पर फिल्माया एक खूबसूरत सा गीत। उस गीत को फिल्माने के लिए एक खूबसूरत और शांत झील के पास शूटिंग करनी थी। जब राज साहब लोकेशन पर पहुंचे तो पता चला कि वो झील एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की है और वहां पानी बहुत कम था। राज कपूर साहब ने जिद पकड़ ली कि शूटिंग तो यहीं होगी। उन्होंने आनन फानन में कई सारे पानी के टैंकर मंगवाए और पूरी झील को पानी से भर दिया ताकि स्क्रीन पर वो भव्यता दिख सके जो चाहिए थी। फिल्म मेकिंग के लिए ऐसा जुनून सिर्फ राज कपूर साहब में ही हो सकता था। सुनते हैं उन्हीं की ये खूबसूरत सी फिल्म संगम से ये गीत।

आपके संदेश भी हम तक पहुंचे हैं और उनको हम शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल जी गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना आशी, चैतन्य मस्कीन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशु खुराना जी हमारे साथ हैं। तुलसी मस्कीन जी का एक और संदेश पहुँचा है और अजीत भापसर जी हमारे साथ, प्रमिला भापसर जी के साथ बीरनगांव गुजरात से जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास सुदर्शन मुखी जी का, अनिता मुखी, सिमरन जी का शांतिनगर सोनीपत से आया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदाबासी निगत, परवीन श्रीनवास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। संजय निंगे, नमन निंगे, अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम दिल से आभार करते हैं। एक और संदेश है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया करते हैं। और अब इस प्रोग्राम का एक खूबसूरत सा अंतिम गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं और फिर अगली मुलाकात में फिर से वही खूबसूरत से गीतों की एक माला हम दोबारा लेकर आएंगे। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सो।

0: उजो दरूं। तो सामईन कराम, इसी के मद्देनज़र आज ये उर्दू मजलिस की मजलिस को ख्वातीन की बज़्म से हमने सजाई है और आपके ज़ौक के मुताबिक हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन। सामईन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ख्वातीन के अफकार व ख्यालात से रोशनास कराते हैं। सामईन, हमारी ज़िंदगी में जो भी रंग है, बकौल अल्लामा इकबाल के वजूद ज़न से ही है। अदब व सकाफत के साथ साथ अमली दुनिया में हमारी ख्वातीन क्या सोचती हैं और ज़माने को किस नज़रिए से देखती हैं और साथ ही अपने एहसासात को किस तरह पेश करती हैं, जिससे हमारा अदब और समाज असर अंदाज होता है। तो सामईन, इसी के मद्देनज़र आज हमने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है जिसका मौजू है तालीम याफ्ता ख्वातीन और हमारा मुआशरा। तो लीजिए समात कीजिए।
1: आदाब सामईन, आज हमारा मौजू गुफ्तगु है तालीम याफ्ता ख्वातीन और हमारा मुआशरा। हमारे साथ आज जो लोग हमारे पैनल में मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मैं डॉक्टर उज़्मा अज़हर, मेरा ताल्लुक समाजियात के शोबे से है, मेरा ताल्लुक अकेडमिक से है। और हमारे साथ हैं दरख्शा मंसूर साहिबा जो कि एजुकेटर है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, संतोष सागर साहिबा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हैं, और नाजिया मोहम्मद साहिबा जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का मौजू है तालीम याफ्ता ख्वातीन और हमारा माशरा, सो हमने पहले ही ख्वातीन के साथ तालीम को उनके साथ जोड़ के उनको एक तरह की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे दी है। जब हम तालीम की बात करते हैं, तालीम दो तरह से हम उसको देख सकते हैं, एक नॉलेज को लेके होता है और एक होता है स्किल को लेके। दरख्शा साहिबा कुछ कहें
2: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और जी, ख्वातीन का पढ़ना और उनका आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रोग्रेसिव वुमेन है वो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंस की, तो जो इकोनॉमिक है वो भी हमारी बढ़ती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे फील्ड्स में जब हम बढ़ते हैं तो हमारी जो एक इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम होते हैं, तो उससे भी प्रोग्रेसिव वुमेन आगे बढ़ती हैं, और उसके साथ साथ माशरा भी बहुत आगे जाता है। और एक जब औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ एक औरत ही नहीं होती है, उसके साथ चार पीढ़ियां पढ़ती हैं
1: जी।
2: और जब एक मर्द पढ़ता है तो वो सिर्फ मर्द ही पढ़ता है। उसके बाद जैसे मैं बात करूंगी कि रीडिफाइनिंग एंड सोसाइटल नॉर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स भी हैं आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे हिंदुस्तान में, जो नॉर्म्स को लेकर अभी भी लड़कियां बहुत पीछे हैं। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ स्टिग्मा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान को एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लड़की को पढ़ना बहुत जरूरी है।
1: जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात की। और अब मैं संतोष साहिबा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप इस सब इश्यूज को कैसे देखती हैं उसके बारे में बताइए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, जैसे मैं आजकल की सोसाइटी को देखती हूँ, आज के दौर को देखती हूँ, और आज से पीछे 20-30 साल पहले का जो दौर था
1: जी,
3: वो ख्वातीन के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव था
1: जी,
3: बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था, मतलब बहुत ओल्ड, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत बाउंडेशन होती थी, और अगर पढ़ लिख भी लेती थी तो उसमें भी कौन सा फील्ड चूज़ करना है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते थे कि ये ख्वातीन के लिए अच्छा नहीं है या ये ख्वातीन के लिए अच्छा है। तो अब जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आया है, उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अब जो ख्वातीन है उन्होंने अपने हिस्से की फ़ाइट करके खुद को एजुकेट किया है, जो बहुत अच्छी बात है, और अपने हुकूक के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अब पढ़ लिख रही हैं, और अब कहीं ना कहीं सोसाइटी इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। हालांकि बहुत सारी जगह अभी भी बहुत वो पुराने ख्यालों के लोग हैं, बट फिर भी मैंने देखा है कि अभी भी ख्वातीन जो है अब जो है वो काफ़ी पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं, जैसे एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट भी बन रही हैं, मीडिया लाइन में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और ना सिर्फ वो एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी हैं, अगर उनकी पर्सनल लाइफ भी उठाकर देखी जाए तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही एक मजा हुआ जिसको कहते हैं कि एक पिलर है
1: जी।
3: वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करती हैं, अच्छा गाइड करती हैं, और ना वो सिर्फ एक हार्ड वर्कर, मैंने कहूँगी एक स्मार्ट वर्कर हैं, जैसे पहले लेडीज का क्या होता था, उनको बड़ी मेहनत करनी होती थी कि कुछ

0: काम करना है, मार्केट जाना है, मार्केट से लेना है. अब उनको सारा, क्योंकि ये कहाँ से आया, एजुकेशन से आया कि अगर कुछ ग्रोसरी मंगाने, कुछ मंगाने वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, राइड बुक करनी है ऑनलाइन बुक कर सकती हैं. तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आया, और जितने भी ये तालीम याफ्ता है बहुत ही हमारे आने वाले मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही मैं कहूंगी कि हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक एक बैकबोन है.
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इतिहास की नज़र से अगर हम देखें तो औरतों ने कितनी तरक्की की है। जहाँ से हम देखते हैं कि औरतों को सिर्फ घर तक महदूद रखा जाता था, या फिर अगर हम गांव की बात करें तो उनको सिर्फ गांव का जो भी माहौल था वहाँ पे सिर्फ घर तक थी, या फिर थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी में हेल्प करती थी। उसके अलावा जब हमने देखा कि पूरी की पूरी तहरीक की है औरतों ने,
0: जी,
1: वेमेन्स मूवमेंट रही है, जिसका हमने देखा
0: राइट,
1: कि एक तरह से उसका फल औरतों को मिला। सो जो जद्दोजहद रही है उसको लेके तालीम लेना औरतों के लिए आसान नहीं था। सो इस पे अब मैं नाजिया साहिबा से बात करूंगी कि नाजिया जी, आप इसको कैसे देखती हैं?
2: हाँ मैम, डेफिनेटली मैं इस चीज़ से इतफाक़ रखती हूँ जो मैम ने कहा, वो बहुत अच्छा कहा है। और मेरी जो सोच है वो ये है कि आज के दौर में अगर तालीम याफ्ता औरत की डेफिनेशन देखी जाए तो एक तालीम याफ्ता औरत सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं है। तालीम
0: जी
2: याफ्ता औरत होने का जो मतलब है वो अच्छी सलाहियत, फैसले लेने की सलाहियत होनी चाहिए, और वो पूरी सोसाइटी को लेकर के चलती है। मलाला यूसुफजई का एक कोट था, वन पेन वन चाइल्ड वन बुक वन टीचर कैन चेंज वर्ल्ड। तो मैं इस चीज़ को
0: जी
2: बहुत अच्छे से मानती हूँ और मैं बहुत इसको लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन हाँ, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा
1: जी। नाजिया साहिबा, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हमारे समाज के लिए औरतों की तालीम, औरतें 50% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। सो अगर आधी पॉपुलेशन तालीम याफ्ता नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। सो इस पे एज एन एजुकेटर, एज ए स्कूल टीचर, आप दरख्शा साहिबा कैसे देखती हैं?
3: अगर जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत टाइम पहले अगर हम देखें तो बहुत रूढ़िवाद था, लेकिन आज वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि घर से निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क था औरत के
0: जी
3: लिए,
0: जी
3: जो
0: बिल्कुल
3: आज ख़त्म हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक जैसे कि कन्वेंस की प्रॉब्लम। पहले हम अगर बात करें तो इतनी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी कि लड़कियां स्कूल आ जाएं। सबसे पहला बड़ा टास्क ये है कि भाई लड़कियां स्कूल आ जाएं। जैसे कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल की भी बात करूं कि गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज निकालती है, बहुत ज़्यादा आयुष्मान पॉलिसीज हैं जैसे, तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हम कराते हैं। स्टिल बच्चे स्टेशनरी से लेके किताब से लेके उनकी हर एक फैसिलिटी, इवन मेडिसिन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट,
0: जी
3: लेकिन और सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, उसके बावजूद भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोग नहीं भेजते। जैसे राष्ट्र नीति की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्र नीति में यही है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है हमें, तो एक्टिविटी बेस्ड में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं ताकि बच्चे सीखें। और बहुत खर्चा गवर्नमेंट हमारे मतलब बहुत ज़्यादा कर रही है किताबों पर, उनके स्कूल के सारी मेडिसिन से लेके किताबों से लेके हर एक चीज़ स्कूल को जो प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट स्कूल को, वो सरकार से मिलती है। तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट कुछ घर ऐसे हैं जो आज भी लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
1: जी,
3: तो
1: जी सही बात कही आपने, एज एन एजुकेटर संतोष साहिबा आप इसको
0: जी
1: कैसे देखते
0: आपने
1: हैं?
0: बिल्कुल सही कहा। जैसे सरकार ने बहुत सारी स्कीम लाया है
1: हाँ
0: ख्वातीन के लिए स्पेशली,
1: जी
0: जैसे कुछ कुछ स्कूल में एडमिशन फीस
1: जी
0: जो होती है वो ख्वातीन के लिए थोड़ी कम होती है लड़कों से, और कहीं कहीं सिलेक्शन प्रोसेस जब जॉब्स में होता है तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ कुछ रियायतें उन्होंने दी हैं, कुछ कुछ रिजर्वेशन ख्वातीन के लिए दिया है कि उनकी एज थोड़ा ज़्यादा भी होगी तो वो उसको सेलेक्ट करेंगे कहीं कहीं। तो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी पॉलिसीज हमारे मतलब ख्वातीन के हकूक के लिए बना रही है, जो बॉयज़ के लिए तो है ही लेकिन उनसे थोड़ा सा और बढ़ के ख्वातीन के लिए भी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये एक अच्छी बात है।
2: मैम, मैं रक्षा मैम की बात से बहुत इतफाक़ रखती हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है और मैम ने भी सही कहा है, लेकिन मेरा मानना यह है, सवाल यह है कि लड़कियों की एजुकेशन तो है ही, बट क्या हमारा समाज उनकी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर पा रहा है? मुद्दा ये है क्योंकि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, क्योंकि अभी तक चाहे हम मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही, बट हमारे माशरे में बहुत सारी जगह ऐसा है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियों की एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर हम बात करें बहुत ऊपर लेवल पे जाने की, तो मुझे लगता है कि लड़कियां 12th पास कर जाएं वही बहुत बड़ी बात है। रक्षा मैडम ने एक बात कही थी कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट सबसे बड़ा फियर ही ये है कि एक तो सोसाइटी एंड सेकेंड थिंग अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारी जगह पर पुरानी सोच लोगों की जो हम अभी तक नहीं बदल पाए मैम।
1: जी नाजिया साहिबा, आपने बहुत अच्छे जो दो तीन पॉइंट्स कहे उसमें मैं ये कहूँगी कि जो आप कह रही हैं उससे मैं पूरी तरह से इतफाक करती हूँ कि जब औरत बाहर निकलती है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ जो एजुकेटेड औरत है, जो तालीम याफ्ता औरत है, उसको क्या क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
0: जी मैम, मैं आप ही की बात पर बोलूँगी कि जितनी भी तालीम याफ्ता ख्वातीन हैं उनको जब वो बड़ी पोजीशन पर भी जाती हैं बहुत एजुकेट होने के बाद, तो उनको बहुत सारी जगह पर ऑफिसेस में या घर पे उनको हर किसी न किसी जगह पर उनको उनको लेट डाउन किया जाता है। सॉरी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको बहुत रोका जाता है और उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। बट मैं एक स्टेप पीछे आऊँगी और मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि मैंने खुद और मेरा एक्सपीरियंस भी ये है, क्योंकि लीगल फील्ड में अभी तक जितने भी मैटर्स मैंने किए हैं उसमें हमें ये सच्चाई भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, चाहे वो सास के रूप में देख लें,
3: जी
0: बहन के रूप में देख लें, माँ के रूप में देख लें, आप किसी भी रूप में देखें। मैं ये कह रही हूँ, आपने ये कहा अभी कि उनको मर्दों की तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, मैं ये कह रही हूँ मर्दों के पास बातें कहाँ से आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माँ भर रही होती है, कहीं ना कहीं उनकी भाभी भर रही होती है। बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो हाँ सास का रोल अदा करते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, और बहुत सारी जगह पे मुझे लगता है कि औरत को पहले खुद को भी बदलना चाहिए,
3: जी
0: मर्दों पे तोहमत लगाने की बजाय उनको खुद भी। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि औरतें गलत हैं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन हर जगह भी सही नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई और तालीम याफ्ता होने का मकसद मर्दों से मुकाबला बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हाँ, तालीम का मकसद ही है कि आप अपनी फैमिली की इज्जत करें, पूरी सोसाइटी को, पूरी फैमिली को लेके चलें। तालीम होने का मकसद ही ये है कि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझें।
3: एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी बहुत है
1: जो इसमें हम अंडरलाइंग फैक्टर्स समाज के देखते हैं। सो जो आपने बात कही नाजिया जी और दरख्शां जी, इसमें हम ये देखते हैं कि समाज में अगर डिसीजन मेकिंग पावर औरत के पास आ रही है तो जो उसकी फैमिली है वही उसको कहीं ना कहीं कर्ब करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम तालीम को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि तालीम एक औरत के वकार के लिए, उसकी इज्जत नफ्स के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए इम्पोर्टेंट है।
0: मैम, ये जो हमारे समाज में आपने कहा कि आप डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर जो बात कही, ये बिल्कुल सही कही है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये अगर हम बेस देखें तो हमारा पीछे से चलता आ रहा है। बेस बेस कैसे चलता आ रहा है, यहाँ पे जो बड़ों ने एक सीख चला दी कि नहीं औरत यही करेगी, औरत का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, आदमियों का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, बट आज की कंडीशन हम देखें तो औरत बाहर के भी कर रही है और अंदर के भी कर रही है काम, प्रेशर बहुत ज़्यादा, और उसको प्रूव करने के लिए वो हर कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसको प्रूव करने की कोशिश करती है तो मसला यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा आगे चल रही है, फिर उनकी ईगो पे बात आ जाती है।
1: आज के वक्त पे जब हम देख रहे हैं कि तालीम याफ्ता औरत जब बाहर निकल रही है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमने बात की। आगे हम बात करेंगे कि इनके लिए किस तरह से हम सॉल्यूशन को देखते हैं, तो इस पे लीगल पॉलिसी पे और आगे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप कैसे इसको देखती हैं।
0: उसमें मैम, अगर मैं लीगल पॉइंट की बात करूं तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 है, 14 है, जो इक्वालिटी की बात करता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ये तो एक अलग ही पॉइंट है,
2: लेकिन सोसाइटी को ये समझना भी ज़रूरी है कि हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, और मुझे लगता है सब साथ में मिलकर इस चीज़ को करेंगे,

0: है वो जेंट्स हो या लेडीज हो या फैमिली हो, सबसे मेन चीज़ है एक लड़की की पढ़ाई लिखाई के ऊपर अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो वो आगे चल के भी उसके लिए बेनिफिशियल होता है, और कोई जल्दी से परेशान भी नहीं करता, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो या कहीं भी हो, एनी अदर प्लेस।
1: लेकिन जो ख्वातीन हैं जो एजुकेटेड हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर वो बहुत पढ़ लिख गई हैं या किसी एक डेजिग्नेशन पे हैं तो थोड़ा सा उनमें भी अगर आप देखेंगे डाइवोर्स केस अगर हम देखें तो ज़्यादातर होते हैं तो वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे होती हैं, तो उनमें एक एटीट्यूड क्रिएट होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भूल जाती हैं। उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं भूलना है। पढ़ाई लिखाई का मतलब या आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलो। तो आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए और आगे अपनी पोजीशन को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है समाज में एक।
2: आपकी बात से मैं यहाँ पे इत्तफाक नहीं करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, जो आप कह रही हैं कि फैमिली
1: तो
2: रिस्पॉन्सिबिलिटीज
1: उसको
2: ऑलरेडी।
1: आपको प्रेशर कितना भी हो लेकिन मैनेज करना है ना, इक्वालिटी के साथ मैनेज करना है, फैमिली के साथ मिलके मैनेज करना है कि फैमिली को भी। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर फैमिली में है वो तो चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, राइट?
2: आप
1: तो
2: ही की बात को मैं आगे
1: जी
2: ले
1: जी
2: जाके ये कहूंगी कि
1: जी
2: फैमिलीज की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल औरतें अगर ज्यादा तालीम ले लेती हैं तो अभी शादी के मसले हम देख रहे हैं, एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो कि सिंगल औरतों की है, अगर वो ज्यादा तालीम लेती हैं तो मुआशरा उनको किस तरह से देखता है और उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज फिर उनको एडजस्टमेंट के इश्यूज के साथ खड़ा कर देती है।
3: यहाँ जो ख्वातीन हैं, जो तालीम याफ्ता ख्वातीन हैं, उनको बहुत बैलेंस्ड वे में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ख्वातीन जो पढ़ी लिखी जो ख्वातीन हैं सिर्फ वही सही हैं, या जो कम पढ़े लिखे हैं वो सही नहीं है, या ऐसा भी नहीं होता कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल सही हैं और पढ़ी लिखी वुमेन जो है वो सही नहीं है। यहाँ दोनों ही चीज़ें मिलती हैं देखने को। जैसा आपने ही बोला कि जो अच्छा पढ़ लेती हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पर होती हैं, फिर उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है। तो वही मैं कहूँगी कि एक पढ़ लिख के इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है और एक दूसरी तरफ वाइज होना एक अलग चीज़ है। तो हम जहाँ पढ़ लिख कर इंटेलिजेंट तो हो गए हैं, वहाँ हमें वाइज भी होना ज़रूरी है कि हमें फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपनी जो हमारे जो एक कल्चर है इंडियन कल्चर उसको कैसे मैनेज करना है कि ऐसा ना हो। क्योंकि क्या है कि हम देखिए हमारे पूर्वज जो हमारी बैकग्राउंड रही है, बैकग्राउंड तो यही रहे कि लेडीज़ को तो घर में ही रखा जाता था, चूल्हा चौका बर्तन इन्हीं सब कामों के लिए ना, और पढ़ाई लिखाई उनके लिए नहीं होता था। ठीक है, तो अब जब धीरे धीरे लेडीज़ भी उसी तरह से बाहर निकली, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, नौकरी करना स्टार्ट किया, अच्छी पोजिशन पर जाना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या, वो एक क्योस मच गया। वो एक्सेप्टेंस कहीं आई है कहीं आज भी नहीं आई है। तो वो धीरे धीरे, जब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ लोगों ने आज उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है तो आने वाले टाइम में और एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस हम दोनों को ही, दोनों साइड पर जो लेडीज हैं उनको भी रखना पड़ेगा, जो फैमिलीज और जो सोसाइटी हैं उनको भी रखना पड़ेगा। क्योंकि
1: मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी, मैं उन ख्वातीन की बात कर रही हूँ। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं आज भी अगर आप देखेंगे कि वो जब बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं, तो वो एक निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए आपके लॉज ही हैं या आप अपनी फैमिली में भी रह रहे हो, वो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो तो उठ के काम नहीं कर सकते, तो वो आपको मैनेज करना है, आप मत करो बिकॉज यू डोंट हैव टाइम।
3: उसीलिए मैंने कहा ना कि वो बैलेंस होना जरूरी है,
1: मैनेज करना,
3: उसके लिए आपको समझ रखना जरूरी है। वहां पे आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, वहां आपकी समझ काम आएगी, राइट? कि आपको कैसे वाइज होना है, आपको अपना अपनी एक पर्सनालिटी, अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी जो एजुकेशन है वो भी मेंटेन रखनी है और फैमिली भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि फैमिली को आप छोड़ तो सकते नहीं हो।
1: बिल्कुल,
3: है ना, कि फैमिली को आपने छोड़ दिया और आके आप अकेले जिंदगी जी लोगे, अकेला कोई भी नहीं रह पाता है, इंडिविजुअल कोई भी नहीं रह पाता है। तो सबको साथ लेके भी चलना है और अपनी भी प्रोग्रेस और कंट्री की प्रोग्रेस, फैमिली की प्रोग्रेस भी हमें साथ में ध्यान में रखनी है।
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही संतोष साहिबा, के हमें समाज को साथ लेके चलना है। समाज को साथ लेके चलने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी औरत की नहीं है या आदमी की नहीं है, बल्कि दोनों को साथ में काम करने की जरूरत है।
0: समाज हमारी फैमिली से ही बनता है, परिवारों से ही बनता है, और परिवार जो होता है उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना है, बच्चों को

0: जिस तरह से बेटों को सपोर्ट किया जाता है उस तरीके से बेटियों को भी सपोर्ट करें, प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी करने की बजाय छोटी कर दें, क्योंकि घर में जब बड़े होते हैं अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे, वो डिसीजन मेकर नहीं होंगे, स्ट्रांग डिसीजन मेकर, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।
1: जब हम तालीम याफ्ता औरतों की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के वक्त में बात करें तो हमारी जो राष्ट्रपति साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आती हैं, ट्राइबल ख़वातीन को वो रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर हमारे पॉलिटिक्स में हम बहुत सारी औरतों की प्रेजेंस देखते हैं, मीडिया में बहुत सारी औरतें हैं, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी, सानिया मिर्ज़ा एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम साइट कर सकते हैं, जिन्होंने समाज में औरतों का नाम काफ़ी आगे पहुंचाया है और समाज में एज एग्जाम्पल उनको एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी देखा जाता है, जिन्होंने औरतों के लिए एक तरह का पाथ ब्रेकिंग रास्ता बनाया है।
0: आपने द्रौपदी मैम का नाम लिया है जो हमारी राष्ट्रपति हैं, और भी हैं, बहुत सारी हैं, कल्पना चावला है, और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे सेट होते हैं। लेकिन अगर आप उनका पास्ट उठा के देखें और बैकग्राउंड उठा के देखें तो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी फैमिली थी, और फैमिली में मदर फादर सभी थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली के साथ, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की के लिए आगे
1: जी
0: बढ़ने के लिए,
1: जी
0: क्योंकि जब वो सोसाइटी में जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको उसे नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को भूलना भी पड़ता है, और उन सब में सपोर्ट कौन करता है? फैमिली करती है। फैमिली में भी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, भाभी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की को आगे बढ़ने के लिए।
2: बड़े बड़े एग्जाम्पल अभी मैम ने लिए, राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू और इंदिरा गांधी जी थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, किरण बेदी जी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, तो इन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की होगी अपने टाइम पर, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है ज़्यादा, उनके बैकग्राउंड, उनके जो स्टार्टिंग से जो होगा, क्रिटिसिज्म उन्होंने भी सहा, बहुत सहा होगा डेफिनेटली, बट फिर भी मैं, मुझे लगता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए
1: बिल्कुल
2: और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि यही हमारे मुल्क को इन सारी जो रूढ़िवादिता, जो पुराने ख्याल, जो एक जो माइंडसेट, जो फिक्स माइंडसेट था लोगों का, इवन वो मैं सिर्फ उसमें मर्दों की बात नहीं कहूंगी, उसमें ख्वातीन भी हैं वैसे ही शामिल, तो वो तभी निकल पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब पुरानी पीढ़ी जाती भी रहेगी कुछ कुछ, और नए नए लोग आते रहेंगे। जैसे मैं बात करूं अभी जो एक जेंजी जनरेशन पर ही, जो आजकल के मैंने देखा है कि इतनी अच्छी बात है उनकी कि वो इतने एम्बिशियस हैं कि वो उनको क्या फायदा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आगे, वो उसी में ही लगे हैं, वो देखते नहीं कि क्या कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हम भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ तो नहीं रहे ना, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मेरा एक यही मैसेज है ख्वातीन के लिए कि आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, और बहुत वाइजली, ना कि एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट या एक एटीट्यूड शो करते हुए, किसी को शो डाउन करना हमारा मकसद नहीं है, बट आगे बढ़ना और समझदारी के साथ आगे बढ़ना, और ये पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ हम पढ़ लिख कर ही ऐसा कर सकते हैं
1: पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ।
2: जी
1: जी हमने बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया कि समाज के लिए औरत की तालीम कितनी ज़रूरी है और कितनी आगे लेके जा सकती है समाज को। इसके अलावा जो हमने बात की कि समाज में तालीम का रोल अपने आप में सोशल चेंज को लेके है, उसको अवेयरनेस के साथ आता है, सो वो लोगों में भी एक जनरेशनल चेंज आ रहा है। जैसे आपने बात की, सोशल मीडिया ने औरतों को काफ़ी आवाज़ दी है, काफ़ी एजेंसी दी है। तालीम के साथ हम ये भी देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और एक जनरल अवेयरनेस आती है इश्यूज को लेके, समाज को लेके, और अपने आसपास के माहौल को लेके। सो ये माहौल को, समाज को, फैमिली को, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं एक तालीम याफ्ता औरत बांधती भी है और उनको आगे लेकर भी जाती है। हमारा डिस्कशन दरख्शां साहिबा, संतोष साहिबा और नाजिया साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत दिलचस्प बातें हम लोगों ने यहाँ पे मौजूए गुफ्तगु रही, और अब हम यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। सामईन शुक्रिया।
3: सामईन कराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे बज़्म ख्वातीन के तहत ये खूबसूरत मुज़ाकरा, मौजू था तालीम याफ्ता ख्वातीन और हमारा मुआशरा। शुराका थी नाजिया सैफी, संतोष सागर, दरक्षा मंसूर,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 4 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने हॉर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हुआ है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में

0: तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में देश की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में प्रस्तावित भंडारण नीति और निजी उद्यमी गारंटी PEG योजना की समीक्षा की गई। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 20 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India has expressed deep concern that the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al Bahia, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. Meanwhile, India today summoned Iranian Deputy Chief of Mission Mohammad Javed Husseini following an Iranian missile strike on the 2 UAE-flagged oil tankers in the Strait of Hormuz, which killed 1 Indian national and injured several others. The Comprehensive Economic Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of the tariff lines in the UK market

0: It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling the trade to $100 billion by 2030. More from our correspondent.
1: With the agreement coming into force, Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariffs on several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, SMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Indian service providers in IT and IT-enabled services, financial services, healthcare, education, engineering, telecommunications, and consultancy services will benefit from enhanced market access and greater regulatory certainty. With Dipendra Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi today chaired a review meeting to strengthen the country's food grain storage ecosystem in New Delhi. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed the proposed storage policy and the Private Entrepreneurs Guarantee Scheme. He said the discussions focused on addressing emerging challenges in food grain management, including regional storage imbalances, surplus stock management, optimization of storage capacity, and the need to revise storage norms in line with the current procurement trends. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7 lower today. The Sensex fell 561 points to close at 77,055. The Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In cricket, England were 37 for no loss in 8 overs against India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, England's skipper Harry Brooke won the toss and opted to bat first. And in FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:10 हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। थाना सेक्टर 115 नोएडा कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से जो पहली जानकारी हम तक पहुंची है, गुमशुदा का नाम है एंजल, पुत्री स्वर्गीय आज़ाद। ये 31 मई 2026 से सेक्टर 115 सारेखा नोएडा से लापता है। 16 वर्षीय एंजल, जिनके शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फीट। इनसे संबंधित कोई भी सूचना या जानकारी आप देते हैं तो ₹10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनके बारे में कोई भी सूचना या जानकारी आपको मिले तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 115 नोएडा कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी हमें कोतवाली दनकौर गौतम बुद्ध नगर से मिली है। गुमशुदा का नाम है खुशी। खुशी पुत्री अजय, ये 16 वर्षीय महिला है और इनका शरीर इकहरा, आंख नाक कान औसत, लंबा चेहरा, रंगे हुआ है, कद 5 फुट 3 इंच है, सिर के बाल छोटे छोटे हैं। इनसे संबंधित सूचना देने वाले को ₹2,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। खुशी जो कि 22 मई 2026 को सुबह 7:30 घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और ये अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। इनसे संबंधित जानकारी या सूचना आपके पास है तो आप संपर्क करें मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दनकौर गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना हमें जीआरपी दादरी थाना अलीगढ़ जंक्शन से मिली है। गुमशुदा का नाम करण कुमार, पुत्र अनिल कुमार। ये दादरी रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ की ओर यात्रा कर रहे थे 19 जून 2026 को, तब से ये लापता हैं। करण कुमार जो कि 26 वर्षीय पुरुष हैं, शरीर 5 फुट

5 इंच इनकी हाइट है, शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने सफ़ेद शर्ट, ब्लू जीन्स और सफ़ेद जूते पहने हुए हैं। इनसे संबंधित जानकारी या सूचना आपके पास हो तो आप संपर्क करें चौधरी प्रभार चौकी प्रभारी GRP दादरी थाना अलीगढ़। अगली सूचना हमारे पास थाना कासना ग्रेटर नोएडा से आई है। गुमशुदा का नाम कुमकुम, पुत्री संजय। 20 वर्षीय महिला कुमकुम, जिनका कद 5 फुट, शरीर के बनावट सामान्य है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास है तो आप सूचना दे सकते हैं उपनिरीक्षक थाना कासना ग्रेटर नोएडा। थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से अगली जो जानकारी है वो बेबी के बारे में है। बेबी 18 वर्षीय महिला है, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, कद 5 फुट 1 इंच है। ये अपने घर से नौकरी करने गई थी एक स्टील कंपनी में और उसके बाद ये वापस नहीं आई हैं। इनसे संबंधित जानकारी या सूचना आप रखते हैं, आपने कहीं बेबी को देखा है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से ही अगली जो सूचना है वो विजय के बारे में है। विजय पुत्र कृष्ण कोरी, ये 28 वर्षीय युवक है, आँख नाक कान औसत, कद 5 फुट 7 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी आप अगर देना चाहते हैं तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। विजय के साथ प्रियांशु 9 माह का एक बच्चा भी साथ में है। थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी रितिका कुमारी के बारे में है, जो कि पुत्री राकेश कुमार हैं। ये लक्ष्मण चौहान के किराए के मकान में रहते हैं। इनका शिव मंदिर के पास बरोला में इनका पता है। 19 वर्षीय रितिका, इकहरा शरीर, कद 4 फुट 10 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। तो ये थी जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। हम आकाशवाणी की इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: कथक के घुंघरू, एक बनारसी साड़ी, इंस्टाग्राम पर वायरल होता कोई फोक डांस। आपको भी लगता है ना कि इंडियन कल्चर फिर से कूल बन रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं मानसी अलोंग विद माय को होस्ट गौतमी।
1: म्यूजिक, सोच और संस्कृति के इस सफर में जुड़े हर लिसनर को हमारा हार्दिक नमस्कार।
0: अगले कुछ पलों तक हम रहेंगे आपके साथ इस यूथ ओरिएंटेड शो युववाणी में आकाशवाणी पर, लेकर एक ऐसा सफर जहां हर कला एक गजब ही कहानी कहती है। इनफैक्ट हम सब अपने कल्चर को किसी ना किसी तरह से रोज जीते हैं, कभी म्यूजिक के जरिए, कभी डांस, कभी पेंटिंग्स, तो कभी किसी पुरानी कहानी या इतिहास के जरिए। लेकिन अगर बात सिर्फ किसी एक आर्ट फॉर्म को चूज करने की हो तो आप क्या चुनेंगे?
1: तभी तो मानसी, एक दिलचस्प सवाल के साथ हम पहुंचे लोगों के बीच, जानने के लिए यूथ का पर्सनल फेवरेट कल्चरल ट्रेंड आखिर है क्या। इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे सेगमेंट आज की बात में, फॉलोड बाय मन से माइक्रोफोन, जहां आपको सुनाएंगे एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी अबाउट अ लेजेंडरी आर्टिस्ट।
0: और आर्ट एंड कल्चर की बात हो और भारत के एस्थेटिक लिबास की बात कैसे ना हो, इसी पर हो

0: होगा हमारा आज का क्विक बज एक एनालिटिकल टच के साथ, और फिर होगा हमारा वीकली सेगमेंट जहां हम बात करेंगे भारत के एक अनमोल विरासत की और थोड़ा और करीब से जानने की उसे कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर की, एक ऐसे मंदिर के बारे में जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की एवरग्रीन ट्रेडिशन को समझाता भी है।
1: मानसी, अभी आपने ट्रेंड्स की बात की तो मुझे याद आया कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को वर्ल्ड ओवर पॉपुलराइज करने के लिए एक इंडियन क्रिएटर जानवी सिंह को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड से नवाजा है।
0: Isn't that interesting? जिसका मतलब ये हुआ कि कल्चर और हेरिटेज टेक्सटाइल मार्केट में काफी खूबसूरत ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। और गौतमी, इंडियन कल्चर तो यूथ का भी पर्सनल फेवरेट है, इसीलिए इंडियन एस्थेटिक्स पर करेंगे आज बातचीत, क्योंकि देसी वाइब्स का अपना अलग ही चार्म होता है। और इसी मूड को और भी वाइब्रेंट बनाने के लिए गिव इट अप फॉर द सॉन्ग।
2: This is something

0: सो वेलकम बैक मानसी, क्या आपको पता है मेरी एक फ्रेंड का कहना है कि रील कल्चर के थ्रू फोक डांसेस का कमबैक काफी इंस्पायरिंग रहा है। अब भारतीय कल्चरल डांस की बात हो और किसी लेजेंड का जिक्र हो जाए तो बात ही बन जाए। मानसी, हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी से पहले मुझे एक ख्याल आया कि कहानियों के बीच एक खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं कुछ दरारें।
1: गौतमी, आपकी इस बात पर मैं एक ही बात कहूंगी कि हर दरारें फक्त टूटने की कहानी नहीं होती, हर खामोशी अधूरी जुबानी नहीं होती, कुछ जख्म ही रोशनी का रास्ता बन जाते हैं और हर कमी किसी अंजाम की निशानी नहीं होती।
0: वाह, क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ पेश है हमारा अगला गाना रफू फ्रॉम द मूवी तुम्हारी सुलू।

0: Welcome back everyone to Yuvvani. You are listening to Gautami
1: and Mansi. और हमारे next segment के लिए हम एक ऐसी personality के बारे में बात करेंगे जिनकी life किसी blockbuster movie से कम नहीं है.
0: Heartbreak tested her spirit. A life-altering car accident threatened her dreams. But she transformed every setback into strength, emerging as one of India's most celebrated classical dancers.
1: जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनल मानसिंह की, द पद्म विभूषण, द ओडिसी एंड भरतनाट्यम लेजेंड, जिनकी लाइफ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. इनका जन्म 1944 मुंबई में हुआ.

0: वेलकम बैक लिसनर्स। चलिए अब बढ़ते हैं सोनल मानसिंह जी की कहानी के अगले पहलू की ओर। तो गौतमी, लगभग 5-6 साल तक सोनल मानसिंह दिल्ली में होमलेस रही, रिसेंटली डाइवोर्स्ड, नॉट इवन ओन गुरु हर हेल्प्ड हर, पीपल कॉल हर नेम्स बट शी डिडंट गिव अप। उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच फिर से पूरी मेहनत के साथ शुरुआत की और फाइनली 1977 में उनका खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, द सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, वेयर शी ट्रेन्ड द नेक्स्ट जनरेशन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एनीवन्स परमिशन टू मैटर।
1: अमेजिंग। और पता है मानसी, एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जो आज से तो मेरा लाइफ मंत्र बन चुकी है। शी सेड दैट द करेज ऑफ कन्विक्शन योर गट्स टेल यू एंड नॉट योर हार्ट।
0: Amazing, Gautami, what a lady. Fast forward, Sangeet Natak Academy Award and also Padma Bhushan in 1992 as its youngest recipient at that time. Then, in 2003, Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor, making her only second women dancer in history to receive it.
1: And she didn't stop being outspoken either. She has always been politically active and voiced her opinions on variety of social issues. She was also a renowned member of the Rajya Sabha.
0: So the learning here is that plans can break, but you don't have to. इनसे हमें सीखने को मिलता है कि resilience is a lifestyle and not a phase.
1: Well said, Mansi. So, to the people out there, next time something knocks you down, remember

0: to Dr. Sonal Mansingh, spine injured. Doctor saying it's over and she said, cute story, and got back up anyways.
1: तो गौतमी उनके खुद के ही शब्दों में foolish courage. That is literally what she called herself. And maybe थोड़ा सा foolish courage is what we all need.
0: बिल्कुल. Now, as we move forward towards our next segment, I would like to quote a verse from the Natya Shastra, which Dr. Sonal quoted herself in a recent interview, advising the youth to live a life of rus, of flavor, for we aren't born for a nirus life. She said, Yato hastas tato drishti, yato drishtis tato manaha, yato manas tato bhavo tato rasaha.
1: To Gautami. इंडियन साड़ीज का कमबैक काफ़ी अडोरेबल रहा है. आज की जेनरेशन उन्हें कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ कैरी कर रही है और ट्रेडिशंस का एक नया टच भी तो दे रही है. तो गौतमी साड़ीज पर करेंगे हमारा आज का क्विक बज.
0: क्यों नहीं, साड़ीज आर एवरीवेयर. अगर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया भी स्क्रॉल किया हो तो शायद आपने भी नोटिस किया होगा, सिर्फ फेस्टिवल्स या वेडिंग में ही नहीं बल्कि यंग क्रिएटर्स के कंटेंट में भी साड़ीज काफी पॉपुलर हैं. और इसीलिए आज का क्विक बस इज अबाउट द रिटर्न ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, क्योंकि इंडियन इज द न्यू कूल. और देखा जा रहा है कि इंडियन फैशन और कल्चर एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ रहे हैं और इस मूवमेंट को और भी खास बना रहे हैं क्रिएटर्स, जो इंडियन टेक्सटाइल्स और ट्रेडिशंस को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. इनमें से ही एक है जानवी सिंह, जिन्हें रिसेंटली हेरिटेज आइकन अवार्ड से ऑनर भी किया गया है बाय आवर वेरी ओन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर प्रमोटिंग इंडियाज टेक्सटाइल हेरिटेज थ्रू हर कॉन्टेंट. चलिए करते हैं और इंटरेस्टिंग बातें इंडियन एस्थेटिक लिबास पे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग हो जाए.

0: क्या बात है। इस एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद मुझे याद आया कि हम बात कर रहे थे साड़ियों के बारे में। वैसे गौतमी, एज पर हिस्टोरियंस, साड़ीज का ओरिजिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ था और इसके जिक्र में हजारों सालों पुराने एंशिएंट टेक्स्ट भी मिलते हैं।
1: वेट वेट वेट, मतलब जो आउटफिट आज भी इतनी रेलिवेंट है उसकी जर्नी इतनी पुरानी है?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं। और सबसे फैसिनेटिंग बात तो ये है कि साड़ीज कभी भी एक स्टाइल की लिमिटेड नहीं रही। टाइम के साथ फैब्रिक्स बदले, वीविंग टेक्निक्स बदली और इवॉल्व हुआ हर रीजन अपना यूनिक टच के साथ। इसीलिए बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी, बांधनी या पटोला सब एक दूसरे से इतने डिफरेंट लगते हैं। हर साड़ी सिर्फ एक फैब्रिक नहीं बल्कि अपने रीजन की आइडेंटिटी, क्राफ्टमैनशिप और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और शायद गौतमी इसी वजह से इतने सालों बाद भी साड़ियाँ कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं हुई।
1: यानी बस उसे पहनने का अंदाज बदला गया और हर जनरेशन ने उसे अपना बना लिया। और शायद इसी में इंडियन एस्थेटिक्स की असली खूबसूरती छुपी हुई है। ट्रेडिशन स्टेज द सेम, येट एक्सप्रेशन कीप्स इवॉल्विंग।
0: 100% गौतमी। और जब हम बात करते हैं साड़ीज की, तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फैशन, हम बात कर रहे हैं सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्टमैनशिप की, स्किल वीवर्स की और उन ट्रेडिशंस की जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ती आ रही हैं। शायद इसी वजह से गौतमी हर साड़ी सिर्फ पहनी नहीं जाती बल्कि पर्सनालिटी का एस्पेक्ट बनकर निखर जाती है।
1: और मानसी, पता है आज की जनरेशन की सबसे अच्छी बात तो ये है दैट दे आर एम्ब्रेसिंग दीज ट्रेडिशंस इन देयर ओन स्टाइल। हेरिटेज को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और उसे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रीडिफाइन भी कर रहे हैं।
0: तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन एस्थेटिक्स सिर्फ कमबैक नहीं कर रहे, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफस्टाइल और सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका भी तो बन रहे हैं। तो अब इतनी एस्थेटिक बात जो हमने कर ली है गौतमी, इसके बाद एक अमेजिंग सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है।

0: एंड वी आर बैक। तो कल्चर का नया ट्रेंड सिर्फ फैशन एस्थेटिक्स तक लिमिटेड कहाँ रह गया है? आजकल लोग वृंदावन टेम्पल्स की मेस्मराइजिंग विजिट्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और टेम्पल आर्किटेक्चर से भी काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। तो इसी पर चलते हैं हमारे आज के वीकली सेगमेंट में, वेयर वी विल बी अनलॉकिंग टेम्पल्स का आर्किटेक्चर एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पिच के साथ।
1: स्पीकिंग ऑफ अनलॉकिंग, मानसी, क्या आपको पता है कि केरला के तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा दरवाज़ा है जो 1880 से खोला ही नहीं गया है? इसलिए नहीं कि पीपल हैव लॉस्ट इट्स कीज, बट क्योंकि उस लॉक के पीछे की कहानी काफ़ी मिस्टीरियस है।
0: हाँ गौतमी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप मैं चाहूँगी कि आप मुझे और बताएं।
1: ओके, वेल, ये दरवाज़ा केरला के एक टेम्पल में है, अ टेम्पल विच इज़ नो कैप रिचर देन मैनी नेशंस टूडे।
0: जी हाँ बिल्कुल लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो कुछ देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा रिच है। तिरुवनंतपुरम केरला, इस सिटी के ठीक बीचों बीच ये विशाल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जिसका आर्किटेक्चर ही आपको स्टार स्ट्रक करने के लिए काफ़ी है।
1: 100% इस मंदिर के आर्किटेक्चर में हमें तमिल द्रविडियन और लोकल चेरा केरला स्टाइल का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। मंदिर के एंट्रेंस पे ही स्टैंड्स अ 7-story गोपुरम, विच इज द जायंट एंट्रेंस टावर, जिस पर ऊपर से नीचे तक विजयनगर स्टाइल में कार्विंग की गई है।
0: अच्छा गौतमी, मैंने सुना है कि इस टेम्पल में कुछ म्यूजिकल पिलर्स जैसा भी है, डस समथिंग इवन लाइक दैट एग्जिस्ट?
1: बिल्कुल, नाउ यू हर्ड राइट। देते हैं चलिए आगे की डिटेल्स अपने लिसनर्स को, बट इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कहीं मेस्मराइज्ड। हाँ तो हम कहाँ थे? ओके, तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर एक हॉल है कॉल्ड द कुलशेखर मंडपम, विच इज मेड अप ऑफ अराउंड 24 ग्रेनाइट पिलर्स। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से चार पिलर्स मानसी आर योर म्यूजिकल पिलर्स, मतलब अगर इन चार पिलर्स को हम टैप करें तो इनमें से अलग अलग म्यूजिकल नोट्स की आवाज आती है।
1: यानी पत्थरों से संगीत, क्या बात है, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर टुगेदर।
0: पता है इस टेम्पल की सबसे अनोखी बात तो इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट प्लेसेस जहाँ एक दरवाजे से दर्शन होते हैं, इस टेम्पल में भगवान विष्णु के दर्शन थ्री विंडोज के थ्रू होते हैं। अब पहली विंडो से केवल शेषनाग, मुख, हाथ और अंदर एक छोटी सी शिवलिंग के दर्शन होते हैं, वाइल लॉर्ड ब्रह्म कैन बी सीन थ्रू द मिडल विंडो सिटिंग ऑन अ लोटस और पद्म इमर्जिंग फ्रॉम द आइडल्स नेवल। एक्चुअली यही कारण है कि टेम्पल को पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बुलाते हैं। एंड फाइनली थर्ड विंडो से विष्णु के चरण के दर्शन होते हैं।
1: वाओ गौतमी, आई वाज थिंकिंग कि टेम्पल्स कुड बी दिस कूल।
0: मानसी चीजें तो कूल अब होंगी। सो इन 2011 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स टू ओपन अप द टेम्पल्स अंडरग्राउंड वॉल्ट्स। वहाँ सेवरल वॉल्ट्स हैं लेबल्ड ए थ्रू एफ प्लस टू मोर जो बाद में मिले गए थे।
1: और इन वॉल्ट्स में एक्चुअली था क्या?
0: ट्रेजर, गोल्ड कॉइन्स, डायमंड स्टडेड क्राउन्स, एंशिएंट ज्वेलरी, स्टैचूज एंड बहुत कुछ। सालों पुराना खजाना जो किंग्स, रॉयल फैमिलीज, मर्चेंट्स एक्सेट्रा ने डोनेट किया होगा। अब उस समय बैंक्स तो हुआ नहीं करते थे, तो वॉर्स और इन्वेजन्स के समय रॉयल फैमिलीज ने अपना सारा ट्रेजर इस टेम्पल में रखवा दिया था।
1: लेकिन गौतमी, जैसा कि आपने बताया कि 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट्स ए टू एफ खुलवाए थे, तो व्हाट अबाउट वॉल्ट बी?
0: मानसी वॉल्ट बी ही तो टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग लोर्स में से एक है। अब ये वॉल्ट का दरवाजा 1880 से खोला ही नहीं गया है। इवन इन 2011 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कमिटी कुड हायर लॉकस्मिथ्स और फोर्स द डोर ओपन, द ट्रावनकोर रॉयल फैमिली, द हिस्टोरियन कस्टोडियंस ऑफ द टेम्पल, ऑब्टेन्ड एन इंजंक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू हॉल्ट एनी फर्दर अटेम्प्ट्स। एंड ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी अ सिंपल मेटल गेट, लेकिन इस पर दो कोबराज एनग्रेव्ड हैं। मान्यता है कि इसे सिर्फ एक विशेष मंत्र के द्वारा खोला जा सकता है। कहते हैं अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है।
1: यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉक दरवाजे पर लगा है जो कि अपने आप में एक स्पिरिचुअल लॉक भी है।
0: एग्जैक्टली। अब इसके आसपास की कहानियां काफी वाइल्ड हैं, स्टोरीज ऑफ पीपल रनिंग इनटू मिसफॉर्च्यून हु ट्राइड टू ओपन द लॉक फोर्सफुली। अब मानसी देखो, ये तो सारी किस्से कहानियां ही हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास की गई हैं। क्या सच क्या झूठ ये तो हिस्ट्री ही जानती है।
1: ट्रू फैक्ट यही है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर की ऑटोनॉमी ट्रावनकोर को रॉयल फैमिली के रूप में सौंप दी।

0: हम बहुत जल्द लौटेंगे एक नए टॉपिक, नए सॉन्ग्स और नए कॉन्वर्सेशंस के साथ।
1: तब तक के लिए लाइफ को थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और ढेर सारी स्माइल्स के साथ एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आपके साथ मानसी।
0: और मैं हूँ गौतमी। आप कहीं मत जाइएगा, सुनिए ये सॉन्ग एंड स्टे ट्यून्ड इन ओनली ऑन आकाशवाणी टिल वी मीट अगेन।
1: गुड बाय, नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्य चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह विश्व भर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब

0: शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। यह घटना कल रात कोहाट जिले के बाहरी इलाके में स्थित मालिंगिन गांव में हुई। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
3: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks which we condemn must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
2: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. Railways Minister Ashwini Vaishnav has announced a major policy reform that allows fertilizers to be transported in specially designed containers instead of traditional covered box wagons. Briefing media in New Delhi today on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav also announced a major reform in fly ash transportation, shifting movement from open railway wagons to specially designed containers.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:10 हुए हैं, वक्त हुआ है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोकरंजनी सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सांझ जले ढले, जब दीप जले और लोकरंजनी में लोक गीत बजे तो शाम सुहानी लगती है, जैसे कोई मधुर कहानी लगती है।
1: बिल्कुल, भारत अपनी विविध संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इन्हीं अमूल्य धरोहरों में एक है लोक गीत। तो आइए आज आनंद लेते हैं सबसे पहले कलाकार इंद्रवीर तेवतिया से इस लोकगीत का।
0: जी,

0: तो साथियों, फुलवारी का अपना ही महत्व होता है और फुलवारी के विषय में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे परिवार की फुलवारी होती है और खुशियों की फुलवारी होती है और वास्तविक फुलवारी तो होती ही है।
1: बिल्कुल, फुलवारी का जो अर्थ होता है वो अपने आप में बहुत अनूठा होता है, और जो ये हमारा कार्यक्रम है लोक रंजनी, ये भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि हम चुने हुए बहुत ही सुंदर लोक संगीत, भजन, उपदेश, रागनी लेकर के आते हैं।
0: जी,
1: तो
0: एक तरीके से शीतल कहें कि हमारा कार्यक्रम जो है वो शीतल कार्यक्रम है। शीतल इसलिए है कि गर्मी की तपिश से निजात के लिए छाया चाहिए और काया को शीतल जल की माया चाहिए।
1: क्या बात है। तो चलिए सुनते हैं अगले कलाकार को, पुष्पा गोसाई से सुनते हैं ये लोकगीत।

0: भाई बात हो रही थी ठंडे पानी की, और भाई गर्मी के इस मौसम में ठंडे पानी का अपना ही आनंद है। और अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थी पुष्पा गोसाई, और जैसा कि आप सभी जानते कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंजनी
1: जी। और साथियों, ये जो जुलाई का महीना होता है, ये पानी का महीना होता है, और पानी की बात ऐसे चलती है कि वो जब आता है तो आवाज़ कर कर के आता है, बिजलियां कड़का कड़का के आता है, सबको धमका के और समझा के आता है।
0: और भाई इतनी गर्मी के बाद तो हर किसी को इस चमकती गरजती बिजली का इंतजार होता है
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं अगले कलाकार को, सुनते हैं तू ही राम और साथी से ये लोकगीत।

0: तो अभी आप सुन रहे थे तू ही राम और साथी से ये लोक संगीत, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आकाश, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, लीजिए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विजेता चतुर्वेदी।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में।
0: विजेता, आज सबसे पहले बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की। चार बेहतरीन टीमें इस समय सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और सभी को अब इंतजार है उन दो महामुकाबलों का, जिसके बाद फाइनल की दो टीमें पता चलेंगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी वो दो टीमें, अभी वो चार टीमें हैं जो विश्व में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद यहां तक पहुंची हैं। और आज मुकाबला होगा कि पहली फाइनलिस्ट टीम कौन सी है और उसके बाद अगला मुकाबला होगा उससे पता चलेगा कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी है। तो पूरी रिपोर्ट हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

ऐतिहासिक और महारोमांचक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े कवरेज में घड़ी की सुइयां अपनी चाल चल रही हैं और दुनिया की चार सबसे बेहतरीन टीमें फुटबॉल के सबसे बड़े ताज के लिए आमने सामने हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पहले महामुकाबले पर, जहां एक तरफ है एम्बापे की अगुवाई वाली बेदाग फ्रांस तो दूसरी तरफ है युवा सनसनी लामिन यामाल के जोश से भरी स्पैनिश ब्रिगेड। फुटबॉल के यूरोपीय क्लैश में कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या एम्बापे का तूफान स्पेन के मजबूत डिफेंस को भेद पाएगा? यह मैच खेला जाएगा अमेरिका के टेक्सास में स्थित शानदार डालास स्टेडियम में। और अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जो फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टक्कर होगी जुझारू इंग्लैंड से। लियोनेल मेसी के जादुई पास या हैरी केन की सटीक स्ट्राइक, किसका जलवा चलेगा? यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में, जहां फैंस का उत्साह देखने लायक होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें फ्रांस, स्पेन,

0: अर्जेंटीना और इंग्लैंड के पास ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पासा पलट सकते हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन और उनके प्रभाव के आधार पर प्रमुख खिलाड़ियों की सीधी तुलना की जा सकती है। एम्बापे ने फॉरवर्ड और स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हुए 8 गोल किए हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है बेहतरीन गति, खतरनाक ड्रिबलिंग और फ्रांस के अटैक के मुख्य लीडर हैं। वहीं मेसी की बात करें तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अभी तक 8 गोल कर लिए हैं। प्लेमेकर हैं, फॉरवर्ड हैं और जादुई पासिंग, गेम कंट्रोल और अनुभवी कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ जूड बेलिंगहम मिडफील्डर हैं इंग्लैंड के, 6 गोल कर चुके हैं। बॉक्स टू बॉक्स रन, मिडफील्ड पर नियंत्रण और महत्वपूर्ण मौकों पर गोल उन्होंने अपनी टीम के लिए किए हैं। इंग्लैंड के ही हैरी केन मुख्य स्ट्राइकर हैं, 6 गोल वो अभी तक अपनी टीम के लिए कर चुके हैं। क्लिनिकल फिनिशिंग और पेनल्टी बॉक्स में बेहतरीन पोजीशनिंग, ये उनकी खासियत है। लामिन यामाल विंगर हैं, अटैकर हैं, अपनी टीम स्पेन के लिए उन्होंने क्रिएटिविटी के साथ कई सारे अद्भुत गोल कराने में उन्होंने मदद की है। छोटी उम्र में अद्भुत स्किल, विंग से अटैक और फ्रांस के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। पूरा विश्व कप अब एकदम रोमांचक मोड़ पर है। ये सेमीफाइनल तय करेंगे कि 20 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाले फाइनल महामुकाबले में कौन सी दो टीमें इतिहास रचने के लिए उतरेंगी। इस पर हमने बात की जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी और कोच विक्रांत शर्मा से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: इतना मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछा है, फिर भी आज के मैच की बात करते हैं। आज है लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम फ्रांस और 2010 की चैंपियन स्पेन। बड़ा मुश्किल है ये इसका जवाब देना कि कौन जीतेगा, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरे हिसाब से फ्रांस का पलड़ा थोड़ा भारी है आज के मैच में, क्योंकि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे और अभी तक वो 10 गोल डाल चुके हैं लीग स्टेज के अंदर, उन्होंने 10 गोल मारे हैं। उसके बाद वो लोग राउंड ऑफ 32 भी आराम से निकाल के ले गए, राउंड ऑफ 16 में भी वो लोगों ने पुर्तगाल को मारा, और जहां तक मेरे को लगता है फ्रांस का पलड़ा आज के मैच में भारी रहेगा।
0: अगर सर खेलने की शैली की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रांस और स्पेन के बीच जो आज मुकाबला है वो शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला हो सकता है।
1: बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पेन अपने जो आप पहले भी सुनते आते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले टिका टाका फुटबॉल है उनका, वो लोग बॉल को रख के खेलना पसंद करते हैं, और अगर आप देखा जाए तो स्पेन ने पूरे मैच टूर्नामेंट में अभी तक एक ही गोल कंसीड किया है, और फ्रांस की टीम लीग स्टेज में ही 10 गोल मार चुकी है। तो जहां तक मेरे को लगता है ये उनकी डिफेंस और फ्रांस की अटैक लाइन के बीच में अच्छा संघर्ष रहेगा।
0: इसके अलावा सर आज का जो मुकाबला है उसमें खास तौर से निगाहें, जैसे एम्बापे उनके लिए लगातार गोल करते आ रहे हैं फ्रांस के लिए, यदि एम्बापे को रोक लिया जाए तो क्या फ्रांस के पास और खिलाड़ी ऐसे हैं जो गोल कर सके?
1: फ्रांस की टीम में आप किस किस को रोकोगे? आप एम्बापे को मेरे को नहीं लगता कि उसको रोक पाओगे, अगर उसको रोक भी लिया तो आपके पास डेम्बेले है जो कि ऑलरेडी एक हैट्रिक मार चुके हैं इसके अंदर, उसके बाद आपके पास विंग में ओलिस है, मतलब आप जहां भी देखोगे उनके पास बहुत ज्यादा फायर पावर है, किस किस को रोक पाएंगे? मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि स्पेन इतने सारे प्लेयरों को मैच में रोक पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है।
0: इसके अलावा सर जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, क्या लगता है सर इंग्लैंड को अब कहीं ना कहीं सता रहा है कि बहुत सालों में वर्ल्ड कप नहीं जीता?
1: देखो जहाँ तक पिछले अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इंग्लैंड हमेशा मतलब 1966 के बाद आज तक जीत नहीं पाई है। कोशिश वो हर साल करते हैं, हर वर्ल्ड कप में वो कोशिश करते हैं लेकिन तमाम वो चौक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ तक वो पहुंचे हैं अपनी अच्छी मेहनत से पहुंचे हैं। जैसे कि आपने पिछले मैचेज में देखा कि वो लोग हारते हारते मैच भी वो लोग निकाल के लेके चले गए, और सेम ही अर्जेंटीना का भी है। अर्जेंटीना का जहाँ तक मेरे को लगता है कि उनका डिफेंस थोड़ा सा वीक रहेगा, और स्ट्राइक फोर्स में अगर आप मेसी को हटा दोगे तो टीम बड़ी हल्की लगती है, बड़ी एवरेज लगती है। और उसके बाद अर्जेंटीना की टीम भी देखो दो मैच वो लोग एक्स्ट्रा टाइम में निकाल के लेके आए हैं, तो वो मैच भी बड़ा टफ रहेगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना, और पुरानी राइवलरी है 86 से चलती आ रही है, तो बहुत टफ मैच रहेंगे दोनों।
0: तो कुल मिलाकर सर अगर बात करें दो फाइनलिस्ट, आपकी निगाह से एक खेल की शैली, रणनीति और खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया है अभी तक, उसके आधार पर कौन सी दो टीमें आपको लगता है कि बेहतरीन है और फाइनल में होनी चाहिए?
1: मेरे हिसाब से तो फ्रांस एक आएगी, और क्योंकि मैं हमेशा अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो चाहूंगा अर्जेंटीना आए, लेकिन अर्जेंटीना का आना मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रांस और इंग्लैंड।
0: फुटबॉल के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के सामने अपना मुकाबला खेल रही है। हालांकि T20 मुकाबले में हम अच्छा नहीं खेले थे और बहुत ही खराब तरीके से भारतीय टीम T20 सीरीज हार गई। एक भी मुकाबला हम जीत नहीं पाए थे। 5 T20 मुकाबलों की सीरीज थी और हम उसमें एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे। 4 हार और 1 ड्रॉ, वर्षा बाधित मुकाबले में 1 ड्रॉ हुआ था। लेकिन उसके बाद अब एक दिवसीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और बेहतरीन शुरुआत हम कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, क्योंकि इंग्लैंड को आज जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत साबित हुआ। क्यों गलत साबित हुआ विजेता? क्योंकि इंग्लैंड को लगातार झटके लगते रहे। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार ने गेंदबाजी की शुरुआत की और जैकब बैथेल को केवल 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर गुरनूर बरार ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जो रूट हालांकि बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बैन डकेट को भी गुरनूर बरार ने 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। और उसके बाद हेनरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने केवल 1 रन पे आउट किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जॉस बटलर को 5 रन पर आउट कर दिया। सैम करन से उम्मीद थी कि शायद वो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। और उसके बाद केएल राहुल के हाथों कैच होने के बाद विल जैक्स भी पवेलियन जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय विजेता ये है कि 122 रन हो चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के, और अभी केवल 26 ओवर हैं का खेल हुआ है, 24 ओवर का खेल बाकी है। और जिस तरह से अभी तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी हुई है तो लगता ये है कि आज का ये मुकाबला बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी इंग्लैंड की टीम, और भारत के लिए शायद आसान होगा इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि यदि बड़ा स्कोर नहीं बनेगा तो भारतीय टीम के लिए आसानी से इस मुकाबले को जीतने की राह बनेगी। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब प्लेइंग 11 में कई सारे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं,
2: उनके नाम जुड़ चुके हैं,
0: और वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी टीम में है लेकिन यहाँ पर वो कप्तान नहीं है, कप्तान शुभमन गिल हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही फॉर्मेट बदला सूरत हाल भी बदल गया।
2: बिल्कुल, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आज तो परचम लहराई जाए हमारे देश का,
0: क्योंकि हमारे जो ये खिलाड़ी हैं ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बस एक कभी कभी वो समय आता है जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत अच्छी क्रिकेट भारतीय टीम खेलती है और उसी का कहीं ना कहीं अभी तक प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया है, जो इंग्लैंड को 26 ओवर्स के बाद 122 रन पर 6 खिलाड़ी उनके आउट कर चुके हैं। अब क्रिकेट की बातों को देते हैं विराम और बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, और कॉमनवेल्थ गेम्स में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और हम लगातार अपने श्रोताओं को कॉमनवेल्थ गेम्स में होने वाले अलग अलग खेलों के बारे में बताते हैं। और आज हमारी सहयोगी विजेता ने खास तौर से आपके लिए रेडियो रिपोर्ट तैयार की है वेट लिफ्टिंग की, आइए सुनते हैं।
2: दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक फिर लौट आया है, जहां करोड़ों लोगों की निगाहें होंगी अपने अपने देश के खिलाड़ियों पर। सवाल सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि देश का मान बढ़ाने का है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक शहर ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस संस्करण में लगभग 10 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग, जूडो और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताएं होंगी। भारत भी एक मजबूत दल के साथ इन खेलों में उतर रहा है और कई खेलों में पदक जीतने की उम्मीद है। कॉमनवेल्थ

26 केवल खेलों का आयोजन नहीं बल्कि खेल भावना, मित्रता और देशों के बीच एकता का उत्सव भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारत अपने पदकों की झोली में कितनी नई सफलताएं जोड़ पाता है। लेकिन भारत की नजर जिस खेल पर सबसे ज्यादा टिकी होगी वो है वेट लिफ्टिंग, और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम वेट लिफ्टिंग के बारे में ही विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये वही खेल है जिसने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली पदकों से भरी है। लोहे उठाने वाले ये खिलाड़ी जब मंच पर उतरते हैं तो सिर्फ वजन नहीं उठाते बल्कि अपने कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का भार भी उठाते हैं। हर लिफ्ट के साथ उनकी मांसपेशियां ही नहीं, उनका हौसला भी अपनी नई ऊंचाइयां छूता है। पसीने की हर बूंद वर्षों की तपस्या की कहानी कहती है। जब बारबेल सिर के ऊपर उठती है तो उसके साथ करोड़ों भारतीयों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। वेटलिफ्टिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास की परीक्षा है। यहाँ जीत उसी की होती है जो दर्द से दोस्ती कर ले और हार से सीख ले और हर बार पहले से ऊंचा उठने का हौसला रखे। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने बार बार साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया का सबसे भारी वजन भी हल्का पड़ जाता है। याद कीजिए जब कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचा था, जब कुंजा रानी देवी ने देश का मान बढ़ाया था, और फिर आई मीराबाई चानू जिन्होंने अपनी मुस्कान और अपनी ताकत से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। अब एक बार फिर वही कहानी नए अध्याय के साथ लिखे जाने को तैयार है। भारत में अगर वेटलिफ्टिंग के इतिहास की बात करें तो 1935 में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना की गई थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक और 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने हिस्सा लेना शुरू किया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में खाशबा जादव ने कुश्ती में पदक जीता था, लेकिन उसी दौर में भारोत्तोलक दंडा मामूदी राजगोपाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाई थी। 1990 का दशक भारतीय भारोत्तोलनों के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ, विशेषकर महिलाओं के खेल में आने के बाद। कुंजा रानी देवी, भारतीय महिला भारोत्तोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है इन्हें। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कई रजत पदक जीते और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दबदबा कायम किया। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी। इस घटना ने देश में महिला भारोत्तोलन की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। 21वीं सदी में भारत के पास विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और एथलीट आए जिन्होंने दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया। सतीश शिवलिंगम और के संजीत चानू, इन्होंने 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस खेल का पावर हाउस बनाए रखा। मीराबाई चानू आधुनिक भारतीय भारोत्तोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने 2017 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने सिल्वर पदक जीतकर कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनने का गौरव हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन भारत के लिए तीसरा सबसे सफल खेल है। भारत ने इन खेलों में अब तक 133 पदक जीते हैं जिनमें 40 से अधिक स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम की अगुवाई ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू करेंगी। दो बार की कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन मीराबाई चानू ग्लासगो में महिलाओं की 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। 31 साल की इस भारतीय वेटलिफ्टर ने अपने करियर में 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल जीते हैं। मीराबाई के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेडलिस्ट बिंद्या रानी देवी और हरजिंदर कौर भी होंगी जो क्रमशः महिलाओं की 58 किलोग्राम और 69 किलोग्राम की कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। दोनों ने 4 साल पहले बर्मिंगम में सिल्वर मेडल जीते थे। पुरुषों में पिछले एडिशन के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवप्रीत सिंह 110 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। ऋषिकांत सिंह 60 किलोग्राम, अजय बाबू 79 किलोग्राम और दिलबाग सिंह 94 किलोग्राम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इस बार वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 16 स्पर्धाएं होंगी।

0: हर लिफ्ट, हर कोशिश, हर किलो वजन खिलाड़ियों के सपने और देश की उम्मीदों का इम्तिहान होगा। भारत ने अपनी मजबूत टीम मैदान में उतारी है। खिलाड़ी लंबे समय से राष्ट्रीय शिविर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाया है। हालांकि राह इतनी आसान नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, मलेशिया और मेजबान स्कॉटलैंड के खिलाड़ी भी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। यहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्निक, धैर्य और मानसिक मजबूती भी जीत तय करेगी। वेट लिफ्टिंग की खूबसूरती है, पूरा मुकाबला कभी कभी कुछ ही सेकंड में बदल जाता है। एक सफल लिफ्ट खिलाड़ी को चैंपियन बना देती है और एक छोटी सी गलती वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारतीय खिलाड़ियों की खास बात यह है कि वे दबाव में शानदार प्रदर्शन करना जानते हैं। जब स्टेडियम में सन्नाटा होता है, जब पूरा देश सांसें थामे बैठा होता है, तब यही खिलाड़ी अपने हौसलों से तिरंगे को सबसे ऊंचा पहुंचाते हैं। और वहीं भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल के रवाना होने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ये कहा।
1: आज पूरा भारतीय समाज खेल के प्रति बहुत जागरूक हो चुका है और जिस प्रकार से मैं मानता हूँ कि हमारे देश में किसान का सम्मान होता है, सैनिक का सम्मान होता है, शिक्षक का सम्मान होता है, एक अच्छा व्यापार करने वाले का, उद्यमी का सम्मान होना चाहिए और खिलाड़ी का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी उस युवा शक्ति का प्रतीक है जो एक उभरते भारत में और विकसित भारत तक ले जाने में इस नौजवान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। खेल को जितना हम बढ़ावा देंगे, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और एक आगे के लिए, अपने लिए, जीवन के लिए उनका एक एम्बिशन आता है। करियर चॉइस भी आज खेल के इर्द गिर्द बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं, विकसित हो रही हैं। स्पोर्ट्स इकॉनमी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ओवरऑल इकॉनमी के ढांचे में चाहे स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पोर्ट्स से एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म के लिए जो महत्व रखता है, अलग अलग एरियाज़ में भी आज इंडिया आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की, कोचेस की, खिलाड़ी की, पूरी इकोसिस्टम की है। गवर्नेंस के लेवल पर बहुत व्यापक सुधार भारत सरकार ने किया है, बढ़ावा दिया है। स्पोर्ट्स बिल पारित हुआ जो मुझे लगता है एक मील का पत्थर है। आने वाले समय में हम बड़े इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स इंडिया में होस्ट करेंगे। अभी के लिए जो भारत की टीम जा रही है, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि जीत के वापस लौटेंगे। बहुत ऊंचा मनोबल लेके जा रहे हैं और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है।
0: तो तैयार हो जाइए, ग्लासगो में फिर गूंजेगा भारत का नाम। हर सफल लिफ्ट के साथ बढ़ेगी दिलों की धड़कन, हर पदक के साथ बजेगा राष्ट्रगान और एक बार फिर तिरंगा दुनिया के सामने गर्व से लहराएगा।
2: This is the Commonwealth Games. This is Glasgow 2026.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, जहां पर भारतीय मुक्केबाजों के हौसले की उड़ान इतनी ऊंची है कि कोई भी उनके आगे नहीं टिक पा रहा और लगातार भारतीय मुक्केबाज शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। जकार्ता में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत के 18 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है, जबकि 7 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अंडर 19 में महिला वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंची हैं। और वहीं अंडर 19 पुरुष वर्ग की बात करें तो आदित्य 55 किलोग्राम की कैटेगरी में, शुभम 90

0: किलोग्राम की कैटेगरी में। और अंडर 23 की बात करें तो पुरुष वर्ग में भारत के 3 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश ने फिलीपींस के मुक्केबाज को 5-0 से हराया। 55 किलोग्राम में गंगा ने जापान के खिलाड़ी को 3-2 के करीबी मुकाबले में शिकस्त दी। वहीं 65 किलोग्राम में वंशज ने किर्गिस्तान के मुक्केबाज को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा भारत ने 7 कांस्य पदक भी सुनिश्चित किए हैं। अंडर 23 महिला वर्ग में तनु, प्राची, शिवानी, नैना ने सेमीफाइनल तक का सफर तय कर कांस्य पदक जीते हैं। वहीं अंडर 23 में अगर बात करें तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हितेश, नीरज, ईशान कटारिया ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। कुल मिलाकर भारत के 18 मुक्केबाज अब स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे, जबकि 7 कांस्य पदक के साथ भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी मजबूत दावेदारी साबित की है। तो अब देखना यह होगा कि कल के मुकाबलों में भारतीय महिला दस्ता क्या कहता है, और उसके बाद 16 जुलाई पर सभी की नजर होंगी जब ये मुक्केबाज स्वर्ण पदक के रिंग में उतरेंगे।
1: और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय मुक्केबाजों का, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि यदि भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीते, क्योंकि एक समय था बीजिंग ओलंपिक से पहले का जो एक समय था जब भारतीय मुक्केबाजी दल को ये माना जाता था कि अब ये सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए जाते थे। कभी भी कोई बड़ा मुक्केबाज ऐसा नहीं माना जाता था कि वो पदक जीतेगा। अगर भारतीय मुक्केबाज किसी भी टूर्नामेंट में होते थे तो ये माना जाता था कि शायद आसान मुकाबला मिल गया है। लेकिन जैसे ही विजेंद्र कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता, मुक्केबाजी में एक क्रांति आई, और आज उस क्रांति का असर ये है कि भारतीय मुक्केबाज किसी भी, चाहे मैन हो या वुमेन, किसी भी चैंपियनशिप में वो यदि खेल रहे हैं तो वो पदक के प्रबल दावेदार भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये एक बहुत बड़ा चेंज है भारतीय स्पोर्ट्स की बात करें तो। अब भारतीय खिलाड़ी खेलने नहीं, जीतने जाते हैं। और विजेता, वहीं एक अच्छी खबर थी कि सानिया वस सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन चेन्नई स्थित एशियन स्क्वाश अकेडमी में आयोजित स्क्वाश पीसीए चैलेंजर टूर के महिला सेमीफाइनल में भारतीय चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सानिया वत्स हार गई हैं। सेमीफाइनल में उन्हें मिश्र की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया ओथमान से हार का सामना करना पड़ा। वत्स अंतिम चार में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। टूर्नामेंट में इससे पहले कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। सूरज कुमार चंद, जो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन मिस्र के अदम रोशिदी से हार गए। वहीं दूसरी ओर ओम सेमवाल, जो सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन मलेशिया के जोआचिम चुआव से हार गए। उन्नति त्रिपाठी को आठवीं वरीयता दी गई थी, वो भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जो हमवतन खिलाड़ी सानिया वत्स से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं राधिका सिलन तीसरी वरीयता प्राप्त और पूजा आरती रघु दोनों क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन वहां पर वो हार गईं। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय खिलाड़ी स्क्वाश में भी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, और ये वो खिलाड़ी थे जो अगर एक और जीत दर्ज कर जाते तो निश्चित तौर पर उनके लिए पदक जीतना काफी आसान हो जाता।
0: लेकिन खिलाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो आगे उम्मीदें भी ज्यादा बनती हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी यहाँ भी आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जापान ओपन की। जापान की राजधानी टोक्यो में 14 से 19 जुलाई तक आयोजित डाइहात्सु जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता HSBC WBWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 का हिस्सा है और विश्व रैंकिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रहे हैं। बात करें अपने भारतीय खिलाड़ियों की, तो पुरुष एकल में लक्ष्य सेन, HS प्रणय, किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी, प्रियांशु रजावत और किरण जॉर्ज हैं। महिला एकल की बात करें तो PV सिंधु, उन्नति हुड्डा, अनुपमा उपाध्याय, मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप। पुरुष युगल की अगर जोड़ियों की बात करें तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और MR अर्जुन और अमसा करुणन हरिहरन। महिला युगल की बात करें तो ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद और प्रिया कोनजेंगम श्रुति मिश्रा।

0: मैदान में उतरेंगे। साथ ही आयुष सेठी, वुमेन सिंगल्स की अगर बात करें तो उन्नति हुड्डा का भी मुकाबला होगा। भारतीय चुनौती की बात करें तो उम्मीदें हमें सभी खिलाड़ियों से हैं। जापान ओपन को विश्व बैडमिंटन कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित सुपर 750 टूर्नामेंट में गिना जाता है। यहाँ अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों को न केवल महत्वपूर्ण रैंकिंग दिलाता है बल्कि अगले बड़े आयोजनों में विशेषकर BWF विश्व चैंपियनशिप से बड़े आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तो इन्हीं खबरों के साथ
1: एक खबर और दे देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो खबर ये है कि आज गोवा में बटरफ्लाई UTT सीजन 7 में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद APL पाइपर्स का सामना आज अजय UP पोमेथियंस से होगा और ये बहुत ही शानदार मुकाबला हो सकता है और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला ही हो सकता है। दोस्तों, खेलों की ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि
0: हमें समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है।
1: और मैं अजय तोमर और मेरी सहयोगी विजेता और हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
0: नमस्कार।
2: खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
4: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
3: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
4: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक और या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
3: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: वीरेन भाई, हमारा जो ये कार्यक्रम है ना ग्राम संसार, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अपने भाई बहनों को कई नई जानकारी लेकर बताते हैं और योजनाएं जो है तरह तरह की, उस योजनाओं के बारे में हम बताते हैं। और भाई, जो खास दिन होता है, खास दिवस होता है, उससे भी हम समय समय पर अवगत कराते हैं
1: जी।
0: तो आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देते हैं जो हम सब के लिए उपयोगी है। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपके पास पैसा है, पैसा आपने सुरक्षित रखा है, तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं
1: जी। सही,
0: लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
1: आपने सही कहा, और उस घड़े का नाम है बैंक।
0: सबसे सुरक्षित
1: जी। और उस बैंक में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जो बैंक से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनमें है, एक तो सबसे पहला काम होता है वित्तीय समावेश होता है, वो जो पैसे का लेन देन होता है उसकी बात होती है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, और उद्यमिता ऋण होते हैं। तो ये तीन मुख्य कार्य हैं जो बैंक करता है।
0: और सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगी अपनी ग्रामीण बहनों को, इवन उनके जो छोटे बच्चे, उनके नाम से भी आप बचत खाता खुलवाइए। कि एक तो प्रधानमंत्री योजना जो है ना, उसे आप जीरो बैलेंस का खाता खुलवा सकते हैं, और जो भी आप घर पे सुरक्षित रखती है पैसा, उसको आप बैंक में डालिए, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि जो आपने पैसा उसमें डाला है, उसको वो पैसा धीरे धीरे वृद्धि करता बढ़ता है
1: जी।
0: और ऐसी अगर आपके पास थोड़े बड़े अमाउंट के पैसे हैं, मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, आपने 2-3 महीने में पैसा अपने घर पे रखा, तो कई बार घर पे भी पैसा सुरक्षित नहीं आज के समय के हिसाब से। तो मैं कहूंगी आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD करें बैंक में जाके, जिसमें कई बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जिससे कि जो आपकी FD है वो आपको जब वो मैच्योर हो जाएगी तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे ही RD है, जो जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं, अगर जो भी ग्रामीण भाई बहन है, अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा हर महीने RD में जमा करें, जैसे 500-1,000 रुपए, वो धीरे धीरे एक बड़ी रकम तैयार हो जाती है, और उसमें जो बैंक है ना, इंटरेस्ट भी देता है। और बात अगर हम किसान और छोटे व्यापारियों के लिए करें, जैसा कि आपने बोला कि भाई ऋण भी हमारे जो किसान भाई ले सकते हैं, जैसे खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई या उपकरण खरीदने के लिए, तो इसमें भी बैंक आपकी पूरी मदद करता है
1: जी। मोटी मोटी सी जो योजनाएं हैं, जिनके नाम हम बता दें आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, बड़े काम की योजना है, और बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और ये योजना

0: बहुत ही सफल योजना है, साथ ही स्टैंड अप इंडिया योजना है। इसके तहत बहुत सारे जो उद्यमी हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं हैं, वो भी इसका
1: लाभ
0: लाभ
1: ले सकती हैं।
0: उठा सकती हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना है, आप कारीगरों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है और इसके तहत कारीगर ऋण लेकर अपने कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने आसपास के, जो आपके घर के पास के बैंक है, वहाँ पे आप जाइए और आप अपने मतलब जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप वहाँ जानकारी लेकर वैसा आप ऋण ले सकते हैं या खाता खुलवा सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर वीरेन भाई यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि
0: जी
1: आप अपनी जो बचत है ना, घर में ना रखें, बैंक में रखें, और नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करें, और किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। और बात आजकल डिजिटल का ज़माना है वीरेन भाई, तो ऐसे में ना आप अपने किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक की जानकारी कभी भी ना दें।
0: जी
1: किसी भी बैंक योजना की पूरी जानकारी आप बैंक कर्मचारियों से पूरी तरह से ले सकते हैं।
0: तो बहुत ही काम की जानकारी है साथियों, और ये जो योजनाएं हैं बैंकों से जुड़ी हुई, इनका पूर्ण लाभ उठाइए, अपने जीवन में उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए। और इससे ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि जो हमारे साथी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए आज डिजिटल दस्तावेज और डिजी लॉकर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर बहुत ही कारगर जानकारी लेकर आए हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे, CSIR नई दिल्ली से। तो सुनवाते हैं आपको।
1: ये बातचीत
2: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल दस्तावेज और डिजी लॉकर का उपयोग। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास पिछले दशक में तेजी से हुआ है। हम सभी देशवासी इस विकास के साक्षी हैं। चाहे डिजिटल इंडिया हो, आधार, यूपीआई या फिर जनधन योजना जैसी सरकारी योजनाएं हो, इन सभी ने बैंकिंग भुगतान और सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाया है। गांवों में इंटरनेट और मोबाइल फोन की पहुंच बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए अवसर उभर कर हमारे सामने आए हैं। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई कॉमर्स ने दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में मिलने से भ्रष्टाचार कम हुआ और पारदर्शिता बढ़ी है। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को डिजिटल मंचों से नई पहचान मिली है। इन सभी योजनाओं के मूल में तकनीक का साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तकनीक यानी प्रौद्योगिकी। कुल मिलाकर डिजिटल प्रौद्योगिकी ने भारत को आत्मनिर्भर, कुशल और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव और भी व्यापक होने की उम्मीद है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का सरल भाषा में अर्थ है कि सूचना को द्विआधारी संख्याओं यानी कि शून्य और एक के रूप में संग्रहित, प्रसंस्कृत और प्रसारित करने की तकनीक। यह कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डेटा को डिजिटल संकेतों में बदलकर तीव्र, सटीक और सुरक्षित संचार संभव किया जाता है, जो आधुनिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की आधारशिला रखी है। इसी क्रम में डिजी लॉकर एक ऐसी महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है, जिसने कि नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित, प्रमाणित और डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की है। ग्रामीण भारत, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में दस्तावेजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहां डिजी लॉकर का उपयोग ग्रामीण विकास और आजीविका को नई गति प्रदान कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और अनेक प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहले इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को सुरक्षित रखना, उनकी प्रतियां बन

करवाना तथा विभिन्न कार्यालयों में बार बार उन्हें जमा करना ग्रामीण नागरिकों के लिए समय, धन और श्रम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण काम था। दस्तावेजों के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या सत्यापन में विलंब के कारण अनेक लोगों को अनेक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। डिजीलॉकर ने इस समस्या का प्रभावी समाधान सबके सामने प्रस्तुत किया है। डिजीलॉकर भारत सरकार की एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी भी समय और किसी भी स्थान से साझा कर सकते हैं। यह सेवा आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा मोबाइल नंबर के माध्यम से संचालित होती है और इसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज सीधे नागरिक के खाते में उपलब्ध हो जाते हैं। इस व्यवस्था से कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम हुई है और दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित होती है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में डिजीलॉकर का सबसे बड़ा योगदान सरकारी सेवाओं तक सरल और पारदर्शी पहुंच को उपलब्ध कराना होता है। आज विभिन्न सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड, परिवहन विभाग, बैंक और अन्य संस्थाएं डिजिटल दस्तावेजों को स्वीकार कर रही हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है। समय और यात्रा व्यय की बचत होने के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनती हैं। ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में डिजीलॉकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, ऋण तथा उद्यमिता से जुड़ी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आवेदन के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। डिजीलॉकर के माध्यम से इन दस्तावेजों को तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। इससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए भी डिजीलॉकर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बैंक ऋण, सरकारी अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलता है और वित्तीय समावेशन को बल मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजीलॉकर ने ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र और डिग्रियां डिजीलॉकर में उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के समय दस्तावेज प्रस्तुत करने में सरलता और सुगमता जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाला समय कम होता है और नकली प्रमाण पत्रों की संभावना भी घटती है। तकनीक और कृषि का अटूट रिश्ता रहा है, यही बात सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़ती है। कृषि क्षेत्र में भी डिजीलॉकर अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की सहायता करता है। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर अनुदान और अन्य योजनाओं में आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना आसान हो जाता है। इससे किसानों को विभिन्न विभागों के बीच दस्तावेजों की प्रतियां जमा कराने की आवश्यकता कम पड़ती है और सेवाओं की गति में तेजी आती है। आप सभी श्रोतागण इस बात को महसूस करते होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में डिजिटल दस्तावेजों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा प्रमाण पत्र और अन्य स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में पहचान और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। डिजीलॉकर के माध्यम से नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में भी आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराना आसान हो जाता है। भविष्य में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के विस्तार के साथ डिजिटल दस्तावेजों की उपयोगिता के और बढ़ने की संभावना है। विगत कुछ वर्षों के दौरान हम सबके देखने में यह बात आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी

कार्यान्वयन के दौरान डिजी लॉकर एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहां अब डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के आवेदन में दस्तावेजों के खो जाने या बार बार बनवाने की समस्या भी कम हुई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जीवाड़े की संभावना में कमी आई है। इसके अलावा अधिकारी भी डिजिटल सत्यापन से लाभार्थियों की पहचान शीघ्रता से कर पाते हैं, जिससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचता है। इस प्रकार डिजी लॉकर ने ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने में सहायक भूमिका निभाई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन सहायता, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से लाभार्थियों को समय पर सहायता प्राप्त होती है। इससे प्रशासनिक त्रुटियां कम होती हैं और योजनाओं की पारदर्शिता में वृद्धि होती है। डिजी लॉकर, जो मूल रूप से नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, वह अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पारंपरिक व्यवस्था में हर सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र, मार्कशीट या पहचान पत्र की भौतिक प्रति बनवाने और उसे कई बार फोटोकॉपी कराने के लिए बड़ी मात्रा में कागज का उपयोग होता था। डिजी लॉकर के आने से यह जरूरत काफी हद तक समाप्त हो गई है, क्योंकि अब नागरिक अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे कागज के उत्पादन में उपयोग होने वाले पेड़ों की कटाई कम होती है, जो कि सीधे तौर पर वनों और जैव विविधता की रक्षा में सहायक है, जिसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण और उसके संरक्षण से जुड़ता है। इसके अतिरिक्त कागज बनाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी, ऊर्जा और रसायनों का उपयोग होता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। डिजिटल दस्तावेजीकरण से इन संसाधनों की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास की प्रकृति सुरक्षित और संरक्षित हो पाती है। दफ्तरों में फाइलों के भंडारण और परिवहन में लगने वाला ईंधन भी कम होता है। इस प्रकार डिजी लॉकर न केवल प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है, आमजन को डिजिटल स्वरूप में अपने दस्तावेजों को संरक्षित और सहेज कर रखने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुविधा मुहैया करता है, बल्कि यह एक हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम अक्सर डिजी लॉकर का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से जुड़ी चुनौतियों से अक्सर अनजान रहते हैं। दरअसल डिजी लॉकर के व्यापक उपयोग की राह में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल साक्षरता की कमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग करने में सहज नहीं होते हैं, जिससे वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या अनुपलब्ध होती है, जिससे डिजी लॉकर तक पहुंच सीमित हो जाती है। स्मार्टफोन और डेटा की उच्च लागत भी गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी बाधा है। आधार से जुड़ी प्रक्रिया के कारण जिनके पास वैध आधार कार्ड नहीं है या जिनकी जानकारी में त्रुटि है, वे भी इस सेवा से वंचित रह जाते हैं। इन सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान, बेहतर अवसंरचना और डिजी लॉकर से जुड़ी ही तकनीकी सुविधा के सरल इंटरफेस की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को डिजी लॉकर के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC, पंचायत भवन, विद्यालय और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी लोगों को डिजिटल दस्तावेजों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जा सकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड, OTP की गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में भी नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल दस्तावेजों को अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं जैसे कि आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस,
यूपीआई, जनधन खाते।

0: डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रणालियों के उपयोग से दस्तावेजों की सुरक्षा, सत्यापन और उपयोगिता को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक और डिजी लॉकर केवल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक डिजिटल समाधान और डिजिटल माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल समावेशन और समावेशी विकास का एक प्रभावी उपकरण भी है। इससे ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सरल और सुरक्षित पहुंच प्राप्त होती है। यदि डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत किया जाए, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया जाए और डिजिटल साक्षरता को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए तो डिजी लॉकर ग्रामीण विकास और आजीविका को सशक्त बनाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐसा कदम है जो ग्रामीण नागरिकों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में निरंतर योगदान दे रहा है।
1: तो साथियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और सरिता बहन, जो डॉक्टर गोरे बता रहे थे कि इस डिजिटाइजेशन की वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होता है और पारदर्शिता बनी रहती है, तो क्यों ना हम भी इसे अपने जीवन में अपनाएं और जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं उनका हम सदुपयोग करें।
2: बिल्कुल, और ऐसा ही अगर रहा तो सचमुच पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और जो हमारी धरती है ना उसकी शोभा बढ़ेगी। तो आइए इसी पर हम एक लोकगीत लेते हैं और सुनवाते हैं अपने भाई बहनों को। हरेंद्र नागर से ये उपदेश।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र नागर को, धरती की शोभा सृष्टि। और साथियों, वर्षा का समय चल रहा है, बारिश चल रही है और जगह जगह पानी की वजह से बड़ी ही जनजीवन को परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी एक जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो एक अवसर होता है, उसकी ओर भी इशारा करती है।
1: जी हाँ, और कहते हैं ना वीरेन भाई कि देखा जाए तो बारिश हर साल होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश का कितना पानी हमारे किसी काम में आता है? अधिकांश आप देखो वीरेन भाई, पानी बहकर नालियों और नदियों में चला जाता है
0: जी।
1: फिर कुछ महीने बाद हम कहते हैं अरे पानी की बहुत कमी है। तो भाई हमारे लिए जो वीरेन भाई है ना, बारिश की हर बूंद अमूल्य है। यदि आप इसे सहेज लें तो ये पानी गर्मियों में हमारी प्यास तो बुझा सकते हैं, साथ ही खेतों को सींच सकते हैं और हमारे गांव के कुएं हैंडपंप को फिर से भर सकते हैं।
0: जी सरिता बहन, जल ही जीवन है और अब तो ये कहें कि जल ही धन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और हम जहाँ भी हों, जहाँ भी वर्षा के बल जल से बाढ़ आ रही हो या कोई और व्यवस्था अनुकूल ना हो रही हो, तो उस समय हमें उसका सदुपयोग करके उसे संचयित करने के प्रयास करने चाहिए। इससे क्या होगा कि भूजल में सुधार होगा, पानी की बचत होगी और ये जो है पर्यावरण के अनुकूल भी है।
1: जी आप घर के छत से पाइप के जरिए पानी टंकी में जमा किया जा सकता है, सोखता गड्ढे के माध्यम से जमीन में उतारा जा सकता है, खेतों में मेड़ बंदी तालाब और छोटे चैक डैम बनाकर भी पानी को रोका जा सकता है।
0: जी
1: तो भाई इसके बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए।
0: जी, और सरिता बहन, जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे बसी हैं, क्योंकि वहाँ जल अधिक होता है, पर्याप्त होता है, समुचित होता है। और साथ ही नदियों के पास जो जल स्तर होता है थोड़ी दूर तक, 2-4 किलोमीटर तक, वो अच्छा होता है।
1: तो भाई हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि बारिश की हर बूंद बचाएंगे, जल संकट को दूर भगाएंगे। और भाई बात अगर जल अमूल्य जल की बात हो रही है, तो क्यों ना इस पे हम जयप्रकाश शर्मा से सुन ले कि जल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

0: जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। जी हाँ साथियों, समय चाहे कोई भी हो, हमें आगे ही चलना होता है। और किसान को तो हर दिन कार्य करना है, खेत के चक्कर लगाने हैं, पशुओं की सेवा करनी है, और जितने भी काम उन सब से जुड़े हुए हैं उन सब का ध्यान भी रखना है और काम भी करना है।
1: जी हाँ, कहते हैं ना किसान हमारे अन्नदाता हैं
0: जी
1: भाई, और इनका काफी मेहनत का काम होता है। लेकिन वीरेन भाई, इस वक्त
0: हाँ
1: जो हमारे किसान भाई हैं ना, अपने खेतों से घर लौट आए हैं और हमें जरूर सुन रहे हैं।
0: जी
1: तो भाई, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें काम की बात यानी कोई अच्छी जानकारी दे दें जो उनके लिए लाभदायक हो।
0: जी हम तो यही कोशिश करते हैं कि जन कल्याण और किसान कल्याण की जो जितनी भी जानकारी है वो उन तक पहुंचती रहनी चाहिए। तो आज फिर हम अपना ये काम करते हैं, आज फूलों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं हम सरिता बहन अपने किसान बहन भाइयों के लिए। बरसात के मौसम में फूलों में समसामयिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में बता रहे हैं डॉक्टर देवांश सिंह।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में फूलों के लिए समय सामयिक कौन सी शस्य क्रिया हमें करनी चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि इस मौसम में कौन से ऐसे फूल हैं जिनमें समय सामयिक शस्य क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गेंदे का फूल, गुलदाउदी, गुलाब, और कुछ मौसमी फूलों में आते हैं पर्टुला का, गलाडिया, जीनिया या फिर सदाबहार। अगर हम गेंदे की खेती के बारे में जानें तो गेंदा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लूज फ्लावर क्रॉप है जिसे हम लोग खुले फूल के वर्ग में रखते हैं। खुले फूलों में इसका इस्तेमाल माला बनाने, पंखुड़ियों से इसकी रंगोली बनाने या भगवान को चढ़ावा चढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे की किस्मों को हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, जैसे कि अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा वह होता है जिसके फूल का आकार बड़ा होता है, और इसकी जो नर्सरी लगती है वो लगती है हमारे सितंबर के महीने में और इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है अक्टूबर में। वहीं फ्रेंच गेंदा जो होता है उसकी जो नर्सरी लगती है वो जुलाई के महीने में लगती है, जो कि हम मानते हैं कि अधिकतर किसान भाइयों ने जुलाई के पहले ही हफ्ते में इसकी नर्सरी तैयार कर ली होगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं करी होगी उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा समय है इसकी नर्सरी लगाने का। फ्रेंच गेंदा जो होता है वो छोटे आकार में होता है और इसमें जो फूल आते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, जिससे कि बेच करके हम लोग काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारे सर्दी में बिकने वाले गेंदों से 3 गुना ज़्यादा कमाई हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल हमारे जितने भी पर्व पड़ते हैं, उत्सव पड़ते हैं, जैसे दिवाली या छठ, इसमें काफ़ी काम आता है। गेंदे की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का जो ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी नर्सरी हम लोग जुलाई के महीने में जो कि वर्षा ऋतु में पड़ता है उसमें कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ खास ख्याल रखना है। जैसे कि इसके कैरी की जो हाइट है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, और इसमें कैरी की चौड़ाई है वो 75 से 80 सेंटीमीटर रहती है। इसकी लंबाई हम लोग 3 से 4 मीटर तक रख सकते हैं। एक कैरी से दूसरी कैरी के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एक खास ख्याल रखना चाहिए कि जल निकास का हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जमा ना हो। कैरियों के ऊपर एक पतले तार का हम लोग टनल टाइप का संरचना भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग बारिश पड़ते वक्त ऊपर प्लास्टिक डाल सकते हैं और हमारे पौध को बारिश के पानी से या फिर जल भराव से बचा सकते हैं। नर्सरी की कैरी तैयार करने से पहले गर्मी के महीने में उस मिट्टी की हम लोग 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं, जिससे कि धूप की किरण या फिर अधिक तापमान से फंगस है और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम लोग अब इसके सीड प्रिपरेशन की बात करते हैं। हमें जो इसके बीज तैयार करने हैं उन्हें कवकनाशी में इसे मिला करके हमें तैयार करना है। कवकनाशी जैसे कि मैंकोजेब या फिर बेवेस्टीन, मैंकोजेब को हम लोग M45 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक

0: डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी आती है जो जमीन से निचले तने को गला देती है और उससे जो हमारी पौध है वो मर जाती है। जब ये तैयार हो जाता है तो हमें इसको रो टू रो, जो कि हम कहेंगे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और बीच से बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो इसका गहराई है वो लगभग आधा से पौन या अधिकतम 1 सेंटीमीटर रखनी है। इसके बाद हम लोगों को इसमें व्हाइट सैंड, जो कि हमारा जमुना जी की सफेद मिट्टी होती है, वो साथ में गाय की सड़ी हुई खाद और मिट्टी को मिला करके जिसमें बीज डाला गया है उसी के ऊपर हमें रख देना है। और ऊपर से हम लोग सूखी हुई पुआल या फिर घास रख सकते हैं, इससे जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हम लोगों को पानी की सिंचाई करनी है, वो हम लोग फुहारे द्वारा करेंगे। और जो हम लोग पानी प्रदान करेंगे वो केवल इतना होना चाहिए कि वो बीज तक नमी पहुंचा दे। पुआल डालने के लगभग 5 से 7 दिन बाद जो हमारा बीज है वो अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद हमें पुआल को हटा देना है। अगर हम लोग समय से पुआल नहीं हटाएंगे तो जो हमारी पौध तैयार होगी वो टेढ़ी मेढ़ी तैयार हो जाएगी। और उससे ये होगा कि जब हम लोग पौधे को रोपारण करेंगे तब वो पौध मर जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है पोर्ट्रेस का। हम लोग पोर्ट्रेस में भी हमारी नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं। पोर्ट्रेस में नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग एक भाग कोकोपीट का, एक भाग वर्मी कंपोस्ट का और एक भाग परलाइट का लेते हैं। पोर्ट्रेस में पौध तैयार करने की सबसे खास बात यह है कि जो हमारी जड़ है वो काफी अच्छे से तैयार होती है और इसको रोपारण करते वक्त जो इसका मृत्यु दर है वो काफी कम रहता है। तो इस तरह से हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। रोपाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। रोपाई के 15 दिन बाद इसमें एक काफी अहम प्रक्रिया करते हैं जिसे हम शीर्ष नोचन कहते हैं, जिसमें हम जो तने के ऊपर से 1 से 1.5 सेंटीमीटर का भाग तोड़ देते हैं ताकि उनकी पंक्तियों से शाखाएं निकलना शुरू हो जाएं और इससे अधिक फूलों की पैदावार मिले। सघन पौधों में अनुबन ये देखा गया है कि केवल एक बार शीर्ष नोचन काफी होता है, परंतु अगर हम लोगों को एक और बार शीर्ष नोचन करना है तो पहले शीर्ष नोचन के 15 से 20 दिन बाद हम लोग दूसरा शीर्ष नोचन जो नई आई टहनियां हैं उनसे कर सकते हैं। इससे जो पौधे का आकार है वो और भी बड़ा मिलेगा। नर्सरी में बीज डालने से और ट्रांसप्लांटिंग के बाद लगभग 65 से 70 दिन में हमें पुष्पान मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 2 महीने तक हमें इससे पुष्प मिलते रहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस वक्त जो हम लोग कैरी डालेंगे उसकी हम लोगों को पैदावार मिलेगी वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलेगी और सर्दियों के मौसम से 3 गुना हमें ज्यादा लाभदायक रेट मिलेगा। मार्केट में लगभग 90 से 100 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर बात करें हम लोग इसमें कीड़े और मकोड़ों की, तो इसमें एफिड और कैटरपिलर को कभी कभार देखा जाता है, जिससे निजात पाने के लिए हम लोग मेलाथियन 1.5 ml का छिड़काव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुलदाउदी की। गुलदाउदी भी एक काफी महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है, साथ ही में ये काफी महत्वपूर्ण पॉटेड प्लांट क्रॉप भी है। इसकी खेती किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं वो कट फ्लावर के लिए इसे खुले मैदान में भी लगाते हैं या फिर इसे संरक्षित संरचना के अंदर भी करते हैं, जैसे कि पॉली हाउस वगैरह। इस समय अधिकतम किसान भाई इसकी कटिंग लगा चुके होंगे, वो देख रहे होंगे कि इसमें रूटिंग आ गई होगी, वो पॉली हाउस के अंदर या फिर बाहर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जो किसान भाई कलम सही से या फिर अभी तक नहीं लगाए हैं वो इसकी कलम काट लें, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर हो और ऊपर की तरफ से 3 से 4 पत्तियां मिल जाएं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम लोग कटिंग लगा रहे हैं वो सॉफ्ट वुड कटिंग होनी चाहिए। जो हार्ड वुड कटिंग होती है उससे जड़ नहीं निकल पाती हैं, इसलिए हमें सॉफ्ट वुड कटिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। कटिंग को काटने के बाद 1000 ppm IBA का सॉल्यूशन, 1000 ppm का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम IBA को घोल करके उसका एक घोल बनाना। तो 1000 ppm IBA के मिश्रण के अंदर हमें 7 से 8 मिनट तक लगभग 1 सेंटीमीटर का निचला हिस्सा डुबा के रखना है। इससे जो जड़ का विकास है वो काफी जल्दी और काफी अच्छा होता है। इसको लगाने के लिए पोर्ट्रे में हम लोगों को एक भाग वर्मिंग कंपोस्ट, एक भाग परलाइट और एक भाग कोकोपीट है उसको लेना होता है, पर पोर्ट्रे है उसे एक छांव के अंदर में रखना है। तो इसके लिए या तो आप पॉलीहाउस में रख लें इसे, या फिर आप एक छोटा सा हरे जाली का नेट हाउस बना लें उसके अंदर रख लें। गेंदे की नर्सरी तैयार करने में और गुलदाउदी की नर्सरी तैयार करने में जो अंतर है वो ये है कि हमें इसमें यमुना जी का सफेद रेता 15 सेंटीमीटर की परत लगानी होती है। इससे जो हमारी ज्यादा नमी है वो नीचे चली जाती है, वो लीच हो जाती है और जो हमारा तना है वो सड़ने से बच सकता है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि अगर रोपण से एक महीना पहले जो हमारा मदर प्लांट है उसे जमीन की सतह से काट दिया जाए तो इसमें सकर्स निकल आते हैं, जिससे कि हम लोग सकर द्वारा भी इसको रोपित कर सकते हैं। दोनों विधियों में, चाहे आप पोर्ट्रे से लगाएं या फिर आप हमारे खेत में डायरेक्ट नर्सरी तैयार करके लगाएं, दोनों में देखा गया है कि 30 से 35 दिन के अंदर जो हमारी जड़ है वो बन करके तैयार हो जाती है। और जो इसमें स्पेसिंग रखते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है 4 सेंटीमीटर के आसपास, और जो हमारी कलम से कलम की दूरी होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। परंतु एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्ट्रे द्वारा तैयार की गई पौध हमें नर्सरी बेड, जो जमीन से हम नर्सरी तैयार करते हैं उससे तैयार की गई पौध से महंगी पड़ती है। परंतु ये भी सच है कि जो हमें पोर्ट्रे द्वारा पौध मिलती है वो काफी अच्छी जड़ों की क्वालिटी मिलती है उसमें हमें। अब हम बात करते हैं गुलाब की। गुलाब में इस वक्त ध्यान देने की बात यह है कि बारिश का वक्त है, तो जो इस वक्त गुलाब की खेती कर रहे हैं, चाहे वो लूज फ्लावर के लिए हो या तेल निकालने के लिए जो रोजा डेमेसिना की खेती कर रहे हैं, दोनों ही के लिए ये बात है कि अभी हमें खेत के अंदर खरपतवार रहित रखने के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ती है तो उससे इस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और खरपतवार के कारण फंगस लगने का काफी संभावना बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में जल प्रभाव ना हो इसका हमें काफी ध्यान देना होगा, और इस वक्त में हमें गुलाब में कोई भी कटिंग, बडिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है। जब अक्टूबर का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जहां हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ठंड आने लगी है, तब हम लोग इसमें प्रूनिंग का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में इसमें लाल मकड़ी, जिसे हम माइट कहते हैं, उसका प्रकोप देखने को मिलता है। इससे हमें शुरुआती रूप में ही नियंत्रण है वो पाने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये पूरे खेत में फैल जाता है तो फिर इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। इसकी पहचान ये होती है कि ये पत्ती के निचले स्तर पर वो अपना काबू पाती है और अटैक करती है। ये जो पत्ती का क्लोरोफिल होता है वो चूस जाती है और जो इसके द्वारा प्रभावित पत्तियां होती हैं वो भूरे कलर की हो जाती हैं और उसमें चित्तियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए ओमाइट या फिर डाइकोफॉल का इस्तेमाल करते हैं। ओमाइट हम लोग 0.3 ml पर लीटर पानी में, या फिर डाइकोफॉल अगर ले रहे हैं तो वो 1 ml पर लीटर पानी में डाल करके हम लोग छिड़काव करते हैं। जो इसका छिड़काव हम लोग करते हैं उसकी जो गन होती है वो भी अलग तरह की होती है। उसका छिड़काव हम लोग नीचे से करते हैं ताकि जो पत्तियों के नीचे में संक्रमण है उस पे छिड़काव अच्छे से हो सके। पहला छिड़काव करने के 2 हफ्ते बाद हम लोग इसका फिर से छिड़काव करते हैं। जब हम लोग इस वक्त कटिंग या प्रूनिंग अगर कर रहे होते हैं तो 2 बातें ध्यान रखने की ये होती हैं कि जो हम लोग कट लगाएं वो सीधा कट ना हो करके वो तिरछा कट होना चाहिए, जिससे ऊपर पानी रुके नहीं, वो रिस जाए। और जब हम लोग कट लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को फंगीसाइड जैसे कि बेवेस्टीन या फिर मैंकोजेब, उसका हमें एक लेप लगा देना होता है।
1: बरसात के मौसम में फूलों पे समसामयिक क्रियाएं, इस पे जानकारी दे रहे थे देवान सिंह, और ये बहुत ही खूबसूरत जानकारी थी हमारे जो किसान भाई बहन है उनके लिए।
2: जी, फूल खूबसूरत ही होते हैं और फूलों का जो महत्व है अभी देवान सिंह ने जो बताया तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आम जन से लेके देवताओं तक फूलों को पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और फूल जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं और

0: कृषि में, तो अब इनका नकदी फसल के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ चुका है।
1: जी हाँ, और हमारे किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीरेन भाई कहा था कि ये शाम का वक्त है, हमारे किसान भाई घर लौटे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो इससे बातचीत का उनको पूरा लाभ मिला होगा।
0: जी
1: और अब हम क्यों ना उनका मनोरंजन भी करा दें, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद मनोरंजन तो होना ही चाहिए।
0: जी तो सुनवाते हैं आपको ओमवीर आर्य को।
2: नमस्कार किसान।

0: साथियों, जीवन को समझने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम उसके गूढ़ रहस्यों को जानें और उनसे कुछ सीखें, यही बता रहे थे ओमवीर आर्य अपने इस उपदेश में।
1: और भाई वीरेन भाई, हम बारिश की बात कर रहे हैं और बरसात का मौसम भी है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है। तो जो बरसात का मौसम है ना, जहाँ हरियाली और खुशहाली लेकर आता है, वही कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में हमें थोड़ी सावधानी रखना चाहिए ताकि हम और हमारे परिवार जो है सुरक्षित रह सके
0: जी।
1: और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए
0: जी।
1: कई बार बारिश के मौसम में खेती में कार्य करते समय बहुत सारे उपकरण जो है ना वो ध्यान नहीं देते और वो ऐसे ही छोड़ देते खुला।
0: कई बार दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है आरती बहन,
1: जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट, इस तरह का जब मशीन का जब उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं ना, तो उस पर आप जरूर सावधानी रखें, गीले हाथों से बिजली के उपकरण ना छुएं और खराब तार जो है ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें
0: जी। तो ये सब सुरक्षा उपकरण आप सावधानी से इस्तेमाल करेंगे और अपने पशुओं का जो आश्रय है उसको भी साफ सुथरा और इन दुर्घटनाओं से बचाव करने का सक्षम उपाय करते हुए देखते रहें उसको, और साथ ही चारे का प्रबंधन जो है सही करें। बारिश के समय गंदा पानी हो जाता है सब जगह का, खुला पानी ना पिलाएं, पशुओं को भी साफ और स्वच्छ पानी ही पिलाएं।
1: और कहते हैं ना कि जब बारिश का मौसम आता है तो कई बार होता है आंधी तूफान चलती है और हम कीटनाशक जो है दवाएं ऐसे ही रख देते हैं या छिड़काव करते हैं कीटों को मारने के लिए। तो ऐसे में आप दस्ताने, मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा जरूर पहने, और कीचड़ वाली खेती में आप मजबूत और फिसलन रोधी जो जूते हैं ना, जैसे गमबूट वगैरह है, इनको आप पहने ताकि चोट लगने का खतरा कम हो। और बारिश का पानी खेत में अधिक समय तक जमा न रहने दे, नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकाले ताकि जो आपकी फसल है, हमारी फसल है, उसकी जड़ें सुरक्षित रहे। और हाँ, आकाशीय बिजली से भी बचाव का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा गरज चमक शुरू होते हुए खेत का काम आप कर रहे हो तो तुरंत रोक दे, किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो और बिजली के खंभों और ये तारों से आप बिल्कुल दूर रहे, किसी सुरक्षित पक्की इमारत में शरण ले
0: जी। सरिता बहन, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं वो अगर पानी ज्यादा है खेतों में तो उसका समाधान ढूंढें, उसको निकालें नहीं, क्योंकि जो फसल खड़ी है वो खराब भी हो सकती है। अगर धान की है तो अच्छी बात है, लेकिन और अन्य कोई बेलिए अपने फसल लगा रखी है तो उनको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो जल का निकासी का समाधान भी करना चाहिए, उसको सही जगह पे भेजने का प्रबंध करें, नालियों को साफ सुथरा रखें और जल संचयन जरूर करें, उसमें आपको फायदा भी होगा और हमारा खेत भी सुरक्षित रहेगा।
1: और वीरेन भाई, हम तो यही कहेंगे कि मौसम की जो चेतावनियां आती है ना, उसका बिल्कुल पालन करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें और आपातकालीन नंबर अपने पास रखें। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनका इस मौसम में, इस तरह का अगर मौसम खराब हो रहा है तो आप उनका विशेष ध्यान दें। और कहते हैं ना वीरेन भाई, बरसात का आनंद तभी है जब हम सुरक्षित रहें।
0: तो इन सब जानकारियों के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम हम यहीं पर समेटते हैं। आज्ञा दीजिए हम दोनों को, मैं वीरेंद्र पाल सिंह और
1: सरिता शर्मा लेते हैं हम आपसे इजाजत। सभी भाई बहनों को राम राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 20 सेकंड्स हो रहे हैं। हाजिर हैं हम लेकर कुछ चुनिंदा गजलें खास आपके लिए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गजल जगजीत सिंह साहब की पुरसुकून आवाज में।

आशा भोसले और जगजीत सिंह साहब को अभी आपने सुना, और चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं चंदन दास साहब की आवाज़।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया जाना पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने पिछली सरकार पर राहत और चिकित्सा सहायता में पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं से जवाबदेही की मांग की और हिंसा, सड़क जाम तथा हमलों के खिलाफ कार्रवाई न करने की उनकी कथित नाकामी पर भी सवाल उठाए।
1: अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि जो हिंदुओं के बच्चे मारे गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनको गोली लगी, जिनको पत्थर लगे, जिनके रिक्शे जले, जिनका व्यापार नष्ट हुआ, बच्चों को स्कूल आने जाने से रोका गया, जिनको बीमारों को अस्पताल जाने से रोका गया, जिनकी सड़कें बंद कर दी गई, उनके समर्थन में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी क्यों नहीं आया सड़क खुलवाने के लिए।
0: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों को इनके संवैधानिक, प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक पहलुओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज शिक्षा विभाग के पोर्टल एड्यूलाइफ 2.0 लॉन्च किया। महापौर ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित अचीवमेंट क्रॉनिकल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में नगर निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली सरकार 25 जुलाई को पहला अभिभावक शिक्षक संवाद आयोजित करेगी। ये पहल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और विद्यालयों की साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये संवाद पूरी तरह बाल सुरक्षा और संरक्षण विषय को समर्पित होगा। साथ ही जुलाई में पूरे दिल्ली में मनाए जा रहे बाल सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवसर पर अभिभावकों के साथ बाल सुरक्षा, पॉस्को अधिनियम 2012, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य तथा डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद आयोजित करें। संवाद कार्यक्रम के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी रिपोर्ट कार्ड से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चे भय मुक्त वातावरण में सीख सकें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक सीमित नहीं रह सकती। प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे पहला सुरक्षा कवच उसके अभिभावक होते हैं, इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नियमित एवं सार्थक संवाद एक सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री सूद ने कहा कि सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये विद्यालय, अभिभावकों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.hindi.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। इस वर्ष का कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय, निवेश, नवाचार, नीति संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और विचारक सहित 350 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत का उत्सव है। इस महोत्सव में 48 कारीगरों और बुनकरों के साथ साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के पूर्व विद्यार्थियों के 12 डिजाइन आधारित हस्तशिल्प और हथकरघा ब्रांड द्वारा बनाए गए हाथ से बने और हाथ से बुने उत्पाद शामिल है। ये महोत्सव इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा।
2: इस विशेष पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला को समकालीन और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रदर्शित शिल्पों में गुलाबी मीनाकारी, स्टोन इनले, डोकरा मेटल क्राफ्ट, संगीत वाद्यंत्र, पांडुलिपि पेंटिंग, लकड़ी पर बोन इनले, उस्ता कला, पिछवाई कला, सोजनी कढ़ाई, मोलेला क्ले क्राफ्ट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, सिल्वर फिलीग्री और चिरियाल पेंटिंग शामिल है। आगंतुकों को पारंपरिक शिल्प तकनीकों के लाइव प्रदर्शन देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत की सदियों पुरानी कारीगरी का एक शानदार अनुभव मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 से जुड़ा हुआ है, जो आज से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
0: भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से दिल्ली मंडल के शामली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क और पहुंच में सुधार के इरादे से देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना में संपर्क और पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, फुटपाथों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। दिल्ली में दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ों के वैज्ञानिक निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान गाजीपुर डंप साइट समेत भलसवा और ओखला लैंडफिल साइटों की प्रगति का जायजा लिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाजीपुर डंप साइट पर बायोमाइनिंग और रेमेडिएशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अर्जुन शर्मा।
0: रोहिणी और आसपास के इलाकों के निवासियों के हित के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने मुख्य अंडरग्राउंड ट्रंक आउटफॉल ड्रेन की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक जमा हुई गाद और कचरे को हटाया गया। इस ये अभियान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के बाद चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य मानसून के दौरान बारिश के पानी की आसान निकासी सुनिश्चित करना और इलाके में जल भराव के जोखिम को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुरियर डिलीवरी के बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ 2,47,000 की धोखाधड़ी की। गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी इलाके में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 9 किलो से अधिक का मादक पदार्थ और 353 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नंदनगरी थाने में आबकारी अधिनियम और NDPS एक्ट के तहत दो अलग अलग FIR दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
4: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
0: इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
5: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
0: चैंपियनशिप इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। संगीत नाटक अकादमी कल देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा। महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर आयोजित ये महोत्सव राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष को समर्पित है। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाटकों के मंचन के साथ शुरू होगा। इस महोत्सव का विषय वंदे मातरम भारतीय रंगमंच के माध्यम से देशभक्ति की भावना है। दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में IB के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

कर यादों की सोंधी सी खुशबू और गीतों में अपने पन की गर्माहट। तो आप जहाँ भी हैं, दीजिए हमें थोड़ी सी अटेंशन और प्यारी सी मुस्कुराहट और चुरा लीजिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ खास पल हमारे साथ विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफ़ी।

संग एक सिंपल सी कॉफी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छी कॉफी और अच्छा साथ मिलते तो मुश्किल से हैं, लेकिन अगर एक बार किस्मत से दोनों मिल जाए ना तो दोनों का खुमार जल्दी नहीं उतरता। और जब जिंदगी की भागदौड़ में कोई ऐसा साथ हो जिसके संग एक सिंपल सी कॉफी का कप लाइफ को किक देने लगे तो पांव जमीन पर ठहर पाना थोड़ा तो मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तभी एहसास होता है कि रिश्तों की खूबसूरती दरअसल बड़े बड़े दावों में, बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातों में छुपी होती हैं, जहाँ किसी का साथ ही सबसे खूबसूरत एहसास बनता जाता है।

वैसे दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें प्लान्ड नहीं होती, बस हो जाती हैं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि वही अनप्लान्ड मुलाकातें अक्सर सबसे यादगार कहानी बन जाती हैं। पहले एक सिंपल सी हेलो, फिर कॉफी का बहाना और फिर लंबी लंबी बातें।

और देखते ही देखते मोबाइल की बैटरी से ज्यादा दिल की धड़कनें चार्ज रहने लगती हैं, और फिर हर लम्हा अपना सा लगने लगता है। हर मौसम थोड़ा सा और हसीन हो जाता है, हर मुस्कुराहट थोड़ी सी और खिल जाती है। चलिए मिलवाते हैं आपको इसी एहसास से इस गीत के ज़रिए।

वैसे ये तो सच है कि कुछ लोग ना होते बड़े कमाल के हैं, जिनसे मिलके लाइफ थोड़ी अपग्रेडेड हो जाती है। बस एक बार मुलाकात की ज़रूरत होती है, उसके बाद पूरा दिन ही अपग्रेड अपडेट हो जाता है। और जिनसे मिलकर चाय ना थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है, कॉफ़ी थोड़ी सी और लंबी चलने लगती है, और बिना वजह चेहरे पर मुस्कान भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो शब्द है ना कुछ, ये है बड़ा दिलचस्प। कभी कुछ बातें हो जाती हैं, कभी कुछ यादें बन जाती हैं, कभी कुछ हंसी बांट ली जाती है, और कभी-कभी बिना किसी वजह मूड बस कुछ यूं ही शानदार सा फील करने लगता है। और शायद जिंदगी का असली मजा भी इसी कुछ-कुछ में छिपा है। हर बात का कारण ढूंढना जरूरी नहीं होता, कुछ पल बस जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हम उनको याद दिला दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 8:24 और प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी दीप्ति, आपकी अपनी साथी, और हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ पर। तो वैसे ये जो दिल और दिल की जो बातें होती हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी या कह लें कुछ कुछ अजीब तो होती हैं भाई। सबसे पहले तो ये आपका साथ छोड़ता है मुस्कुराहट के साथ। कैसे? कभी तो बैठे बिठाए आप मुस्कुरा देंगे विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी बिना किसी रीज़न के ये मुस्कुराहट आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और ये होता है बड़ा ही टेंशन वाला काम। और इस बिना वजह मुस्कुराने, बिना वजह किसी पुराने गाने पर अटक जाने को जो फीलिंग होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं हमारे दोस्त। उनको बैठे बिठाए मिल जाता है एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं ना अपने दिल की बातों में, और वो ले रहे हैं मज़े हमारी हरकतों से।

वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ना कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जहाँ वजहें कम हों, मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, जहाँ चाय अच्छी लगे, दोस्तों के साथ मौसम अच्छे लगे, गाने अच्छे लगे और दिल बस अपनी ही धुन पर चलने लगे।

आप सुन रहे थे के साहब को फिल्म काइट्स में, और ये जो गीत था दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इस गीत में एक ख़ास बात देखी आपने, ये जो दिल है ना इसका अलग ही ड्रामा चल रहा है। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी में कोई मज़ेदार सा ट्विस्ट आया, बस जनाब को क्वेश्चंस हर तरफ क्वेश्चन मार्क्स दिखने लग गए, जैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इन्हीं को मिली है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, और फिर क्वेश्चंस जब आते हैं ना दिमाग में तो ऑफ कोर्स बढ़ते भी थोड़े क्वेश्चन की ही तरफ है, अपने आप से सवाल पूछने की तरफ कि अब पता नहीं काबिल है या नहीं है। लेकिन देखिए अब जो भी है सच क्या है ये तो दिल ही जाने, लेकिन अगर दिल खुश हो ना तो दुनिया थोड़ी सी और कलरफुल हो जाती है, और मन मन कुछ अलग ही गीत गुनगुनाने लगता है।

अच्छा ये भी बड़ी मजेदार बात है ना कि जिंदगी में ज्यादा सवाल हमें एग्जाम में नहीं बल्कि अपने दिमाग में आते हैं और आंसर भी सबसे ज्यादा खुद को ही करना होता है। क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, ये सब ठीक तो हो रहा है ना, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, यार सब ठीक तो चल रहा है ना। और कमाल की बात यह है कि आधे सवालों का जवाब हम खुद को नहीं हमारे दोस्त हमें देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, अरे बिल्कुल ठीक है मैं साथ हूँ तुम्हारे। और यकीन मानिए अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसने ये कह दिया कि हाँ तुम करो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो आपसे ज़्यादा रिच, आपसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं। ऐसे इंसान को अपने साथ पकड़ कर जकड़ कर रखिए, जाने मत दीजिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपका साथ ना कभी आपके हल्के में और ना ही कभी भारी में छोड़ते हैं। और आप उन बहुत कम लोगों में शुमार हैं जिनका साथ देने के लिए कोई खड़ा होता है।

सच कह रही हूँ दोस्तों, कुछ खास लोग ना हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे आते हैं जिनके आने से ही लाइफ में कुछ जादू सा छा जाता है। कुछ जादू की तरह आते हैं ऐसे लोग जिनके आने भर से, जिनके होने भर से ओवर थिंकिंग छुट्टी पर चली जाती है और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। तो बस बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा सोच विचार नहीं, बनाते हैं मूड को थोड़ा सा शानदार और आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये बेहद शानदार गीत। इसी गीत के साथ में मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे इस रोलर कोस्टर राइड को एंड करने की इजाजत चाहूंगी। मिलूंगी आपसे फिर कभी बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां

0: सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped

0: by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with

0: describing the matter as highly sensitive. The top court was hearing a batch of appeals challenging a Madhya Pradesh High Court order which said the disputed Bhojshala complex was a temple dedicated to Goddess Saraswati and prohibited the offering of namaz there. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of senior BJP leader Ramchandra Gowda. In a social media post, Mr. Modi described Mr. Gowda as a strong pillar of the BJP in Karnataka who devoted decades of his life to strengthening the party at the grassroots and mentoring generations of party workers. The Prime Minister said Mr. Gowda's public life as a corporator, member of the Legislative Council and minister was marked by unwavering commitment and dedicated service. Mr. Modi also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family, supporters and his admirers. Union Minister of Civil Aviation Kinjarappu Ram Mohan Naidu announced that Dholera International Airport will be operational within 3 months. Talking to media after reviewing the progress of the project, the minister said 80% project work completed and the government aims to complete the remaining terminal construction and secure the necessary licensing within the next 3 months to commence flight operations. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. We have a report.
1: Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined by 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the NSE, the Nifty Midcap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Smallcap 100 Index fell nearly 1%. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 58 paise to close at 96 rupees and 20 paise against the US dollar. With Abhishek report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने आबनाई हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नज़र रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल

0: और तिजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: भारत ने आज अबनाई हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तश्वीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे, जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेहसाल, बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे को ये कहते हुए भारत के तिजारती सफर में एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकतदारी कायम करेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत, लचकदार और मुसाबकती मईशत बनने के सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर तैयार किया गया है, जिसके फवायद पूरे मुआशरे को हासिल होंगे। CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से फ़ायदा होगा। डिब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज़्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और फुटवेयर अशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया, जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णव ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड

0: से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है. सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म. फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से.
1: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है. ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी. पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिन्दुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी. बेंच ने रियासत को हुक्म दिया है कि वो मजकूरा आराजी से मुतसर एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके. बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता. बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया. भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा. इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे. भारत की ब्रिक्स सदारत जिसका उनवान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत ये इज्तिमा होगा. मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे. इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाबता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे. मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामिये को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा. इस एलामिये का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनतकशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवियत देना है. इसके अलावा एलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है. मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मसनूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है. हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है. कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे. इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी. कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी. इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं. शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैनअलाक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा. प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है. सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में BJP का एक अहम सुतून करार दिया जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी. जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया. बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आज़ाद तिजारती माहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया. ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी. कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफेन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसी तर इत्तेफाक हुआ है. भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं

तिहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने कहा है कि आइंदा दो रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना वेस्टेल दे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन और उसके बैन अल-अक़वामी साझेदार अगले एक साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। ये मैच जीतकर फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन जबकि लियाम डोसन ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजीद तकवीत मिलेगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरी ना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगे?
2: जो सुधार तो रेलवे में एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेके आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाई ऐश ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने

0: इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको
1: जी
0: हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बांटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो। तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
0: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कोई स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई
1: जी
0: जगह और चीजें बन गई हैं। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है, तो
1: बिल्कुल
0: आगे बात बने। अभी तक पेपर में ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। तो ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे ऐसे में इसमें भी दिखेगा।
1: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है। तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
0: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए, और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको हटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो, और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है फ्लाई ऐश, तो एक बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग
1: जी
0: के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है। जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
1: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश के साथ साथ उर्वरक भी भेजता है, अनाज भी है, अन्य वस्तुओं का परिवहन भी किया जाता है, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
0: कंटेनराइजेशन जहां जहां आया है वहां पे सफलता मिली है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपनी सोच को थोड़ा बदला है, और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जिसको जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 100 1/40 1/45 सा होता है,
1: जी
0: तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब चाहे तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है तो कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उनमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, इससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स सब में आपको फायदा दिखेगा।
1: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है। तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है, इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
0: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे इंटरनल प्लेयर्स। अब ये दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता था बहुत ज्यादा नियम है, और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है, ये सब चीज उन्होंने हटा दी है। और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार, वंस यू आर इन, आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं।
1: जी
0: तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप
1: बिल्कुल
0: वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल

0: रुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था, इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। ये जो बदलाव है, इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि जब ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
1: देखिए, रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, यदि आप चेयर कार में जाएं तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आप
0: जी
1: बाध्यतः दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल तो जानते ना हो। लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है आप
0: जी
1: देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई
0: जी
1: तकलीफ की बात नहीं है।
0: जी
1: इसमें ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
0: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उनके नुकसान की बात कही जाती है। अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है, क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दुआ सेंध लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर में सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत ही कम है, और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है
0: जी
1: कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
0: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा था कि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
1: जी हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो, और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो,
0: जी
1: और सहूलियत सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो, और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
0: जी
1: ये
0: जी
1: आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर तक।
0: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, तो रेल परियोजनाओं में जो काम करते हैं, खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी है, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा, और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
1: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम
0: जी
1: है लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही हैं लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने को दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया जिसमें इन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
0: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए, तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?

0: अभी देखिए शुरुआत हुई है, और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है, ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीतिगत सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है, एक
1: जी
0: बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
0: देखिए 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये ग्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी।
1: जी
0: भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी, और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो
1: जी
0: ये कोई नहीं चाहता कि वेट लिस्ट टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में माध्यम से, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है, और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत
1: जी
0: जबरदस्त काम हो रहा है, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी। धन्यवाद।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायत

0: लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता के सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित किया गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 28 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन बनाए। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albaya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गजल। कलाकार हैं फरीद अहमद। तबला पर संगति कर रहे हैं ऋतु मिश्रा। हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। सारंगी पर साथ दे रहे हैं कमाल अहमद। सितार पर रईस अहमद। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आपने सुना गजल कलाकार फरीद अहमद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संतूर वादन। कलाकार हैं भगवान दास शर्मा। आप सुनेंगे राग यमन, विलंबित गत रूपकदार। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुना था संतूर वादन, कलाकार भगवान दास शर्मा। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर

0: कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। जी हाँ, आपकी फरमाइश, और वही फरमाइश जो आप लोग हम तक पहुँचाते हैं, उन्हीं गीतों को हम आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल आइए सबसे पहले लेते हैं, हमारे पास जो मैसेज आया है वो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह कालगा से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हम तक मेल पहुँचाई है अपने। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है यासिन अनजान जी का, और इन्होंने दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से लिखा है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत लिख रहे हैं, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुंचा दी है। तो क्यों ना आपके ही इसी संगीत से शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आपकी फरमाइश से।

वाकई में मौसम ने यूं करवट ले लिया कि सारे जगह में सारी जगहों पर बारिश और साथ ही साथ मौसम खुशनुमा हो गया और आप तक भी ये बात पहुंच गई, तो आपने भी हम तक अपने संदेश पहुंचा दिए। हमारे पास अगला संदेश आया है गांव टोरोवाल ज़िला नवांशहर पंजाब से। गगनदीप थांडी, तृप्ता थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी और आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म संगीत भी आपने बहुत खूबसूरत सा हम तक पहुंचा दिया, धन्यवाद आपका। और अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, नाम थोड़ा सा पीछे चला गया जिसे हम ढूंढ

रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज और लेंगे। हमारे पास अगला मैसेज आया है मेरठ कैंट, दिग्दर्शन और कविता गौड लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक पहुंचाई है, कई सारे गाने हैं उनमें से एक सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे और आप उसे जरूर सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है हमारे श्रोता का कैथर हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी लिख रहे हैं और साथ ही बहुत लंबी लिस्ट भी है आपकी और आप जो समझाना चाहते हैं हम समझ रहे हैं। फिलहाल अगला मैसेज हमारे पास गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा जी लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने है हम तो पहुँचाई है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ एक गाने ऐसे भी हैं जो हमारे पास नहीं हैं जो हम प्ले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगर आपके सॉन्ग प्ले नहीं होते तो आप अपने सॉन्ग हम तक फिर से पहुंचा देना। बागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और आभार ढींगिया जी लिख रहे हैं, शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है हमारे श्रोता का मनाली हिमाचल से विमला अनेजा और सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ। फिलहाल चलते हैं आप लोगों की फरमाइश से, सुनते हैं ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और आपकी फरमाइश बेहतरीन है। कहीं कहीं पे ऐसा हो गया है कि एक ही फिल्म से 2 सॉन्ग हमारे तक पहुंच गए हैं, और लिखने वाले ज़रूर समझ गए होंगे कि किन्होंने ये पहुंचाया है। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अलग से या कोई दूसरा सॉन्ग हम तक पहुँचा दें। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका दूसरा सॉन्ग हम तक पहुँच जाए। फिलहाल हम नाम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी लिख रहे हैं। शुक्रिया आपका। और हम अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। हमारे श्रोता है अनिल वर्मा जी, इन्होंने लिखा है, प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। फिल्म संगीत की फरमाइश आपने पहुँचाई है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत वर्मा और सोनम वर्मा लिख रहे हैं। धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ एस एम जावेद, शह गुप्ता, अंजुम और गुमला झारखंड से मुबारक बेगम की याद में इन्होंने ये हम तो पहुँचाए हैं। फिलहाल अगला मैसेज आ जाएंगे। हमारे पास आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा निवेदा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय लिख रहे हैं। शुक्रिया आपका हम तक मेल पहुँचाने के लिए। फिलहाल अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। हमारे श्रोता हैं गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी लिख रहे हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज हमारे पास अगला आया है फिल्म संगीत की फरमाइश आपने जो पहुंचाई है हमारे पास मनाली हिमाचल से विमला अनेजा और सतीश अनेजा जी, तो ये फिल्म के एक सॉन्ग हमने प्ले कर दिए हैं, तो आप कोई और सॉन्ग हो तो हम तक पहुंचा दीजिए। फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ बीच शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा जी लिख रहे हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनून सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह लिख रहे हैं गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से, और शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हमारे पास हमारे श्रोता का, ये मैसेज हमने ले लिया है। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे फिल्म संगीत की फरमाइश आप के नाम हमने ले लिए हैं, और जो नाम हमने नहीं लिए हैं वो है, ये नाम ओपन भी नहीं हो रहा है तो हम कुछ और ही लेकर आपके नाम को शामिल करना चाहेंगे। एक जैसे मैसेज कई सारे आ गए हैं जिसके कारण मेरे को वो मिल नहीं रहा। हाँ, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ नाम लिखने वाले किशन वंजनी जी हैं, और आपके जो मेल है उसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर जी लिख रहे हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताडे, आशीष मुरहरकर लिख रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुंचाई है, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है हमारे श्रोता का, सत्येंद्र जी का, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौल, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया जी लिख रहे हैं। साथ ही साथ एक और नाम लेना चाहेंगे हम, उसके बाद हम सुनेंगे आप लोगों की फरमाइश से गीत। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलते हैं अगला गीत लेते हैं आपकी फरमाइश से। ये

खूबसूरत गीत आप हम तक पहुंचाते हैं, और वाकई में जब दिल की बात होती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। और आज आपने जो गीत भेजे हैं, आपको पता है आप सबने जो फरमाइश में हम तक अपनी बात पहुंचाई है उनमें सबसे ज़्यादा फिल्म मेरा साया के गीत आपने भेजे हम तक पहुंचाए हैं, और उसके एक गीत हमने प्ले कर दिए। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक फिल्म से एक ही सॉन्ग आप तक पहुँचा सके, जिससे आप सुनने में तरोताज़ा भी महसूस हो, और ये भी रहे कि हर फिल्म से एक गीत ही लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिलहाल यही कहेंगे कि अगर आप लोगों ने अब मेरे साया फिल्म से कोई गीत की फरमाइश कर रहे हैं तो आप चलिए उसे बदल दीजिए, आपके पसंद का और भी कोई गीत हो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। फिलहाल चलते हैं, नाम लेते हैं। गुड इवनिंग मैम, रात की तन्हाई में आपकी फरमाइश कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। हवाओं और सेवाओं में

तैरते हुए आपकी आवाज़ दिलों को सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं किशन बंजानी, नीलम स्वाति और किसु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लेते हैं अगला मैसेज। हमारे पास अगला मैसेज आया है एयरपोर्ट रोड वंदन नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, हमें कोई भी फिल्म से गीत सुनवाइए। तो आप लोगों की फरमाइश इतनी सारी हमारे पास है कि हम आपकी फरमाइश से सुनवाएंगे आपको गीत। फिलहाल अगला मैसेज जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जी लिख रहे हैं, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ नारायण खर्चे जी का हमने नाम ले लिया है, इनके कई सारे मैसेज हम तक पहुँचे हैं। सतीश जी से हम जरूर कहेंगे, सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी लिख रहे हैं मनाली हिमाचल से, और आपको ज़रूर कहेंगे कि आपके एक गीत के लिए हम इंतज़ार में बैठे हैं कि आप हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का एक गीत हमने प्ले कर दिया है। फिलहाल अगला मैसेज आपके पसंद के गीत चलाने की कोशिश में छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जी लिख रहे हैं, शुक्रिया आपका। फिलहाल अगला मैसेज लेंगे हमारे श्रोता का, जिनके नाम हमने अभी तक प्ले नहीं किए हैं, सुने नहीं हैं, मोहम्मद कुमार जी लिख रहे हैं, पूजा भारती साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब दर्ज, आपको भी नमस्कार। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, नवी हसन जी का, नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, आनम यसफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सभी हांजम खान लिख रहे हैं, मरहा दरवाज़ा एटा से इन्होंने ये मैसेज हमें पहुंचाई है और फिल्म संगीत की फरमाइश पे आपने पहुंचाई है, कोशिश करेंगे ज़रूर प्ले करें। साथ ही साथ अगला मैसेज आया है संजय शर्मा जी का, आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवाएं। संजय शर्मा जी लिख रहे हैं भोपाल से, तो आप ये कहेंगे हमारी पसंद तो आज है ही नहीं, आज तो आपकी ही पसंद है, तो वो अपनी पसंद हम लोग पहुंचाइए। फिलहाल अगला मैसेज दादा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और चौटाला हरियाणा से आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल मोहन जी का मैसेज हम तक पहुँचा, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी धाड़ा से। फिलहाल आप लोगों की पसंद से सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और हमारे पास अगला मैसेज आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, फिल्म संगीत की फरमाइश भी हमारे तक पहुंच रही है, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज आया है नारायण खर्चे जी का, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना, ललिता नारायण, भाव और खड़से हमें कौन सी फिल्म का गीत सुनाए। तो आपको ये कहेंगे कि आपकी फरमाइश के गीत हम सुनवा रहे हैं, तो आप लोगों की फरमाइश जो हम तक पहुंच रही है, आप अपनी फरमाइश अगर सुनना चाहते हैं तो हम तक ज़रूर पहुंचा दें। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर जी लिख रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से, शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हमारे पास आया है नारायण खर्चे जी का, जो हमने ले लिया है वो मैसेज। और अगला मैसेज आ जाएंगे जिनके मैसेज को हमने अभी तक शामिल नहीं किया है, वरिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा लिख रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही साथ नवी हसन जी का आया है मैसेज हमारे पास, मारहरा दरवाज़ा इटा से, नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी जी लिख रहे हैं, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबीहा अंजुम खान लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। आपके मेल को हमने शामिल कर लिया है। गुरमीत सिंह जी लिख रहे हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, धन्यवाद और नमस्ते आपको भी। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और सबीर राही, महराज जहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाए हैं, तो आपकी मेल को हमने शामिल किया है। पहले आपने अपनी जो फरमाइश की बातें हैं वो आपने एक ही साथ लिख दिया है, जो अलग नहीं हो पा रहा है। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का कि हमें शामिल कीजिए, तो हमने शामिल किया नवी नसीब रेडियो श्रोता संघ से, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर, भटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ पूनम जी का आया है राम राम जी प्लीज एनी सॉन्ग, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी लिख रहे हैं, धन्यवाद। अहमद फूलवाले जी का आया है मैसेज हमारे पास और फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद फूलवाले भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली, शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। फिलहाल आइए सुनते हैं आप लोगों की ही पसंद से ये गीत।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे पटेल नगर मलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया और गुड्डू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे नोहार जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, पवन सुधार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुधार, कालू मिस्त्री और मोहन लाल और महावीर मिस्त्री जी लिख रहे हैं फिल्म संगीत की फरमाइश। आपने गीत बहुत खूबसूरत लिखकर भेजी लेकिन बहुत देर के बाद, और वाकई में आपने जो हम तक फरमाइश पहुंचाई है बहुत ही खूबसूरत है। अगला मैसेज लेना चाहेंगे बहुत दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुँचाई है। लिखने वाला मैं श्रोता है गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश परवार, डैनी परवार, मनीष परवार, आपके मैसेज को हमने बहुत दिनों बाद पढ़ा है बबलेश जी। और रामदेवरा से दिनेश चौहान और खलीफों की बाबरी से खुदा बख्श खलीफा जी लिख रहे हैं, और आपने फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक पहुंचा दी है। आपने ये भी लिखा पारस मनी रोड श्रोता क्लब लिख रहे हैं आर जी वी ए वी ओ ए एच, आपने जो भी लिखा हमने उसको पढ़ के यहाँ पे सुना दिया लेकिन हमारे समझ नहीं आया। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, किसी भी गीत में शामिल करें। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज और फरहान फारिया और ताहिरा जी लिख रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही साथ स्वीटी जोड़ा जी का आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना जी लिख रहे हैं, धन्यवाद। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का बोधराज खोरवाल जी का, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश जी लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का जो नाम हमने नहीं लिया है वो कोशिश करेंगे ले, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से लिख रहे हैं, इन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से ये मैसेज हम तक पहुंचाई है अब, और अपनी फरमाइश का कोई भी गीत कह रहे हैं सुनवाने को, तो जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों की फरमाइश में से कोई एक गीत आप तक सुनवाएं पहुंचा दें। आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवा शर्मा, मैंडी शर्मा,

गौरव शर्मा और शायना शर्मा जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे स्वर्ण सिंह जी का। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह लिख रहे हैं गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश वर्मा जी का मैसेज आया, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से ये मैसेज हम तक पहुँचाया आपने। साथ ही साथ फिल्म की फरमाइश भी है, आपका शुक्रिया हम तक अपने मैसेज पहुँचाने के लिए। अगला मैसेज लेना चाहेंगे मोहाले पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी लिख रहे हैं, प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, गीतों की सुंदर प्रस्तुति, कृपया कोई भी गीत में शामिल करें, तो आपके नाम को हमने शामिल कर लिया है, शुक्रिया हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की पसंद से ये गीत।

और वाकई में आपके मैसेज के अलावा क्या ही रखा है, क्योंकि क्या है ना, बहुत खूबसूरत लगता है जब ये प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। जैसे कि अब अगला मैसेज लेना चाहूँगी, लिख रही हैं वो पूजा भारती सखी, पकौड़े के साथ चटनी के साथ आपका स्वागत है। तो धन्यवाद आपका, मौसम भी ऐसा ही कह रहा है कि पकौड़ा और चटनी लेकर बैठ जाओ, बस प्रोग्राम में याद करिए। रश्मि झरना राजकोट गुजरात से लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, और बहुत समय के बाद हमने आपकी आवाज़ यहाँ सुनी है, यानी कि आपके मैसेज को यहाँ पढ़ा है और यही आपकी आवाज़ है हमारे लिए। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर, महक प्रीत कौर और शाहज प्रीत कौर सिंह जी लिख रहे हैं गांव तंगौरी मोहाली पंजाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास आया है लिखने वाले में फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, राजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमद नगर से, जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जनैब मुजावर जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहादुर सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, निनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे श्रोता का बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अल अखलाक अहमद बागवान, आमना आसना, राबिया परी, आशु जूही, सदब आजू बागवान जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है हमारे श्रोता का अश्विनी चुग जी का आया है, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, पंचकुला सेक्टर 9 से आयु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा और शुक्रिया कह रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म संगीत की फरमाइश भी है, तो यही कहेंगे कि वक्त कम रहने के कारण हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के नाम हमने शामिल कर लेना है यहाँ पे। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का प्रकाश वर्मा जी का, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण कुमार पांडे जी का मैसेज हम तक पहुँचा है, नियमित श्रोता ए के पांडे मध्य प्रदेश, संदेश भी हम तक पहुंचाया आपने, फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुंचाई है, तो हम यही कहेंगे वक्त के कम रहने के कारण हम फिल्म संगीत आपके पसंद का प्ले नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे वसंत कुमार सिन्हा जी का, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, रेखा, वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्ही पोती अनविका, तनुश्री और साथ ही पीरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से लिख रहे हमारे श्रोता, अभय कुमार, सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, वसंत लाल साव जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास जो एक आखिरी मैसेज हम लेना चाहेंगे, सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना टाई गुंडाने, हीरामन सेंडे, प्रणय कुमार सिद्धि प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने लिख रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज पहुंचाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हिसाब से अब सारे मैसेज को हमने शामिल कर लिया है, शायद किसी का रह गया हो, अगर रह गया हो तो हमें तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे आपसे। और फिलहाल ये कहेंगे कि फरमाइशी गीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 12:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपने कलाकारी से हमारे जीवन में अलग से रंग को भर दिया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं पूजा भारती इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बात करेंगे उस गायिका के बारे में जिसे सुनकर कई पीढ़ियाँ बच्चे से बड़ी हो गई, बड़ी से बूढ़ी हो गई, लेकिन इस आवाज़ का जादू कभी भी कम नहीं हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मधुर वाणी की मलिका पार्श्व गायिका आशा भोसले के बारे में।

हम बात कर रहे हैं आशा भोसले के बारे में। तो पहली बार इन्होंने मराठी फिल्म मांझा बाल जो 1943 में आई थी इसमें गीत गाया था। इसके बाद फिल्म चुनरिया में सावन आया गीत गाया इन्होंने। आशा भोसले को द आशा बनाने वाले दो सबसे बेहतरीन संगीतकार थे, पहले ओपी नैयर और फिर आर डी बर्मन। कई सारी कहानियाँ प्रचलित हुई और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर किसी में हुनर है, किसी में वो ताकत है कि वो अपने बल पर उस जगह को हासिल कर ले तो वो आशा भोसले हैं। उन्होंने अपने ज़माने में जब उन्होंने पैर रखा इंडस्ट्री में तब यहाँ पर काफ़ी धूम मची हुई थी कई सारे गायिका और गायक की, जिन्होंने अपना वर्चस्व पहले से ही फैला रखा था। उनके बीच में अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल का काम था और ये काम को अंजाम दिया आशा भोसले ने।

लता जैसे बरगद के नीचे आशा का पनपना, अगर मुमकिन हुआ तो ओपी नैयर की वजह से। लेकिन क्योंकि ये संभव था कि आशा भी उषा मंगेशकर की तरह एक और हाशिए की गायिका बनी रहती, ओपी नैयर ने खटकेदार पंजाबी पश्चिमी संगीत में आशा की खनकदार आवाज़ को इतनी सहजता से पूर्णता से ले लिया जैसे कि ये धुने उनकी आवाज़ के लिए ही तो बनी थी। वो ऐसा समय था जब गीता दत्त ने अपने बिखराव में कहीं गुम होती जा रही थी और पनप रहा था क्या, आशा का जादू। जी हाँ, वो समय ऐसा आया जब हर एक गायिका फीकी पड़ती नज़र आ रही थी और आशा भोसले उभरती नज़र आ रही थी। उनके जादू ने, उनकी आवाज़ के जादू ने चारों ओर अपना काम, अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया।

आशा जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा समय भी आया था तेजी से उभरते आर डी बर्मन, उतनी ही तेजी से अस्त होते नैयर साहब। नैयर साहब ने आशा जी को जब आगे बढ़ाया, तब दिलराज कौर से पुष्पा पागधरे तक तमाम आवाज़ों में नैयर उस आवाज़ में खोजते रहे जो उनके जीवन और संगीत से जा चुकी थी। जी हाँ, वो समय भी आ चुका था। नैयर को जब भी ऐसा लगता था और वो आना चाहते थे, तो एक समय ऐसा आया कि आशा को अब पंचम का साथ था जो चढ़ते सूरज थे उनके लिए। और ये समय भी आ गया जब आशा जी भी एक उभरती सितारा और पंचम दा चढ़ते सूरज। पंचम का नवाचारी संगीत और अगली पीढ़ी का था, पश्चिम का असर लेने में उस तरह के संकोच न करते हुए उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग अलग किस्मों के अलग अलग गीत बनते चले गए। इसमें एक बड़ी रेंज भी थी, लोक शास्त्रीय पश्चिमी, किसी संगीत से उन्हें परहेज नहीं था। और फिर समय बदल चुका था, संगीत बदल चुका था और नए संगीत नए सूरज के साथ आगे बढ़ता चला गया।

आशा भोसले के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा सितारा जिन्होंने हमारे जीवन को ही बदल डाला। वाकई में गाने की जो नींव रखी गई वो ऐसी थी कि दिलकश ना होते हुए दिल से जुड़ी हुई होती थी, और जब आशा जी आई तब गानों के बोल इस तरीके से हो गए कि वो दिल के साथ भी अटैच थे और दिलकश भी थे। गीतों का जो एक लहजा था वो बिल्कुल लहराता हुआ और महकता हुआ और बहकता हुआ, मतलब कहने का ये मतलब है कि गीतों में अलग सी जान डल गई थी। लता और आशा के युग में आशा को ज़्यादा वर्सेटाइल मानने वालों की संख्या कभी कम नहीं रही। एक समय उन्हें सिर्फ क्लब के गीत, कैबरे, यही सब मिलते थे, लेकिन अपनी एंट्रिक आवाज़ और स्टाइल के कारण वो उसमें सरताज गायिका रही। लेकिन धीरे धीरे पहचाना गया कि वे सिर्फ ऐसे शोक गीत तक ही सीमित नहीं है, उनकी रेंज बहुत बड़ी है।

और इस वाकई में यही वो पल है जब हम बात करें, और वो पल कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, लेकिन बातें कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बात ही हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आशा जी के बारे में, आशा भोसले। नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, गीतों ने ही गा दिया और कह दिया कि हम कौन हैं, आप जान लीजिए। ओ पंछी प्यारे सान सकारे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, तोरा मन दर्पण कहलाए, जारी पवनिया पिया के देश जा, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिर से आइयो बदरा विदेशी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये सारे गीत कोई आग लगे लग जाए, ये याद है ना, और कहीं आग लगे लग जाए, तो इन गीतों में सुरीले सफ़र में इतनी स्मृति गीत है कि हर सूची छोटी पड़ जाएगी। इसमें अजीत वर्मन की एक बंदिश भी होती है, जैसे कि वो वाला विजेता फिल्म से रचना है, घन आनंद आनंद छायो। तो ऐसे ऐसे कई सारे गीत हैं, लेकिन अगर कहें कि अगर हम बचपन को याद करें और आगे बढ़ते जाएं, तो कहीं आग लगे लग जाए वो गीत ने कमाल ही कर दिया था, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान में ठहराव आता है। लेकिन आशा जी लगातार दिन रात बढ़ती गई अपने आवाज़ के अलग अलग स्टाइल में, जिसमें एक स्टाइल ये भी रहा।

आशा जी को फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत, नजरुल गीत जैसे विभिन्न शैलियों में लगभग 20 भाषाओं में और 12,000 से भी ज़्यादा गीतों को अपना स्वर दिया है इन्होंने। उन्हें 1981 की फिल्म उमराव जान, दिल चीज़ क्या है, 1987 की फिल्म इजाज़त, गीत मेरा कुछ सामान, इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

मिला। वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। और फिर इतनी बड़ी, जो ये कह सकते हैं कि अपने जीवन को अपने शर्त पे जीने वाली ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो सभी की आंखें नम हो गई। 12 अप्रैल 2026 को उन्होंने हमसे विदा लिया। आशा जी के जाने के साथ फिल्म संगीत का वो अध्याय समाप्त होता है जिसमें रहते हुए हमने एक उम्र बिताई है, लेकिन वो गीत आज भी वहीं पर है और हम उसे सुनकर अपनी याद ताज़ा कर सकते हैं। शुरू का सफरनामा अब आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी दिल्ली का। ये AIR लाइव न्यूज 24x7 है। 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया।

0: with emphasis on cross-border electricity trade, officials said. Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Biraj Bhaktashrestha, held a productive discussion with Power Secretary Pankaj Agrawal and Additional Foreign Secretary Munu Mahawar of the Government of India in Kathmandu yesterday. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनने का, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं सुनते हैं गीत सुनहरे, यानी कि वो गीत जो एक ऐसे ज़माने की जब गीतों को बनाने में बहुत मशक्क़त लगती थी। जी हाँ, उसी समय की बात करेंगे इस कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और शुरुआत करते हैं इस गीत से।

और जब पुरानी बातें होती हैं तो वो बातें ज़रूर होती हैं जहाँ सुकून देने वाली बात हो। जी हाँ, पुरानी गीतों में सुकून वाली बातें, ऐसे उसके शब्द, ऐसे उसके बोल जिससे दिल आपका कहाँ चला जाए पता ही ना चले। जी हाँ, खो जाने वाला वो गीत, वो तो यही गीत है। आइए सुनते हैं।

रफ़ी जी की अगर आवाज़ में कोई भी गीत क्यों ना चल जाए, शब्द इतने खूबसूरत निकल कर आते हैं, यूं कहें तो शब्द निखर जाते हैं। फ़िलहाल तो आगे चलते हैं अगले गीत की ओर, जहां तलत महमूद की आवाज़ बिखेर कर एक इतनी खूबसूरत गीत को खूबसूरत बनाया गया है। और खूबसूरत क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिन शब्दों को हम आज अपने कानों में

घुलने गए मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो ज़माना, वो सुनहरा ज़माना, जी हाँ गोल्डन एरा, जहाँ पर ये गीत हमारे कानों में पड़ते थे और हम खुश हो जाते थे क्योंकि सुकून मिलता था इन गीतों से, उन्हीं गीतों को ढूंढ कर लाई हूँ आपके लिए। सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत।

फिर क्या है, जब हम गीता दादा और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे हैं तो फिर हम शमशाद बेगम को क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना ही तो इन्हीं का था। और ज़माने की बात करें तो वो गीत जब दर्द में बनते थे, जैसे कि हम दर्द का अफसाना। जी हाँ, शमशाद बेगम की आवाज़ में इस गीत को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है।

और फिर जब हम ये कहते हैं कि किसी को कोई पसंद कर रहा होता है और फिर मोहब्बत में किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, तो जब इस बात पर कोई गीत बना तो उनमें से एक गीत ऐसा रहा जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। वो गीत कौन था? जी हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत ऐसा है जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई में इस गीत को सुनना ही सबसे खूबसूरत बात होगी, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल दिल से निकल कर आ रही है।

0: साज और आवाज़, इसी फिल्म से आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को, साज हो तुम आवाज़ हो मैं। और जब साज आवाज़ की बात होती है तो हम पुराने क्यों नहीं बात करें, क्योंकि वो समय वो ज़माना ही वही था जहाँ आवाज़ में राग, साज में वो धुन और समय वो खूबसूरत, जहाँ आप किसी पे भरोसा भी कर सकते हो, किसी से मोहब्बत भी कर सकते हो। एक समय होता है शायद जब हर कुछ और हर समय हमारे हिसाब से चलता है, और फिर एक ज़माना आता है वो सब कुछ बदल जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम फिर उन ज़माने को याद करते हैं जिसमें सब कुछ हमारे तरीके से होता है। वाकई में जब फिल्मों की बात करते हैं और गीतों की बात करते हैं तो फिर ऐसे गीत को सुनने का मन करता है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे दिल के करीब हो। और जब फिर दिल के करीब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो गीत जो हमारे सिचुएशन, हमारे समय के हिसाब से हमें जीने दे और हमारे समय के हिसाब से हमारे जीवन को खूबसूरत बना दे। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए।
2: क्या?
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा।
1: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

और कहते हैं ना कि गीत गाने वाले जब गीतों में उन आवाज़ को, उन शब्दों को लेकर ढालते हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि अगर तुम हमारे नहीं होते तो ये दुनिया क्या होती, या फिर ये गीत क्या होते। और जब ऐसे गीत बनते हैं वो हिट तो होते ही हैं। और एक ज़माने का ये गीत मुकेश की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं सुनहरे गीत, गोल्डन एरा के फिल्म संगीत, और इन गीतों में हम सुन रहे हैं वो समय, उनकी झलक जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ने आज तक हमारे ऊपर जादू किया हुआ है। और वक्त का देखिए पता ही नहीं चला, इन गीतों को सुनने के बाद ऐसा ही होता है, उन जादू में, उन भंवर में हम खोते चल जाते हैं, फंसते चल जाते हैं और लगता है इसी में डूबते जाएं। लेकिन क्या कहते हैं, समय ख़त्म होने से पहले एक और गीत सुनते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली की AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2 बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार सबसे पहले, फिर सुनते हैं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला

0: Runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7। 2:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत बहार का। गीत बहार फिल्म संगीत नॉनस्टॉप, जी हाँ, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, सुनते हैं गीत संगीत का ये लगातार का सिलसिला।

साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरजाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह व चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अगली गजल पेश है गुलाम अली के स्वर में।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गजल। अगली गजल पेश है हरिहरन के स्वर में, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अब आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसमें आवाज है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

पंकज उदास की आवाज़ के बाद अब प्रस्तुत है पंकज, माफ़ कीजिएगा, मनहर उदास की आवाज़ में ये गीत, एक था बंजारा।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अंत में एक गजल जो आपकी दिल को शायद कुछ पुरानी यादों में या दर्द में लेके चली जाएगी, पर ये जिंदगी की असलियत है और हर किसी की जिंदगी में अपने खास के लिए एक ना एक दिन ये आता है। स्वर जगजीत सिंह का।

0: इसी गजल के साथ अब गीत व गजलों का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। सुबह के 4 बज चुके हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: कार्यक्रम का शुभारंभ हम भगवान अयप्पा की एक स्तुति से कर रहे हैं, स्वर केजे यशुदास का।
1: हरिवरासनम विश्वमोहनम हरितथीश्वर।

अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में वायलिन वादन राग शुभ पंतुवरली में कलाकार हैं चंद्रशेखर, घटम पर संगत की है सुकन्या रामगोपाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत चंद्रशेखर का वायलिन वादन राग शुभा पंतुवरली में। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। कुछ ही देर में यानी कि 5:10 पर कार्यक्रम सुनिएगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना।

वंदना के बाद 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का, 6:45 पर रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड का भाग 117 सुनिएगा। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। गीतो भरी गुड मॉर्निंग 7:30 पर, स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 8:45 पर होगा। साइंस मैगजीन आप सुन सकेंगे 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30। विशेष फोन इन कार्यक्रम 10:10 पर होगा, बात फूलों की। सबरस का समय रहेगा 11:10। 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी सुन सकेंगे। दिन में 12:10 पर सुनेगा महिला कार्यक्रम

उर्दू मजलिस का समय रहेगा दोपहर 3:30। युववाणी लाइव का समय होगा सुबह 4:15। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 6:30। कृषि जगत का समय होगा शाम 7:05। गजल व कव्वाली का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। श्रीनगर जगन्नाथ जी धाम की रथ यात्रा पर पूर्व लोकन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 पर। चर्चा का विषय होगा रात्रि 9:30 पर।

0: 11:10 पर फिल्म संगीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा। ये थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said, "The ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation."

0: बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: आपने अभी सुना कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:20 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान का गायन राग परज में।